91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

0: ओए मिलके बोलो, ओए जय माता की, ओए जय माता की, ओए जय माता की।
1: हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कहने श्रोताओं, मैं या तो हम भी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हुई हूँ कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक। श्रोताओं कर देना अज दे कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे दे गीत दे कन्ने। बहुत सारी इं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

ये तो हमारा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गणेशोता तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका गन्ने तो हाँ सारे इन्हीं बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

ये तो हमें अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो हाँ सारे इन्हीं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

गुंजन धर्मशाला ते गणेश होताओ तो हाँ सारे ही इस वक्त कार्यक्रम सुना देने माटी थी महक जी श्रोताओ ता बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन देने कार्यक्रम दा प्यारा दिया अगला गीत तो हाँ सारे इये बनी दिया रेडियो गुंजन।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ?
2: मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं।
1: मैं रलने में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ।
3: बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर।
4: अरे ये पेड़ तो सूख गया, चलो इसमें पानी डालते हैं।
5: अब पानी डाल के क्या फायदा?
4: अरे पानी डालेंगे तभी तो फूल खिलेंगे।
5: अरे पापा, आप ही ने तो बताया था जब पेड़ एक बार सूख जाए उसमें जितना भी खाद पानी डालो वो ठीक नहीं हो सकता।
6: आप ही ने तो कहा था कि एक बार घड़ा खराब हो जाए तो दोबारा ठीक नहीं हो सकता।
3: अगर एक बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो चाहकर भी हम दोबारा उसे ठीक नहीं कर सकते। अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें।
7: 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने से स्तनपान। 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक नई सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। तो आइए उन्हें याद करके आज हम ये शपथ लें कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे। अपने देश के लिए अपनी ये अहम जिम्मेदारी हम जरूर निभाएंगे। जय हिंद।
1: कैसे
2: कर्तव्य?
1: अरे, सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हो भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
3: समझ गए सर।
1: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: धर्मशाला के निवासी भाइयों और बहनों, नगर निगम चुनाव का समय आ गया है। याद रखिए, हमारा शहर खुद ब खुद विकसित नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी दूरदृष्टि जो धर्मशाला को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।
4: जी बिल्कुल, एक गलत चुनाव हमारे शहर को पीछे धकेल सकता है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने, नगर निगम में केवल एक ईमानदार और कर्मठ प्रतिनिधि को ही चुने।
5: आपका एक वोट धर्मशाला का सुनहरा भविष्य है।
6: जागो नागरिक, सोचो समझो और सही प्रतिनिधि चुनो।
7: काकू, दुनिया में एक ऐसी चीज का नाम बता जिससे तेरी बीवी का कभी दिल नहीं भरता।
8: एक नहीं, ऐसी दो चीजें हैं, एक कपड़े और दूसरे गोलगप्पे। कितने ही खिला लो और कितने ही दिला लो, कभी जी नहीं भरेगा।

दोस्तों 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ?
2: मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं।
1: मैं रलने में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ।
3: बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर।
4: अरे ये पेड़ तो सूख गया, चलो इसमें पानी डालते हैं।
5: अब पानी डाल के क्या फायदा?
4: अरे पानी डालेंगे तभी तो फूल खिलेंगे।
5: अरे पापा, आप ही ने तो बताया था जब पेड़ एक बार सूख जाए उसमें जितना भी खाद पानी डालो वो ठीक नहीं हो सकता।
6: आप ही ने तो कहा था कि एक बार घड़ा खराब हो जाए तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता।
3: अगर एक बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो चाहकर भी हम दोबारा उसे ठीक नहीं कर सकते। अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें।
7: 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने से स्तनपान। 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170917018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक नई सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। तो आइए उन्हें याद करके आज हम ये शपथ लें कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे। अपने देश के लिए अपनी ये अहम जिम्मेदारी हम जरूर निभाएंगे। जय हिंद।
1: कैसे?
2: कर्तव्य।
1: अरे, सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
3: समझ गए सर।
1: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: धर्मशाला के निवासी भाइयों और बहनों, नगर निगम चुनाव का समय आ गया है। याद रखिए, हमारा शहर खुद ब खुद विकसित नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी दूरदृष्टि जो धर्मशाला को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।
4: जी बिल्कुल, एक गलत चुनाव हमारे शहर को पीछे धकेल सकता है, इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने। नगर निगम में केवल एक ईमानदार और कर्मठ प्रतिनिधि को ही चुने।
5: आपका एक वोट धर्मशाला का सुनहरा भविष्य है।
4: जागो नागरिक, सोचो समझो और सही प्रतिनिधि चुनो।
6: काकू, दुनिया में एक ऐसी चीज का नाम बता जिससे तेरी बीवी का कभी दिल नहीं भरता।
7: एक नहीं, ऐसी दो चीजें हैं, एक कपड़े और दूसरे गोलगप्पे। कितने ही खिला लो और कितने ही दिला लो, कभी जी नहीं भरेगा।

दोस्तों, जब भी मन चाहे आपका सुकून, तो जुड़ जाइए नए पुराने गीतों के इस सफर के साथ। नए गीतों की ताजगी और पुराने गीतों की मिठास एक साथ। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों, गीत सुहाने नए पुराने, अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापिस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये नए पुराने गीत हर शाम, हर दिन, हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को, जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। दोस्तों कार्यक्रम आप सभी सुन रहे थे गीत सुहाने नए पुराने वही एहसास हर बार नया। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे थे अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेईई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सेस।

0: स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल, नगरोटा वगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ?
2: मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं।
1: मैं रलने में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ।
3: बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर।
4: अरे ये पेड़ तो सूख गया, चलो इसमें पानी डालते हैं।
5: अब पानी डाल के क्या फायदा?
4: अरे पानी डालेंगे तभी तो फूल खिलेंगे।
5: अरे पापा, आप ही ने तो बताया था जब पेड़ एक बार सूख जाए उसमें जितना भी खाद पानी डालो वो ठीक नहीं हो सकता।
6: आप ही ने तो कहा था कि एक बार घड़ा खराब हो जाए तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता।
3: अगर एक बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो चाहकर भी हम दोबारा उसे ठीक नहीं कर सकते। अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें।
7: 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने से स्तनपान। 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक नई सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। तो आइए उन्हें याद करके आज हम ये शपथ लें कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे। अपने देश के लिए अपनी ये अहम जिम्मेदारी हम जरूर निभाएंगे। जय हिंद।
1: कैसे?
2: कर्तव्य।
1: अरे, सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
3: समझ गए सर।
1: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: धर्मशाला के निवासी भाइयों और बहनों, नगर निगम चुनाव का समय आ गया है। याद रखिए, हमारा शहर खुद ब खुद विकसित नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी दूरदृष्टि जो धर्मशाला को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।
4: जी बिल्कुल, एक गलत चुनाव हमारे शहर को पीछे धकेल सकता है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने, नगर निगम में केवल एक ईमानदार और कर्मठ प्रतिनिधि को ही चुने।
5: आपका एक वोट धर्मशाला का सुनहरा भविष्य है।
6: जागो नागरिक, सोचो समझो और सही प्रतिनिधि चुनो।
7: काकू, दुनिया में एक ऐसी चीज का नाम बता जिससे तेरी बीवी का कभी दिल नहीं भरता।
8: एक नहीं, ऐसी दो चीजें हैं, एक कपड़े और दूसरे गोलगप्पे। कितने ही खिला लो और कितने ही दिला लो, कभी जी नहीं भरेगा।

गुड मॉर्निंग धर्मशाला। जी हाँ श्रोताओं, शुरू हो गया है कार्यक्रम 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया इस प्यारे से कार्यक्रम में। और मेरा दोनों हाथ जोड़ करके आप सभी को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी और आज की ये प्यारी सी सुबह। तो श्रोताओं, कल रात का मौसम थोड़ा सा डरावना था, है ना? भाई रात को 1 बजे इस तरह से डराया इस मौसम ने, आंधी तूफान बारिश बिजली सब कुछ इकट्ठा ही चलाया। और ऐसा लग रहा था कि न जाने क्या होने वाला है, लेकिन अभी देखिएगा बाहर एक नज़र डालिए तो क्या हो गया है। लग रहा है कहीं कि हमारे यहाँ पे रात को इस तरह से मौसम ने मिजाज बदला था। तो ये है डॉन, डॉन मतलब डॉन बन गया है मौसम। और ये भी कह रहा है कि कहाँ से आया, मैं हूँ कौन। तो हमें तो पता ही है कि मौसम बना हुआ है सेलिब्रिटी। लेकिन हम चाह रहे हैं कि आज का जो ये मैच है ये अच्छे से हो जाए। और पता है आपको, लोगों की फसलें अभी भी खड़ी हुई हैं। हाँ जी, खेतों में खड़ी हुई हैं कईयों की। कईयों ने कटाई कर ली है, लेकिन कटाई करने के बाद थ्रेशिंग नहीं करवाई है। किस किस तरह से वो संभाल संभाल करके रख रहे हैं वो लोग, ये तो वो ही जाने। और कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं इस ऐसे समय में जब मौसम ख़राब हो जाता है और काम सारे आपके सर पे पड़े होते हैं। दूसरी तरफ शादी ब्याह के कार्य भी चले होते हैं, तो चीज़ें संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाता है श्रोताओं। तो हम 11 मई में आ पहुंचे हैं। 11 मई 2026 हो गई है आज। और 1 जनवरी 2026 की अनाउंसमेंट भी हमने यहीं से इसी तरह से की थी। हमें अभी भी याद है 1 जनवरी का वो दिन। और देखिए ना, आधे साल से ज़्यादा गुजर गया है, परंतु कहीं कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कि ये गर्मी होगी। थोड़ी सी झलक दिखा करके चली गई है। पर अब कुछ लोग दबी दबी जबान में कह रहे हैं कि नहीं, आने वाले कुछ दिनों में भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हम तो फिलहाल चल रहे हैं एक खूबसूरत से गीत की ओर। फिल्म का नाम है शर्मिली, किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर।

सुनाओ शर्मीली फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आप बने हुए हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो श्रोताओं अब आपको बता देते हैं कि आज धर्मशाला और उसके आसपास के क्षेत्रों में तापमान क्या बना हुआ है। तो आज 11 मई को इस समय 18 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान है बाहर और हवा में नमी है करीब 78%, 55% चांस अभी बारिश का और भी दिखाया जा रहा है। हाँ, बड़ी अजीब सी दास्तान तो यही है कि जब भी हमने एक्सपीरियंस किया है कि जब भी यहाँ पर आईपीएल के मैचेस रखे जाते हैं, चाहे वो कितना भी देख परख करके यहाँ शेड्यूल किए जाएं, ये मौसम जो है अपना कमाल दिखा ही देता है। हालांकि अभी बाहर देखने

ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि रात को ये कुछ गड़बड़ करेगा, ऐसा लग रहा है कि ठीक ठीक मतलब साफ साफ हो जाएगा मैच, कोई खलल नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई पता है नहीं क्योंकि यहाँ का मौसम है बेईमान। न्यूनतम तापमान जो है 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है और दिन में बारिश की संभावना लगभग हमने बता दिया आपको 55% है। दोपहर के समय छिटपुट गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं कहीं कहीं पर। हवा की गति लगभग 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और नमी जो आर्द्रता है ह्यूमिडिटी है हवा में वो है 76 से 78% के करीब। 5:30 बजे के करीब शाम को हल्की बारिश जारी रह सकती है और उस समय लोगों के स्टेडियम पहुंचने का समय होगा और फिर रात में आसमान साफ होने की संभावना है और तापमान गिर करके 13 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। जैसा कि हमने आपसे कहा कि 12 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान आज बताया जा रहा है। कुछ और जानकारी अगर हमें मिलती है अपडेट तो हम आप तक ज़रूर रखेंगे। फिलहाल फिर से चल रहे हैं हम खूबसूरत गीत की ओर। लव इन टोक्यो फिल्म का नाम। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़।

0: आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ
1: जरा। लव इन टोक्यो फिल्म का गीत अभी आपने मोहम्मद रफी की आवाज में सुना, और श्रोताओं 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ साथ आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं 88.4 मेगाहर्ट्ज़ ढटवाल की आवाज हमीरपुर से भी। तो कार्यक्रम की तो अभी शुरुआत है, अभी हमें सफर तय करना है बहुत लंबा, तो बने रहिएगा हमारे साथ और सुनते रहिए गुड मॉर्निंग धर्मशाला। अपनी रेडियो होस्ट संदोष ज्योति पठानिया के साथ देश विदेश में भी आप सुनते हैं हमें वर्ल्ड रेडियो गार्डन के माध्यम से। अगर उसमें सर्च करेंगे आप तो 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला आपको वहां पर मिल ही जाएगा। और हमारी रेडियो गुंजन धर्मशाला की ऐप तो है ही, तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको रेडियो के माध्यम से सुनने में कोई परेशानी है, तो मोबाइल पर आराम से सुन सकते हैं आप हमको। और कार्यक्रम में आगे क्या क्या सुनने वाले हैं जरूर कार्यक्रम में आगे करेंगे बात। फिलहाल 9:20 होने को हैं और अब आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार। बिल्कुल हो जाइए तैयार प्रादेशिक समाचारों के लिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी का है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का किया आग्रह। प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन, कल होगी नामांकन पत्रों की जांच। प्रदेश में नगर निगम चुनावों के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान किया तेज। पंजाब टीम की लाइन और दिल्ली कैपिटल्स के बीच धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में आज आईपीएल का होगा अहम मुकाबला। और मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आज से 14 मई तक प्रदेश में बारिश और अंधड़ की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया है। हैदराबाद में कल एक समारोह में प्रधानमंत्री ने वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था फिर शुरू करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से विवेकाधीन खर्चों पर पुनर्विचार करने की भी अपील की, क्योंकि देश बढ़ती वैश्विक ऊर्जा लागतों से अधिक दबाव का सामना कर रहा है। उन्होंने नागरिकों से खाद्य तेल की खपत कम करने और किसानों से देशों से आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने का आह्वान किया। प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। 7 और 8 मई को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान प्रदेश भर में 42,562 उम्मीदवारों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन भरे। अभी तक कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 7,396 नामांकन भरे गए हैं। नामांकन पत्रों की जाँच कल 12 मई को होगी, जबकि 14 और 15 मई को नामांकन वापिस लिए जा सकते हैं। 15 मई को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। पंचायत चुनावों के लिए मतदान 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में करवाया जाएगा। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चलेगा। प्रदेश में नगर निगम चुनावों के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। कांग्रेस जहां सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को लोगों के बीच प्रमुख मुद्दा बना रही है, वहीं विपक्ष भी चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंक रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल 12 मई से चुनाव प्रचार में सक्रिय रूप से उतरेंगे और पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं और रोड शो करेंगे। कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव प्रचार के लिए विशेष रणनीति तैयार की है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल कल हिमाचल दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे धर्मशाला, सोलन, मंडी और पालमपुर नगर निगम क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव करेंगी। पार्टी नेताओं के अनुसार रजनी पाटिल विभिन्न चुनावी कार्यक्रमों में भाग लेंगी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें भी करेंगी। प्रदेश में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना कारगर साबित हो रही है। इसी कड़ी में सिरमौर जिला में जरूरतमंद लोगों के लिए काफी मददगार बन रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को पक्का तथा सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाना है। योजना के तहत जिला में करोड़ों रूपए की राशि पात्र लोगों को आवंटित की जा चुकी है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे सिरमौर जिला संवाददाता।
1: प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत सिरमौर जिला के नाहन और पांवटा साहिब में जरूरतमंद लोगों के पक्के मकान बनाने के सपने साकार हो रहे हैं। नगर परिषद नाहन में अब तक योजना के अंतर्गत 5,20,00,000 रुपए की राशि लाभार्थियों पर व्यय की गई है, जिसके तहत 335 मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि अन्य कई मकान निर्माणाधीन है। वही नगर परिषद पांवटा साहिब में 200 आवासों में से 160 आवास का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यहाँ योजना के तहत करीब 3,50,00,000 रुपए की राशि आवंटित की गई है। स्थानीय निकायों द्वारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवार इस योजना का लाभ उठा सके। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाले 30 जिलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 जिलों को शामिल किया जाना चाहिए। ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज एक्सएंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आज पंजाब किंग्स 11 और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल मैच खेला जाएगा। यह मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। हालांकि इस रोमांचक भिड़ंत पर बारिश का साया मंडरा रहा है। मैच से पूर्व कल रविवार को दोनों टीमों ने स्टेडियम में जमकर अभ्यास किया। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से अंधड़ सहित बारिश हुई, जबकि ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आज से 14 मई तक निचले व मध्यम क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना जताई है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
2: मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक आज 11 मई से निचले मध्यम व ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश व हिमपात का अनुमान जताया गया है। विभाग के अनुसार 11 से 14 मई तक कई स्थानों में बारिश, आंधी, ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। 12 व 13 मई को 4 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में भारी ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं चंबा, सोलन, सिरमौर, किन्नौर व लाहौल स्पीति में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में 11 से 15 मई तक बारिश व ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है, जिससे तापमानों में भी 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। लोग गर्मी के मौसम में भी ठंड महसूस करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर तकनीकी विशेषज्ञों और तकनीक प्रेमी युवाओं को शुभकामनाएं दी है।

श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार किन्हीं कारणवश बीच में ही हो गए हैं बंद और हम वापस आ गए हैं अपने स्टूडियो में 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला पर।

जी श्रोताओ, 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं। सुन रहे हैं आपने प्रादेशिक समाचार जो किन्हीं कारणवश बीच में ही बंद हो गए हैं, और ये हमारे यहाँ से ऐसा कुछ नहीं हुआ, टेक्निकल रीजंस कुछ हो जाते हैं जो कि पीछे आकाशवाणी शिमला से ही हुआ। चलिए, जानकारियां तो हम अपने कार्यक्रम में भी आपको खूब सारी दे ही देने वाले हैं। 9:30 हो चुके हैं और बढ़ते हैं कार्यक्रम में अब आगे। तो जब बेईमान मौसम की बात हो ही रही है तो फिर जी जाना पहचाना सा गीत आप सभी के लिए लोफर फिल्म का लेकर के आए हैं हम।

जी श्रोताओं, आप लोगों ने भी महसूस तो की ही होगी ये बात कि मौसम जो है वो बड़े खेल खेल रहा है हमारे साथ, है ना। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि ये चाहता है कि मेरे बारे में हमेशा बातचीत होती ही रहे। और कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी बिजली, हमारे सामने ये लाता ही रहता है। क्या करें भाई, कुदरत के नज़ारे हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ खड़े हैं बिल्कुल। लेकिन हाँ, जो हम कर सकते हैं उसके बारे में भी हम कार्यक्रम में अक्सर बात करते ही रहते हैं आपसे। भाई इतना परेशान हम भी तो ना करें ना नेचर को कि नेचर जो है वो भर भर के हमसे बदले ले। क्या 11 मई का जो इतिहास है उसके बारे में करेंगे बात, और आपको ये भी बताएंगे आज के दिन है क्या क्या खास। तो 1857 का भारतीय विद्रोह हुआ था, 11 मई 1857 को सिपाही विद्रोह के प्रारंभिक चरण के दौरान भारतीय विद्रोही दिल्ली पहुंचे और अंग्रेजों से दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, यानी कि दिल्ली को कब्जा लिया गया था, अपने हाथों में ले लिया गया था, अंग्रेजों से छीन लिया गया था। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को गुजरात में नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए थे 1962 में, आज ही की तारीख में, जिन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्थान लिया था। और भारत की जनसंख्या घड़ी के अनुसार देश की जनसंख्या ने 2000 में आधिकारिक तौर पर वर्ष 2000 में आज ही की तारीख में आज ही के दिन 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया था। और ये अलार्मिंग सिचुएशन तो उसी वक्त थी, आज तो और भी ज्यादा है, तो हमें इस बारे में भी सोचना ही होगा। कितने सारे मुद्दे हैं ना हमारे सामने सोचने के लिए, लेकिन हम सोचते हैं सिर्फ अपने बारे में। इस तरह से अगर हम स्वार्थी हो जाते हैं और हो गए हैं तो देश का क्या होगा, समाज का क्या होगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। खैर, बीच बीच में हम कई इमोशनल बातें कर जाते हैं आपसे, और जो ख़ास बात है आज, ख़ास हमारे भारत के लिए जो दिन है उसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे कार्यक्रम में आगे, एक और गीत के बाद।

0: हाँ, मैंने भी कुछ कसम ली है श्रोताओं, और आपको भी लेनी पड़ेगी क्या, उसके बारे में कार्यक्रम में बताएंगे हम आगे आप सभी को। 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो की ज्योति पठानिया। और अब फिर से बात करते हैं आज के खास दिवस पर। आज हम भारत में मना रहे हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और इसका जो मनाया जाना है वो 11 मई को ही क्यों होता है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण परीक्षण क्षेत्र में 3 भूमिगत परमाणु परीक्षणों, जिसमें एक थर्मो न्यूक्लियर उपकरण भी शामिल था, उसकी एक श्रृंखला का सफलतापूर्वक संचालन किया था। ऑपरेशन शक्ति नामक इस मिशन का नेतृत्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। '99 में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने पोखरण परीक्षणों की स्मृति में और भारत की तकनीकी प्रगति का जश्न मनाने के लिए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस घोषित किया। और परमाणु परीक्षणों के उसी दिन भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 2 सीटों वाले विमान हंसा 3 ने बेंगलुरु में सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान भरी थी। और भारत ने इसी तिथि को त्रिशूल नामक अल्प दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था 1998 में। और जो पहली खबर हमने आपको बताई परमाणु परीक्षण के उसी दिन जो हंसा 3 ने बेंगलुरु में सफलतापूर्वक उड़ान भरी थी, पहली उड़ान, वो भी 1998 में।
1: ये क्या कह रहे हो?
0: और श्रोताओं, आपको मिशन मंगल फिल्म 2 याद ही होगी, दिल थामे बैठे थे हम उसके आखिर तक। अगर किसी ने वो फिल्म देखी है, मतलब आप लोगों ने तो देखी ही होगी, जिन्होंने नहीं देखी है वो इस गीत के बाद, प्रोग्राम के बाद जाकर के ज़रूर देख लें कि कितनी टेंशन हो जाती है हमें आखिर तक कि हमारा ये जो मिशन मंगल है ये सफल होगा या नहीं होगा।

फिल्म मिशन मंगलम की कहानी भारत के पहले मिशन मंगल मार्स ऑर्बिट मिशन की सच्ची घटना पर आधारित है श्रोताओं। और ये जो गीत सुना अभी आपने, दिल में मार्स है, इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है जो वैज्ञानिकों के संघर्ष और उनके जुनून को दर्शाता है। गीत दिखाता है कि कैसे राकेश धवन यानी कि अक्षय कुमार और तारा शिंदे यानी विद्या बालन की टीम कम बजट और संसाधनों के बावजूद मंगल तक पहुंचने का सपना देखते हैं। गाने के दौरान ये दिखाया गया है कि टीम कैसे होम साइंस जैसे पूरी तलने की तकनीक और रॉकेट साइंस को मिलाकर के मिशन की लागत कम करने के लिए नए नए तरीके ढूंढती है। और वैसे भी हम लोग तो जुगाड़ में सक्षम है ही। तो दिल में मार्स है बोल वैज्ञानिकों के उस मानसिक संकल्प को दर्शाते हैं जहां उनकी मंजिल भले ही दूर हो पर उनके इरादे पक्के हैं। और वीडियो में पूरी टीम सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, शर्मन जोशी आदि को लैब में कड़ी मेहनत करते और छोटी छोटी बाधाओं को पार करते हुए दिखाया गया है। और फिल्म मुख्य रूप से इसरो की उन महिला वैज्ञानिकों की कहानी है जिन्होंने अपने निजी जीवन की चुनौतियों के साथ साथ देश के इस ऐतिहासिक गौरवशाली पल को मुमकिन बनाया। और एक और गीत इसी फिल्म का है हमारे पास, जरूर आपको सुनवाएंगे।

लेकिन उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। फिलहाल अब एक बड़ा चुलबुला सा गीत आ रहा है आप सभी के रेडियो सेट्स पर।

जी श्रोताओ, 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

गुमराह फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग धर्मशाला, क्षमा कीजिए।

तो हमारे उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा जी ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में 99.86% अंक प्राप्त करके मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाली जिला कांगड़ा के AVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहाड़ा की छात्रा अनमोल को बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी दी हैं और ये भी कहा है कि उनकी उपलब्धि मेहनत, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। अनमोल ने कठिन परिश्रम और लगन से न केवल अपने माता पिता और शिक्षकों का नाम रोशन किया बल्कि पूरे जिला कांगड़ा को भी गौरवान्वित किया है। और मेरिट सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा अनमोल सहित सभी मेधावी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि निरंतर मेहनत और सकारात्मक सोच से जीवन में हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी, लेकिन इसके साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं कि कई छात्र जो है ना वो अपने जो परीक्षा परिणाम है उनसे संतुष्ट नहीं हैं और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जब तक जान है ना तभी तक जहान है। अगर आप ठीक रहेंगे, मानसिक रूप से संतुलित रहेंगे, तो ही आप आगे अपने परिणामों को बेहतर कर सकते हैं। यहीं पर हार जाएंगे, अभी तो कुछ भी नहीं है, 10वीं कक्षा है, लेकिन अभी आपको और बहुत सारी मंजिलें तय करनी है और बहुत सारे जीवन में आपके इम्तिहान आने वाले हैं। तो पहले से तैयारी रखिए, अपने आप को मजबूत बनाइए और साथ ही साथ कोशिश बिल्कुल भी मत छोड़िए। यानी कि कोशिशें करते रहिए।

मुस्कुराहट फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में। थाना थोड़ा सा हट के ये गीत 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानी। श्रोताओं, सब ने अपने अपने तरीके से कल का जो दिवस गुजरा है ना, मदर्स डे, उस पर बात कर ली है, लेकिन हम रह गए हैं पीछे। तो अब हम आ गए हैं मेरे प्यारे से दोस्त माइक पर, हूँ ना मैं बड़ी देर से, तो मुझे लगा कि भाई मुझे भी तो कुछ बात कर लेनी चाहिए। माँ केवल बच्चे को जन्म नहीं देती है, बल्कि वो अपने बच्चे की देखभाल करने का आजीवन दायित्व भी निभाती है। कहते हैं ना कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता कभी होती नहीं। दुनिया में एकमात्र निःशर्त प्रेम माँ का प्रेम है। मेरी माँ मेरी प्रेरणा, मेरी सुपर हीरो, मेरी सबसे अच्छी दोस्त और मेरी मार्गदर्शक है। मेरी माँ के बिना मेरा जीवन इतना सुंदर कभी होता ही नहीं। जीवन कहाँ होता अगर मेरी माँ ही ना होती। उसने इस दुनिया में भेज करके मुझ पर उपकार किया है, ये उपकार की इस रंग बिरंगी प्यारी सी दुनिया को मैं देख पाऊं। लेकिन एक बहुत ही बड़ी विडंबना भी है, वो क्या है जानना चाहते हैं आप? देखिए, इस बारे में बात ना कल नहीं हो सकती थी, इस बारे में बात जब कुछ दिन गुजर जाएं तभी हो सकती है। इसलिए हम आज बात कर रहे हैं कि कल हमने देखा सोशल मीडिया भरी पड़ी है माँ के प्यारे प्यारे मैसेजेस के साथ, लेकिन जिनके डीपी पे वो माँ की फोटो वहाँ नजर आ रही थी, क्या मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, लेकिन क्या ये जो माँ का जो प्रेम है ये सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गया है? क्या वाकई में आप अपनी माँ के साथ दो घड़ी बैठते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं, जाकर के दो शब्द प्यार के उनसे बतियाते हैं? सच तो ये है कि कई घरों में

असीम होता है, वो त्याग, साहस और असीम करुणा की साक्षात मिसाल है। तो थोड़ा सा सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और क्या हमारी माँ वाकई में इसकी हकदार है, डिजर्व करती है ये सब चीज़ें। आप सच में ख्याल रखते हैं, केयर करते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर कहीं थोड़ी सी भी चूक हो रही है तो अभी समझ जाइए, क्योंकि बाद में रोने पछताने से कुछ नहीं होने वाला है। माँ दोबारा नहीं आएगी।

0: और इस दौरान हाल ही में मातृत्व का सुख प्राप्त करने वाली नई माताओं को सम्मानित करके उन्हें शुभकामनाएं दी गईं और कार्यक्रम के दौरान क्लब की सदस्यों ने नवजात शिशुओं और उनकी माताओं के साथ सुखद और भावनात्मक पल भी साझा किए। माताओं को स्वास्थ्य और पौष्टिकता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ड्राई फ्रूट्स भी वितरित किए गए।
1: माँ तो रहेगी माँ, कोई हो जात भी हाँ।
0: और इसके साथ ही नवजात शिशुओं को बेबी टॉवल्स भेंट किए गए।

माँ का आंचल फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। और माँ कहती भी तो है ना कि तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा। और साथ ही

रहे ना रहे हम महका करेंगे यूं ही बनके फिजा इन वादियों में। तो माँ की कद्र किया करें, और देखिए सिर्फ अपनी ही माँ की नहीं दूसरों की माताओं की भी कद्र किया करें, क्योंकि देखिए सामने वाले को शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी बॉडी शेमिंग कभी ना करें, उनको ये कभी ना कहें कि आप तो बस बीमार ही रहते हैं, जब देखो आपको पता नहीं क्या हो गया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो है ना वो बीमार होना बिल्कुल नहीं चाहता है, ख़ास करके माँ तो बिल्कुल भी नहीं चाहती है। वो चाहती है कि वो अपने बच्चों के लिए स्वस्थ बनी रहे, तंदुरुस्त रहे और सारे कार्य जो हैं वो भाग भाग करके करती रहे। परंतु ये शरीर है, अगर शरीर साथ न दे तो कोई क्या करे। अभी अभी मुझे पता चला है कि कहीं कुछ लोग जब किसी की माँ को उसके सामने ही ऐसा कुछ कह देते हैं तो बच्चे को कितना बुरा लगता है। अब ना तो वो उनके साथ जबान लगा सकता है क्योंकि संस्कार माँ ने वैसे दिए हैं, लेकिन उस बच्चे की हालत सोचिए कि उसका मन तो अंदर से करता होगा कि इसका मैं मुंह तोड़ दूँ, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। तो माँ अगर उसकी है तो माँ आपकी भी है, और हर एक माँ की कद्र की जानी चाहिए।

और क्या आप जानते हैं श्रोताओं कि आज विश्व अहंकार जागरूकता दिवस भी है, यानी कि अपने अहंकार पर, देखिए ये बात इसके साथ ही जुड़ गई ना कि अहंकार पर थोड़ा काबू पाइए। हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण जरूर होते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि अपने गुणों को पहचानिए, अपने गुणों को जो भी आप कर सकते हैं उसे निखारिए, निकालिए अपने अंदर से। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, बस जैसे सीधा रास्ता पकड़ करके ना, जैसे दो कानों के बीच में सिर दे के सीधा सीधा ही चलते चले जाते हैं, इधर उधर देखते ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, जिन लोगों को पता चल जाता है और वो थोड़ा सा फेमस हो जाते हैं या उसमें थोड़ी सी प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं या उस गुण पर उनकी पकड़ बढ़ जाती है, यहाँ पर भी मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ एक लोग होते हैं जो कि जिनमें अहंकार की भावना जाग जाती है, बस मैं ही ये काम कर सकता हूँ और दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। अरे भाई, ये दुनिया तब भी चली हुई थी, अब भी चली हुई है और आपके जाने के बाद भी ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये ख्याल जो है ना, अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल

श्रोताओ, जब हम इस तरह के सूफी गीत सुनते हैं ना, तो हम एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। फिल्म का नाम था ए दिल है मुश्किल, और ये गीत सुना आपने बुल्लिया 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आप बड़ी देर से सोच रहे होंगे कि पीछे ये बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा लगाया हुआ है। बस थोड़ी ही देर में इसका भी आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये लगाया हुआ है हमने। तो गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में अब आपको बताते हैं कि आज, जैसा मैंने पहले कहा, कि विश्व अहंकार जागरूकता दिवस भी है। और कोई समझे कि बस मैं ही हूँ डॉन, तो फिर कैसे चलेगा भाई। तो क्या कहा था हमने आपको कि कोई आपकी तारीफ करे तो आप फूल जाते हैं एक ही पल में, और एक अलग सा अहंकार जो है ना वो मन में आ जाता है। खुशी आना तो अच्छी बात है, लेकिन एक अलग सी भावना भी आ जाती है, उसी को कहते हैं ये अहंकार। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा दिमाग कितनी जल्दी एक साधारण से पल को स्कोर बोर्ड में बदल देता है। ये वही क्षण है कि जब एक तारीफ महानता का प्रमाण बन जाती है, और एक गलती व्यक्तिगत अपमान बन जाती है, और एक असहमति जीतने के लिए एक लड़ाई में तब्दील हो जाती है। श्रोताओं, सच बताऊं, आजकल हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन ये पल और ये क्षण वो जिंदगी के वो क्षण भी होते हैं जब आपको अपनी क्षमता कितनी है वो दिखाने का मौका भी मिलता है। तो विश्व अहंकार जागरूकता दिवस लोगों को प्रेरित करता है कि वो रुकें, अपने भीतर के अहंकार को शर्मिंदगी के बजाय जिज्ञासा से देखें। इसका उद्देश्य अहंकार से छुटकारा पाना या आत्मविश्वास को बुरा बताना बिल्कुल नहीं है। अब आगे आपको समझ कि अहंकार कभी कभी अच्छा भी होता है। और इस दिवस का अर्थ ये है कि ये पहचानना कि कब अहंकार किसी व्यक्ति को आत्मविश्वास से भरा रहने में मदद कर रहा है, और कब ये चुपचाप उसके विकल्पों, शब्दों और रिश्तों को गलत दिशा में ले जा रहा है। एक छोटी सी महीन लाइन है, पतली सी बिल्कुल बाल के बराबर रेखा, जिसको हमें समझना होगा कि हम

इस तरफ हैं या इस तरफ हैं। तो आत्मचिंतन ही तो वो बिंदु है जहाँ अहंकार की जागरूकता वास्तविक जीवन में उपयोगी साबित होती है, और इसकी शुरुआत करने का ये सरल तरीका है कि आप अपने दैनिक जीवन से किसी एक क्षेत्र जैसे कि काम, परिवार, मित्रता या सोशल मीडिया को चुनें और फिर खुद से पूछें कि मैं सबसे अधिक किस क्षेत्र में सही, प्रशंसित या नियंत्रण में रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। हम क्या सबसे अच्छा कर सकते हैं, सही तरीके से कर सकते हैं, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए।

डॉन फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने सुना। 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से हम बोल रहे हैं। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। एक नजर डाल लेते हैं हम आज की खास खास खबरों पर। हिम परिवार और सर्वे प्लेटफॉर्म को मिले प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार। मुख्यमंत्री ने की लोगों को पारदर्शी, त्वरित और सुरक्षित सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए डीडी टीजी विभाग की सराहना, यानी कि डिजिटल हिमाचल का राष्ट्रीय स्तर पर बजा है डंका। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के लिए जून में लिए जाएंगे अब आवेदन। और दसवीं में कंपार्टमेंट आने से तनाव में नाबालिग ने लगाया है फंदा। तो श्रोताओ, अभी हम थोड़ी देर पहले आपसे यही कह रहे थे ना कि कई बच्चों के जो परिणाम है वो अच्छे नहीं आए होंगे, तो इस तरह का मानसिक दबाव अपने दिमाग में बिल्कुल भी न रखें और इस तरह का कोई कदम भी बच्चे न उठाएं। इसके लिए जो माता पिता हैं उन्हें ही अपने बच्चों को प्रेरित करना होगा, उन्हें पहले ही समझा देना होगा परीक्षाओं से पहले ही कि आपका कोई भी परिणाम आता है हम आपके साथ हैं, हमें पता है कि आपने 100% अपना दिया है, तो हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। चाहे आप जानते भी हैं कि आपके बच्चे में कितनी कमियां हैं, उसने नहीं अच्छे से पढ़ाई की, उसने अच्छी तरीके से पेपर नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपका जो फर्ज बनता है आपने अपने बच्चों को ऐसे ही समझाना है ताकि वो आपकी नजरों के सामने रहें, गलती से भी कहीं ऐसा कोई कदम ना उठा लें।

पांच दिन आंधी तूफान के साथ होगी बारिश। जी हाँ, ये है बारिश का अलर्ट। पंचायत चुनाव के नामांकन का आज है आखिरी दिन। अब तक 42,562 नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं।

अब एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी को अमुक जो पार्टी है उसने बिगाड़ा है और अब अपनी कमियां छुपा रही हैं। ये कहना है गगन मल्ली जी का।

बच्चों में लगाई जाने वाली वैक्सीन न्यूमोकोकल और पेंटावेलेंट के सैंपल हो गए हैं फेल। और देखिए, कल हमने मदर्स डे सेलिब्रेट किया और यहाँ पर एक खबर निकल कर आ रही है कि शराब के लिए पैसे नहीं मिलने पर बेटे ने पिता की कर दी है हत्या। देखिए कहाँ जा रहा है हमारा समाज। और मोदी जी ने की है एक अपील पूरे देशवासियों से, इस पर करेंगे कार्यक्रम में आगे बात।

0: समाधि फिल्म का ये गीत है। समझ गए होंगे आप अभी तक कौन सा गीत लेकर आए हैं हम आपके लिए। लता मंगेशकर और आप पहचानिए किसकी आवाज है।
1: गोरे गोरे ओ बाके छोरे कभी मेरी गली आया करो, गोरी गोरी ओ बाके छोरी चाहे रोज बुलाया करो, गोरे गोरे ओ बाके छोरे कभी मेरी गली आया करो, गोरी गोरी ओ बाकी छोरी।

तो समाधि फिल्म का गीत आप सभी ने सुना 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो श्रोताओं, अब वो समय आ गया है जबकि हम आपकी बात करवाते हैं किसी एक श्रोता से, और इस कोशिश में हम लगे हुए हैं कि कोई श्रोता आपसे बात करें। क्या कहना चाहते हैं ये तो वो खुद ही बताएंगे आपको, लेकिन हमारी कोशिश तो जारी ही है। तो जब तक कोई नहीं जुड़ता है तब तक हम करते हैं आपसे बात। और अभी अभी हमने आपसे कहा कुछ देर पहले कि विश्व अहंकार जागरूकता दिवस है आज, और इसको हम नेगेटिव वे में नहीं, कुछ पॉजिटिव वे में अहंकार की बात आज कर रहे हैं। देखिए, ध्यान से सुनना अहंकार को पहचानने का सबसे तेज तरीका है, क्योंकि अहंकार की अक्सर इस बारे में प्रबल राय होती है कि आगे क्या होना चाहिए, और ये बातचीत को बीच में रोकना, सुधारना, प्रभावित करना या उसका रुख बदलना चाहता है। विश्व अहंकार जागरूकता दिवस एक सरल चुनौती प्रस्तुत करता है। समझने के उद्देश्य से सुने, जीतने के उद्देश्य से नहीं। जब आप किसी को जवाब देते हैं तो जवाब देने से पहले थोड़ा सा रुकें, थोड़ी देर का विराम भी अपने आप ही स्फूर्त प्रतिक्रियाओं को रोक सकता है। और अपनी राय देने से पहले आपने जो कुछ सुना है उसका सारांश बताएं। उदाहरण के लिए, तो आपको उस स्थिति में तो ऐसा महसूस होता होगा ना, मतलब आपको ऐसा उपेक्षित सा महसूस हुआ होगा अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो फिर उसमें आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या था? और ये प्रश्न पूछने से ध्यान जो है दूसरे व्यक्ति पर केंद्रित रहता है। अधिक सुनने का मतलब हर बात से सहमत होना या चुप हो जाना नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रतिक्रिया देने से पहले सामने वाले को अपनी बात पूरी कहने का मौका देना। इससे तनाव कम होता है और अक्सर बेहतर संवाद और समाधान निकलते हैं।

और देखिए, आने वाली जो खुशियाँ होती हैं या कुछ खुशियाँ जो हैं आपने हासिल कर ली हैं, तो उसमें खुश होना, खिलखिला के हंसना, आसमान में उड़ना कोई गलत चीज़ भी नहीं है। तो कुछ पल के लिए तो हम ये गुनगुना ही सकते हैं।

0: आज मैं ऊपर और आसमान नीचे, खामोशी फिल्म का ये गीत कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज़ों में आप सभी ने सुना 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और श्रोताओं, जैसा कि हमने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये सेगमेंट होता है, हम अपने श्रोताओं से लाइव बातचीत करते हैं। एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं कार्यक्रम में, क्या कहना चाहते हैं, कौन हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं।
1: नमस्कार गुंजन रेडियो। हेलो,
0: हाँ जी, कौन है आप? पहले तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: जी। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं मनोज चंदेल बोल रहा हूँ, मैं योल कैंट का रहने वाला हूँ और ज्ञान विज्ञान समिति हिमाचल प्रदेश का ब्लॉक धर्मशाला का सेक्रेटरी हूँ।
0: अच्छा, ये ज्ञान विज्ञान समिति क्या है मनोज जी?
1: ये ज्ञान विज्ञान समिति ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क का एक हिस्सा है। ये ऑर्गेनाइजेशन हिमाचल प्रदेश में साइंस में विश्वास रखती है और लोगों को आगाह करती है अंधविश्वास के खिलाफ, डकियानुसी के खिलाफ या दूसरे वो जो जिससे मतलब विज्ञान के तथ्यों के आधार पर हर चीज का मूल्यांकन करती है। ये ज्ञान विज्ञान समिति है और समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ भी ये आवाज उठाती है।
0: अच्छा, तो आज
1: जैसा, हाँ बोलिए।
0: हाँ जी, तो क्या आवाज उठाई जा रही है आजकल?
1: आजकल जैसा हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं और ज्ञान विज्ञान समिति ने भी एक पूरे हिमाचल प्रदेश में टास्क लिया है कि नशा मुक्त चुनाव होने चाहिए।
0: जी, बहुत अच्छी बात है।
1: उसको लेकर पिछले दिनों हमने कांगड़ा जिला के जिलाधीश महोदया के माध्यम से अपना एक पोस्टर लॉन्च किया और वो उसको हम अब हमारे कार्यकर्ता जो है या हमारे जो सदस्य हैं वो गांव-गांव में लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि नशा मुक्त चुनाव होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट शराब के लालच में, पैसे के लालच में या किसी और लालच में वोट खरीदने की कोशिश करता है उसको बिल्कुल भी आप अपने पास नहीं आने दें।
0: तो आपको क्या लगता है कि इसका कुछ असर हो रहा है? आपने कितनी पंचायतें अभी तक कवर कर ली हैं?
1: अभी तक हम 2 या 3 पंचायत कर पाए क्योंकि हमारा आधार अभी धर्मशाला में उतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा कमजोर ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन कोई भी सरकार जब प्रदेश में रहती है, सरकार के सहयोग से जो भी जागरूकता वाला वो चलाया जाता है कोई मिशन, उसमें हमारा संगठन जो है ज्ञान विज्ञान समिति जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। और इसी के मद्देनजर जिस तरीके से वर्तमान सरकार ने नशे के खिलाफ एक जीरो टॉलरेंस वाली मुहिम चला रखी है तो हमारा संगठन भी कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ लोगों को जागरूक करता हुआ उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है पूरे प्रदेश में।
0: जी, तो मुझे लगता है आप लोगों ने आगे के लिए भी रूपरेखा जो है वो तैयार तो कर ही ली होगी कि आगे आने वाले समय में कौन कौन सी पंचायतों में आपने जाना है और आपको क्या परिणाम नजर आ रहे हैं?
1: देखिए, हमारी कोशिश है, हम क्योंकि धर्मशाला ब्लॉक कमेटी है हमारी, तो हमारी कोशिश है जितनी ज्यादा धर्मशाला की पंचायत कवर की जाए अच्छी बात है। इसी तरीके से पूरे हिमाचल प्रदेश में कैंपेन चल रहा है और हमें लगता है लोग जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन इस तरीके के मतलब शुरुआत करने से लोगों में और ज्यादा जो है वो असर होगा और लोग जागरूक होंगे और लोग अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे।
0: जी, संजय जी से हमारी शायद इस विषय पर पिछले बार भी बात हुई थी, तो हमें ऐसा लगता है कि क्या ये सिर्फ पंचायतों तक ही सीमित रहेगा या शहरी क्षेत्रों में भी ये होना चाहिए?
1: मैंने जैसा कि कहा कि अभी हमारा संगठन उस तरीके का, जिस तरीके का जिला शिमला में मंडी में काम करता है, अभी कांगड़ा में उस तरीके का नहीं है। लेकिन जितनी हमारी पहुंच है संगठन की, हम लोगों तक जाएंगे, चाहे इसमें नगर पालिका आती है क्योंकि धर्मशाला ब्लॉक तो एक छोटा सा ब्लॉक है, इसमें पंचायत के बाद इमीडिएट जो कारपोरेशन शुरू हो जाती है, तो कारपोरेशन में भी जैसे हमने पिछले कल हम किसी कारणवश नहीं जा पाए, हम कल मंगलवार को दाढ़ी के क्षेत्र में, दाढ़ी बाजार में इस कैंपेन को चलाएंगे। तो ये सिर्फ पंचायत लेवल पे नहीं है, ये सारा कॉर्पोरेशन या नगर पालिका जहां जहां भी है वहां वहां हम ये जागरूकता अभियान चलाएंगे।
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो गुंजन धर्मशाला से बातचीत करने के लिए और ये सारी जानकारी श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए।
1: धन्यवाद जी, धन्यवाद रेडियो गुंजन,
0: धन्यवाद। श्रोताओं तो आपने सुनी मनोज चंदेल जी से ये बातचीत। हमें लगता है जब कोई व्यक्ति या कोई संस्था जो है वो कदम उठाती है तो हमें भी साथ में उसका साथ देना चाहिए और ख़ास करके प्रशासन को भी आगे आना चाहिए कि कोई कार्य कर रहा है तो अगर उसमें उसकी भागीदारी रहेगी, प्रशासन का साथ रहेगा तो वो संस्था जो है वो खुद ब खुद ही सफल हो जाएगी अपने कार्यों में।

और श्रोताओं, जब हम अहंकार की बात कर ही रहे हैं तो चलिए एक और बड़ा ही प्यारा सा गीत, या फिर यूं कहूं कि मन को शांति देने वाला गीत अब सुन लेते हैं।

जी श्रोताओ, ये जो मन है ना, ये वाकई में धीर बिल्कुल नहीं धरता है। और हम उन्हीं चीज़ों की कामना करते हैं जो निर्मोही हैं, जिन्हें पता ही नहीं कि मोह होता क्या है। परंतु देखिए, जीना है तो जीने के लिए सब कुछ ज़रूरी है। और थोड़ा सा हमें ये समझना होगा कि हमें डूब नहीं जाना है किसी भी चीज़ के लिए कि बस अब तो हमारे जीवन का लक्ष्य यही है, पैसा ही कमाना है और इधर उधर कुछ नहीं सोचना। बहुत कुछ है हमारे आसपास में बिखरा हुआ। भी आपने सुना कि नशा मुक्त चुनाव अभियान चलाया जा रहा है, और अगर हम सही प्रतिनिधि नहीं चुनते हैं तो आगे आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है, ये भी हमारे ही ऊपर गाज गिरने वाली है। तो हमें हमारे आसपास में क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान क्या हो सकता है, या फिर कोई आपका पड़ोसी है उसे कोई परेशानी है, हमें तो ये भी नहीं पता होता है आजकल कि हमारे पड़ोस में रहता कौन है। जी हाँ, ये शहरों की बात मैं कर रही हूँ। तो इतना ध्यान रखिए, अपने आप में केवल अपने ही बारे में न सोचिए। थोड़ा सा हम बिल्कुल बैरागी तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जीवन है और इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। तो खैर, जो कहना चाहती हूँ वो आप समझ तो गए ही होंगे। मैं ज़्यादा स्ट्रेस भी क्या दूँ। कार्यक्रम के आखिर में हम पहुँच गए हैं, आखिरी पड़ाव है ये। और अब कार्यक्रम में चलते चलते आपको सुनवाते हैं वो गीत जिसका हमें भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था, और हम चाह भी रहे थे कि आप सुने मिशन मंगल का वो गीत जिसमें कि भर भर के आ रही हैं शाबाशियाँ। क्यों? क्योंकि आज है हमारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, और सारी कहानी तो हमने आपको बता ही दी कि क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है। और इसी गीत के साथ अब ज्योति पठानिया को दे दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। जल्द ही मिलूंगी आपसे मैं किसी और दिन, फिर किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग। एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ?
2: मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं।
1: मैं रल्ले में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ।
3: बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर।
4: अरे ये पेड़ तो सूख गया, चलो इसमें पानी डालते हैं।
5: अब पानी डाल के क्या फायदा?
4: अरे पानी डालेंगे तभी तो फूल खिलेंगे।
5: अरे पापा, आप ही ने तो बताया था जब पेड़ एक बार सूख जाए उसमें जितना भी खाद पानी डालो वो ठीक नहीं हो सकता।
6: आप ही ने तो कहा था कि एक बार घड़ा खराब हो जाए तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता।
3: अगर एक बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो चाहकर भी हम दोबारा उसे ठीक नहीं कर सकते। अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें।
7: 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने से स्तनपान। 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170181701। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक नई सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। तो आइए उन्हें याद करके आज हम ये शपथ लें कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे। अपने देश के लिए अपनी ये अहम जिम्मेदारी हम जरूर निभाएंगे। जय हिंद।
1: कैसे
2: कर्तव्य?
1: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें।

0: इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी दूरदृष्टि जो धर्मशाला को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।
1: जी बिल्कुल, एक गलत चुनाव हमारे शहर को पीछे धकेल सकता है, इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने। नगर निगम में केवल एक ईमानदार और कर्मठ प्रतिनिधि को ही चुने।
0: आपका एक वोट धर्मशाला का सुनहरा भविष्य है।
2: जागो नागरिक, सोचो समझो और सही प्रतिनिधि चुनो।
3: काकू, दुनिया में एक ऐसी चीज का नाम बता जिससे तेरी बीवी का कभी दिल नहीं भरता।
4: एक नहीं, ऐसी दो चीजें हैं, एक कपड़े और दूसरे गोलगप्पे। कितने ही खिला लो और कितने ही दिला लो, कभी जी नहीं भरेगा।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।
1: चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ?
2: मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं।
1: मैं रल्ले में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ।
3: बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर।
4: अरे ये पेड़ तो सूख गया, चलो इसमें पानी डालते हैं।
5: अब पानी डाल के क्या फायदा?
4: अरे पानी डालेंगे तभी तो फूल खिलेंगे।
5: अरे पापा, आप ही ने तो बताया था जब पेड़ एक बार सूख जाए उसमें जितना भी खाद पानी डालो वो ठीक नहीं हो सकता।
6: आप ही ने तो कहा था कि एक बार घड़ा खराब हो जाए तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता।
3: अगर एक बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो चाहकर भी हम दोबारा उसे ठीक नहीं कर सकते। अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें।
7: 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने से स्तनपान। 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170917018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक नई सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। तो आइए उन्हें याद करके आज हम ये शपथ लें कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे। अपने देश के लिए अपनी ये अहम जिम्मेदारी हम जरूर निभाएंगे। जय हिंद।
1: कैसे?
2: कर्तव्य।
1: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
3: समझ गए सर।
1: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: धर्मशाला के निवासी भाइयों और बहनों, नगर निगम चुनाव का समय आ गया है। याद रखिए, हमारा शहर खुद ब खुद विकसित नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी दूरदृष्टि जो धर्मशाला को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।
4: जी बिल्कुल, एक गलत चुनाव हमारे शहर को पीछे धकेल सकता है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने, नगर निगम में केवल एक ईमानदार और कर्मठ प्रतिनिधि को ही चुने।
5: आपका एक वोट धर्मशाला का सुनहरा भविष्य है।
6: जागो नागरिक, सोचो समझो और सही प्रतिनिधि चुनो।
7: काकू, दुनिया में एक ऐसी चीज का नाम बता जिससे तेरी बीवी का कभी दिल नहीं भरता।
8: एक नहीं, ऐसी दो चीजें हैं, एक कपड़े और दूसरे गोलगप्पे। कितने ही खिला लो और कितने ही दिला लो, कभी जी नहीं भरेगा।

0: नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब समय है दोस्तों कार्यक्रम हमारी सेहत का। तो दोस्तों ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी संस्था ऑर्गन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 मेगाहर्ट्ज पर।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और आज हम एक बार फिर से एक और प्रेरणा से भरी हुई कहानी लेकर आए हैं और वो हमें बहुत ही खास मेहमान से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए डॉक्टर शर्मा से बात करते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और मैं आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार है, मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम कई बार बातें करते हैं कि दिल का प्रत्यारोपण हो सकता है, मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, गुर्दे का, किडनी का ट्रांसप्लांट हो सकता है, लिवर का ट्रांसप्लांट हो सकता है, जिसे हम हिंदी में यकृत बोलते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि जो हमारे हाथ होते हैं उनको भी प्रत्यारोपित किया जा सकता है और हम किसी ऐसे इंसान के भी काम आ सकते हैं जो किसी दुर्घटना में अपने दोनों हाथ खो चुका है, हम उसकी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। अगर आपने नहीं सुना है तो आज हम आपको इसी बारे में सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक हैंड ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट है। हैंड ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट मतलब उनके जो दोनों हाथ हैं, अगर आप कहें तो कलाई से लेके पूरे हाथ उनके प्रत्यारोपित हो चुके हैं और वो अपनी नई लाइफ में इतने खुश हैं। जब ये दुर्घटना उनके साथ नहीं थी और तब वो जो काम नहीं कर पा रहे थे, वो अब वो काम कर पाते हैं नए हाथों के साथ। तो चलिए हम देर ना करते हुए और पहले ना बुझाते हुए डायरेक्टली आपका परिचय करवाते हैं हमारे आज के मेहमान से, जिनका नाम है राहुल अहिरवार। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, टीकमगढ़ जिले के, और गुड़गांव और हरियाणा की किसी फैक्ट्री में ये ऑटो इंजीनियरिंग वर्क्स में काम करते थे। तो

0: ज्वाइन हुआ वहाँ काम करने के लिए, और उसके बाद 15 दिन काम किया और 16वें दिन मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था जिसमें मैंने अपने दोनों हाथ गवा दिए थे। फिर उसके बाद मेरी लाइफ एकदम से चेंज हो गई थी, मानो एकदम खत्म हो गई थी। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या करूँ, मुझे ऐसा लगता था सब कुछ खत्म हो गया।
1: आपके घर में कौन कौन है राहुल जी?
0: मेरे घर में मेरे पिताजी हैं, मेरे बड़े भैया हैं, भाभी हैं, उनके दो बच्चे हैं और मैं हूँ।
1: और आप, आपने बताया कि आपके 12th के एग्जाम्स खत्म हुए थे और आप इसी फैक्ट्री में चयनित हुए थे काम करने के लिए, तो आप क्या स्किल ट्रेनिंग वगैरह कुछ ऐसा प्रोग्राम कर रहे थे इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ?
0: नो सर, मेरा एग्जाम खत्म होने के बाद मुझे 2-3 महीने का छुट्टी मिलता है, तो उसके बीच में मैं काम करना चाहता था 2-3 महीने के लिए।
1: तो थोड़ा सा अगर डिटेल में बताएं ये हादसा कैसे हुआ था, आप क्या काम कर रहे थे?
0: एक्चुअली जो फैक्ट्री थी उसमें मारुति गाड़ी के इंजन के पार्ट्स बनते थे, उसमें मैं वर्कर के तौर पर, जो हेल्पर होते हैं हेल्पर के तौर पर मुझे ज्वाइनिंग मिली थी, तो जो ऑपरेटर होते हैं उनके साथ में मैं काम कर रहा था। शायद आपने सुना हुआ पावर प्रेस एक मशीन होती है,
1: पावर प्रेस?
0: जी जी, तो मैं काम कर रहा था उसमें, अपने दोनों हाथ से अंदर पार्ट लगाने पड़ते हैं और उसके बाद फिर जो जो भी करना होता है वो ऑपरेटर करते हैं, उसके बाद फिर हेल्पर को वो बाहर निकालने होते हैं।
1: जी,
0: तो मैं वो पार्ट अंदर लगाने के बाद मुझे निकालने थे, जैसे मैंने निकालने के लिए हाथ अंदर डाले तो पीछे से किसी और ने एक मशीन ऑन की और मेरे हाथों पर गिर गई। उसके बाद मेरे दोनों हाथ एकदम ही खराब हो चुके थे और मुझे फिर ESI हॉस्पिटल होता है जिसमें से वर्कर का ही इलाज होता है।
1: जी जी जी,
0: तो मुझे उसमें ले जाया गया, एडमिट किया गया और वहाँ पे मेरे हाथों को अलग करके ऑपरेशन कर दिया।
1: जी, दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों जब कभी ऐसा हादसा होता है और क्रश इंजरी होती है तो एम्प्यूटेशन बोलते हैं इस टेक्निक को, जिसमें हमारे जो खराब पार्ट है उसको हमें अलग करना पड़ता है क्योंकि हमारी जान को खतरा रहता है। तो राहुल के साथ भी यही हुआ कि उनके जो दोनों हाथ थे वो मशीन में क्रश हुए एंड उसके बाद उनको एम्प्यूटेट करना पड़ा। राहुल जी थोड़ा सा बताइए कि जैसे कब आपको होश आया, कब आपको ये पता चला और आपकी उस टाइम पे क्या सोच रहे थे आप? तभी आपने ऐसा सोचा था कि ये सब दोबारा ठीक हो पाएगा?
0: कैसा हुआ, जब मेरे हाथ मशीन के अंदर गए और जब मशीन से बाहर निकले तो एकदम लटक चुके थे हाथ के, मानो कि एकदम खत्म हो गए थे। तो ऐसा मानना है लोगों का कि तुम बेहोश हो गए रहो, बट मुझे होश था, मुझे पता था कि मेरे साथ क्या हो गया है। मैं अपने हाथों को देख पा रहा था कि वो एकदम कुछ लायक नहीं बचे हैं, कि उसी स्थिति में मुझे हॉस्पिटल ले जाएगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने देखा, वहाँ के जो सर्जन थे उन्होंने मेरे फैमिली वालों को बताया कि ये हाथ अब ठीक नहीं हो सकते हैं और कुछ मतलब नहीं है, इसमें करने का अलग ही करने पड़ेंगे। तो सब की उससे मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाएगा, वहाँ पे मुझे बेहोश करके हाथों को अलग कर दिया। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि मेरे दोनों हाथ नहीं है, हाथों की पट्टी बंधी हुई थी, उस वक्त मैं सोच रहा था कि मेरा जो सपना था, मैं जिसके लिए पढ़ाई कर रहा था, वो सब खत्म हो गया है। पता आगे क्या होगा, कैसे क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस टाइम पे मैं बहुत मैंने एकदम सपने में चला गया था कि लाइफ ही खत्म हो गई है ऐसा।
1: बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ और आई थिंक सभी श्रोता भी समझ सकते हैं कि इस सिचुएशन में कैसा होता है। अच्छा, आप एक पॉजिटिव बात बताइए, कभी आपने अपने मन में ये ख्याल लाए, कभी आपने भगवान से या अपने जो आप जिनको मानते हैं उनसे कभी प्रार्थना की हो कि कैसे भी करके ये सब ठीक हो जाए?
0: जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मैं अपने घर पे आया, घर पे अकेला रहता था, तो एनी टाइम मेरी निगाहें दोनों हाथों पर ही रहती थी कि कुछ महीने पहले क्या था और अब क्या हो गया है। वो टाइम को सोचते सोचते मैं फिर, जब थोड़ा सा लोगों ने सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है।
1: किस तरह का सपोर्ट?
0: ऐसा कि वो एक अपनी मेंटली हेल्थ होती है कि अपन कैसा सोचते हैं, अभी अपन ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं तो ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं, कभी कभी बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो उसके लिए मेरे भाई ने मेरा हौसला बढ़ाया, मेरे साथ रहे, मेरे साथ वक्त बिताया, मुझे कभी अकेला नहीं रहने दिया कि कहीं अकेला रह के कुछ गलत कदम ना उठाए। इस तरह का मेरे भाई ने भी बहुत सपोर्ट किया, बाकी फैमिली ने भी सपोर्ट किया है। तो वो वक्त फिर धीरे धीरे जैसे टाइम बीता तो मुझे लगा कि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सोचने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ करना होगा।

0: जाता था मंदिर मंदिर पे भी जाता था, वहाँ जो नए नए लोग मिलते थे, जो लोग बोलते थे, कोई कुछ बोलता था तो उसको सबका सुनता था, उसमें से होता था कि मेरे लिए क्या प्लस पॉइंट है। वो सब टूटने के बाद इकट्ठा करने का सोचा तो कहीं से सुना था मैंने, और सोशल मीडिया से जुड़ा। इंटरनेट ने भी मेरी बहुत मदद की, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ इंटरनेट की ही वजह से, क्योंकि कुछ इंटरनेट से किया है।
1: राहुल जी, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आकर अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे।
2: ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव।
3: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आंखें किसी को दे सकते हैं, तो हमारी आंखों से वो दुनिया को देख सकता है, हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं, और किसी और को जिंदगी मिल जाएगी। मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने जिंदगी और गुजारी। ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा जिंदगी दे सकता हूँ। अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद। हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी ज़िंदगी बच सकती है। आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का, कि जिंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा। एक व्यक्ति 8 लोगों की जिंदगी बचा सकता है। 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए। तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जानें कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है, उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे। तो आज ही प्लेश करिए और हमारा साथ दीजिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ गए हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। मुझे पता है कि आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि आगे क्या हुआ, तो चलिए हम इस चर्चा को अपनी आगे बढ़ाते हैं। राहुल जी, अब आप हमारे श्रोताओं को ये बात बताइए कि ये स्टोरी चेंज कैसे हुई। क्या आप पहले से हैंड ट्रांसप्लांट के बारे में जानते थे? आप ब्रेक में जाने से पहले इंटरनेट की बात कर रहे थे, तो किस तरह से आप इस चीज में आए कि हैंड ट्रांसप्लांट के लिए आपने आवेदन किया? क्या क्या पूरी प्रोसेस हुई, शुरू से बताइए आप थोड़ा सा।
2: जी, वही कि मैं एक मोबाइल था मेरे पास, उस पर मैं यूट्यूब पे देखता रहता था, तो मुझे एक ऐसा मेरे मन में ऐसा फील आया कि क्या ऐसा होता है कि दूसरे हाथ लग सकते हैं।
1: बट आप मोबाइल ऑपरेट कैसे करते थे?
2: वो मेरे हाथ में जब तक जख्म था तब तक मैंने अपने पैर के अंगूठे से मोबाइल को ऑपरेट किया है। उसके बाद फिर जब जख्म ठीक हुए, हाथ में थोड़ा मूवमेंट कर सकता था, तो उसके बाद एल्बो जो कोहनी होती है ना, कोहनी से मैंने ऑपरेट किया, उसी से सब कुछ करता था, टाइट वगैरह सब कुछ उसी से करता था।
1: बहुत बहुत बढ़िया राहुल। यहाँ पर मैं श्रोताओं को एक बात मेंशन करना चाहूंगा कि कभी भी आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी आ जाए तो हिम्मत मत हारिए। आपने अभी राहुल की बात सुनी और मैं खुद उनसे इंस्पायर हूँ कि एक नहीं तो दूसरा रास्ता खुलेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा, लेकिन उन रास्तों की तलाश बंद मत करिए। मेरे मन में ये क्वेश्चन आया था तुरंत ये बात सुन के कि यूट्यूब चलाते कैसे होंगे, और उन्होंने उसका आंसर तुरंत दिया। तो उन्होंने अपनी कोशिश बंद नहीं करी, आपको रास्ता मिलेगा। अगर जिंदगी में कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी है, बिना आंसर के क्वेश्चन होता ही नहीं है। तो मेरी आप लोगों से यही अपील होगी, कभी हौसला मत खोइए और अपनी तलाश बंद मत कीजिए। जी राहुल जी, आप बता रहे थे।
2: जी, तो वो सब मैंने अपना मोबाइल ऑपरेट करते समय वो देखा, मेरे मन में ख्याल आया, तो उसके बाद मैंने गूगल से सर्च किया, तो मुझे अदर बाहर कंट्री का लंदन का एक वीडियो मिला जिसमें एक चिल्ड्रेन हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक बच्चे का दोनों हाथ का ट्रांसप्लांट हुआ था, तो वो वीडियो मुझे मिला। वो वीडियो मैंने देखा तो मुझे पता चला कि हाँ, हैंड ट्रांसप्लांट होता है। फिर मैंने उसके बाद अपने इंडिया के जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल, सारे स्टेट के सारे हॉस्पिटल का एड्रेस, नाम, नंबर सब निकाल के सब में पता किया। उसके बाद मुझे एक केरल में है अमृता हॉस्पिटल, तो वहाँ का एड्रेस निकाला, वहाँ के डॉक्टरों से बात की, फिर उधर मिलने गया हॉस्पिटल में। वहाँ से जो वहाँ अमृता हॉस्पिटल में जो पहला ट्रांसप्लांट 2015 में हुआ था, मनु सर करके है, उनका दोनों हाथ का हैंड ट्रांसप्लांट हुआ था।
1: तो मनु अमृता जी डॉक्टर अय्यर ने किया था वो ऑपरेशन।
2: जी, तो मैं उनसे मिलने गया था, उनसे मिला, उनसे बात की, उनको जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि हाँ, ट्रांसप्लांट होता है और ऐसे ही वर्क करते हैं जैसे हाथ होते हैं, उसके बाद मेरा हौसला और बढ़ गया कि हाँ, अच्छा इन्होंने किया है, इनका हो गया है, जब ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे बात की, पैसे की जब बात आई तो उन्होंने कॉस्ट थोड़ा उठाता था क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो लगा कि इतना ना हम कर सकते ना हमारी गवर्नमेंट कर सकती।
1: करीब करीब कितनी कॉस्ट बताई थी आपने?
2: 2019 में मैं उनके पास गया था, उन्होंने मुझे 50-60 लाख रुपया बताया था टोटल खर्चा।
1: जी,
2: तो मुझे लगा कि इतना तो नहीं कर सकते हम लोग। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अभी नहीं तो कभी और होगा, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कभी तो होगा।
1: जी बिल्कुल, कभी तो होगा।
2: जी, तो मैंने वो सर्च किया कि कभी क्या कोई जनरल हॉस्पिटल में कहीं होता है क्या, तो मुझे मुंबई की एक KEM हॉस्पिटल का पता चला, मुंबई में है वो।
1: जी,
2: और फिर वहाँ के डॉक्टरों का नंबर वगैरह एड्रेस निकाला, डॉक्टर से बात हुई।
1: लेकिन मुझे जहाँ तक पता है आपका जो ट्रांसप्लांट था वो मुंबई का पहला ट्रांसप्लांट था, हैंड ट्रांसप्लांट।
2: मुंबई में पहले एक और हुआ है, एक लड़की का हुआ था, उसका नाम मोनिका मौर्य।
1: अच्छा, ओके।
2: उनका भी प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ था।
1: ओके।
2: तो वहाँ मैं हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर से बात करने के बाद उन्होंने देखा, फिर मेरी सब फिटनेस वगैरह हुई, उसके बाद
1: ये सब करने में आपको कितना समय लग गया? सारे हॉस्पिटल्स में कोची गए, देन मुंबई आए।
2: ये टाइम मैं सर 19 सितंबर अक्टूबर से ही मैंने सर रिसर्च शुरू की थी, अगस्त सितंबर से। उसके बाद से करीबन करते करते मैं 2019 पूरा निकल गया और 2020 पूरा निकल गया था। 21 में मैं मुंबई पहुंचा था, फरवरी 2021 में मैं।
1: जी ठीक है।
2: फिर 11 अगस्त 2021 को ऑपरेशन।
1: जी ठीक है। यहाँ पर हम एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं राहुल, एंड उसके बाद अपनी इस चर्चा को कंप्लीट करेंगे।
2: ओके।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ गए हैं अपने छोटे से अंतराल के बाद। जैसा कि ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे राहुल से, उन्होंने बताया कि अल्टीमेटली 1.5 साल की मेहनत के बाद फाइनली वो मुंबई पहुंचे एंड उनका ट्रांसप्लांट हुआ। हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानते हैं। राहुल, मुंबई में जब आप गए KEM हॉस्पिटल में, तो क्या क्या परेशानियां आपके सामने आई? लाइक आई नो आपके पास इतना हौसला था और कई सारी चीजें आपने अपने बल पर कर ली थी, लेकिन फिर भी परेशानियां तो आती ही हैं और बहुत सारी आई होंगी। पेपर वर्क होगा, बहुत सारा खर्चा, उन्होंने भी ऑब्वियसली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कुछ तो खर्चा रहता ही है, क्योंकि ट्रांसप्लांट जैसी बड़ी सर्जरी, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा बताइए।
2: जी सर, जैसा कि आपने बोला कि परेशानियां, तो परेशानियां जब हम घर से बाहर कहीं अपने ही गांव के यदि कहीं बाहर निकले, अपने यदि अपने घर से बाहर कहीं भी निकले, तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर वो तो हमारे MP से एक अदर स्टेट है, तो वहाँ पे जाना, वहाँ की लैंग्वेज अलग है, वहाँ का रहन सहन सब अलग है, तो परेशानियों का तो थोड़ी परेशानियाँ हुई थी। लेकिन मेरे सामने सबसे बड़ी परेशानी मेरे हाथों की थी, जो उसके सामने कुछ और परेशानी नहीं थी।
1: बिल्कुल जी।
2: तो वो सब, और मैं जहाँ भी गया हूँ, मेरे भाई मेरे साथ थे, तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ कभी भी। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। फिर हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ के जो डॉक्टर हैं उनसे मिले, उन्होंने एडमिट कर लिया था पहले तो, और एडमिट करने के बाद जो एक फिटनेस होती है, फिटनेस निकलवानी पड़ती है अपने को कि अपनी बॉडी फिट है ट्रांसप्लांट के लिए या नहीं
1: जी।
2: तो वो सब करने के बाद 2 महीने का टाइम लगा उसमें, ऑल बॉडी चेकअप होता है उसमें
1: जी। और करीब कितना खर्चा है आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इन सब चीजों का?
2: फिटनेस में अपना उतना ज्यादा खर्चा नहीं आता, वही 4-5-6 हजार रुपए में सब हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा 10 हजार।
1: मैं पूरे ट्रांसप्लांट की बात कर रहा हूँ।
2: सर, ट्रांसप्लांट में तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए आपको जनरल हॉस्पिटल KEM हॉस्पिटल में, कम से कम 10 लाख
1: जी। तो कैसे आपने ये नीड पूरी की अपनी?
2: सर, उसके बाद अपना ट्रांसप्लांट का खर्चा होता है, अपने को जो HOD मैडम है प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट की
1: जी,
2: वो ही अपने को एक एस्टीमेट बना के देते हैं कि आपका इतना खर्चा आएगा, उस पे पोस्ट लिखा रहता है, तो अपन वो कहीं से भी करवा सकते हैं।
1: मैंने सुना है कि मध्य प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं और मध्य प्रदेश सरकार ने आपकी बहुत हेल्प की इस चीज में फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। बिकॉज मैंने पहले भी कुछ लोगों के इंटरव्यूज किए हैं और उन लोगों ने भी यही बताया कि वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे और सरकार बहुत हद तक अपने मतलब प्रोटोकॉल से बाहर जाकर हेल्प जरूर करती है ऐसे केसेस में।
2: जी सर, एक्चुअली कैसा रहता है कि एक तो जैसा अपने को जो कॉस्मेटिक हॉस्पिटल से मिलता है
1: जी,
2: वो और अपने अपन को एक लेटर लिखवाते हैं, अपने जो MLA होते हैं, अपने क्षेत्र के एक MLA होते हैं
1: जी,
2: उनके पास जाना पड़ता है, उनसे रिक्वेस्ट करने पड़ते हैं, उनको एक लेटर देना पड़ता है, और फिर वो अपना लेटर और वो एक अपने तरफ से लेटर लिख के CM को देते हैं, CM को भेजते हैं, तो फिर CM फंड से पैसा आते हैं। और बस ऐसा रहता है कि कोई स्टेट जितना कॉस्ट रहता है उतना दे देती है, बट कोई कोई स्टेट गवर्नमेंट ऐसी होती है जो 100% नहीं देते
1: जी।
2: तो मैं अपनी स्टेट गवर्नमेंट का भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की है कि जितना मेरा पैसा था उतना ही उन्होंने हॉस्पिटल में ट्रांसफर करवाया।
1: और इन सब प्रक्रिया में जो सरकारी प्रक्रियाएं, आपको कितना टाइम लगा? क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, या जो हमारा चलन है कि राजनीति में या फिर पॉलिटिशियंस के चक्कर बहुत लगाने पड़ते हैं, विधायक MLA जो आपने बताए, तो इन सब में आपको करीब कितना टाइम लग गया?
2: जब मैं हॉस्पिटल से रिटर्न आया तो मैं पहले सबसे पहले अपने MLA के पास गया, उसमें मुझे करीबन 2-3 महीने मैंने इधर से उधर बैठा, लेकिन मेरे MLA बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे ज्यादा परेशान किया, मेरी सिचुएशन को समझते हैं कि मेरी परिस्थिति कैसी है, उनके ज्यादा परेशान नहीं किया, मैं एक बार ही उनके पास गया और मेरा काम हो गया। बट पैसा हो गया, फिर CM फंड से पैसा आने में टाइम लगता है, तो वही 5-6 महीने में पूरा पैसा हॉस्पिटल में पहुंच गया।
1: तो आते हैं ट्रांसप्लांट की बात पर, जब ये ट्रांसप्लांट हुआ, सक्सेसफुल हो गया, जब आपको होश आया, तब आपका आपकी प्रतिक्रिया क्या थी, आपके परिवार वालों की प्रतिक्रिया? जो चीज कभी सोची नहीं थी वो पूरी हो गई थी
2: जी। तो सर उसमें ऐसा है, जब मैं ओटी में गया उसके बाद जब मैं ट्रांसप्लांट हो गया और मुझे आईसीयू में भेजा गया, मुझे होश आईसीयू में आया था, मैंने देखा मेरे दोनों हाथों पे पट्टी थी, ट्रांसप्लांट मेरे एक हाथ का हुआ था, राइट हैंड का ट्रांसप्लांट हो गया था बट लेफ्ट हैंड का थोड़ा सर्जरी इशू की वजह से वो नहीं हो पाया।
1: जी, तो अभी एक हाथ का हो चुका है आपका।
2: जी जी, टाइम पे आई थिंक मैं था और मेरे साथ डॉक्टर्स थे, मेरी फैमिली को अलाउ नहीं था अंदर आना
1: क्योंकि 2021 में कोविड चल रहा था आई थिंक, तो शायद उसके रेस्ट्रिक्शन कम है। आपने बताया कि 2021 में फिर आपका ट्रांसप्लांट हुआ, अब 2022 चल रहा है, तो अब आप कितनी एक्टिविटीज आप उस हाथ से कर पाते हैं?
2: सर एक्टिविटी को तो मेरा मानना है कि मैं अपना 100% इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, क्योंकि मैं अपने सारे काम कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं जाना है तो जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ।
1: शो की शुरुआत में मैंने एक लाइन बोली थी कि जो चीजें आप इस घटना के पहले कर पाते थे उससे ज्यादा बेहतर चीजें आप करने लगे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए किस तरह की ऐसी बेहतर चीजें जो ट्रांसप्लांट के बाद ज्यादा अच्छे से करने लगे हैं आप?
2: सर एक्चुअली जब मेरा एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद मैं 100% दूसरे पर डिपेंड हो गया था, मैं खाना खाना है तो भी किसी दूसरे के हाथ से खाना है, पानी पीना है तो भी दूसरे के हाथ से पीना है, फिर जाना है तो दूसरे का वेट करना है कि कोई साथ में जा रहा है या नहीं जा रहा है, कुछ भी करना है तो दूसरे पर ही निर्भर रहना पड़ता था, और तब मैं अपने हाथ से खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, नहा सकता हूँ, कपड़े पहन सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, टाइपिंग कर सकता हूँ, कंप्यूटर पे काम कर सकता हूँ। अभी मुझे क्रिकेट बहुत पसंद था, आई थिंक थैंक यू मेरे डॉक्टर जिन्होंने मुझे इस लाइक बना दिया, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, बॉलिंग कर सकता हूँ, बैट भी पकड़ सकता हूँ, और उसमें भी मैं मेहनत करता जाऊँगा तो और अच्छा होगा, और मुझे लगता है कि 90% मैं अपने जो मेरे एक्सीडेंट से पहले जो मेरी लाइफ थी मैं 90% अपनी लाइफ वैसी ही जीने लगा।
1: राहुल जी, हमने सब चीजों के बारे में बात कर ली, लेकिन जो सबसे बड़ा हाथ जिसका है इस पूरे घटना में, इस पूरी अच्छाई में, वो है एक डोनर का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसको अगर आप धन्यवाद कहना चाहते हैं तो आप शो के माध्यम से भी कह सकते हैं।
2: जिन्होंने मुझे हाथ दिया मैं उनका अपने दिल से धन्यवाद करता हूँ, और उस फैमिली को भी मैं धन्यवाद करता हूँ जो इतनी महान फैमिली जिन्होंने अपने अपने फैमिली मेंबर्स का एक जो ऑर्गन होता है अपने दोनों हाथों से उन्होंने दान की, उन्होंने ये सोचकर कि चलो हमारे तो जो हो गया वो हो गया, लेकिन हमारे हमारे द्वारा किसी दूसरे की लाइफ यदि सबरती है तो वो ये सोचकर ही पॉजिटिव माइंड लेकर आगे आए, उन्होंने अपने परिवार के सदस्य का जो ऑर्गन है वो डोनेट किया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने सोचा था कि उनसे मिलूँ बट मुझे नहीं पता है कि वो कौन है, मेरे लिए अनमोल है, लेकिन मेरे लिए बहुत भगवान के समान है वो जिन्होंने मुझे एक लाइफ दी, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ।
1: बिल्कुल राहुल, हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं अंगदान को लेकर, उन सब के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारी जो श्रोतागण हैं उनको, तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे मिथ्स हैं अंगदान को लेकर, बहुत सारे लोग अंगदान के लिए आगे नहीं आते, तो उन सब लोगों को, क्योंकि आप एक लिविंग एग्जाम्पल है जिनको ये अंग मिले और किसी के हाँ कहने पे आपकी पूरी जिंदगी बदल गई, तो आप सबसे अच्छे पर्सन है इस मैसेज को देने के लिए, तो अगर आप श्रोताओं को अगर इस बात पर कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ अपील करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
2: जितने लोग भी सुन रहे हैं मैं उन सबसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्गन डोनेशन के लिए आगे आए, क्योंकि ये सबसे बड़ा दान है। आप कभी कुछ भी पुण्य मत कीजिए, यदि आपने एक ऑर्गन डोनेशन किया है तो आप एक ऐसे इंसान की लाइफ सजाते हैं जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आ रहा है। किसी की बॉडी एक्सपायर होती है, आप उस बॉडी को ले जाके उसका संस्कार करते हैं, कुछ नहीं मिलता है, लेकिन यदि कोई ऑर्गन डोनेशन करता है, ऑर्गन डोनेट करता है, तो वो इंसान उसका कुछ अंग हमेशा जिंदा रहता है, उसकी यादें जिंदा रहती है, आप उसको हमेशा जिंदा देख सकते हो। इसके लिए सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा डोनेट करें, ऑर्गन डोनेट करें, और इसमें ज्यादा से ज्यादा हेल्प करें, लोगों को जागरूक करें कि हर एक ऐसे इंसान की जिंदगी बदल जाती है जो कभी सोच नहीं सकता था कि कुछ ऐसा हो सकता है, जो अपनी जिंदगी से हार जाता है, थक जाता है, और अपने इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ऑर्गन न मिलने के कारण उनकी मौत हो जाती है। तो यही चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा डोनेट करें ताकि लोगों को बचाया जा सके, उनको नया जीवन दिया जा सके।
1: राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला और इतनी अच्छी बातें हमारे श्रोताओं को बताई। मैं श्रोताओं को भी यही कहना चाहूंगा कि जैसा राहुल जी ने कहा कि एक इंसान अगर अपने अंगों को दान करके जाए तो वो एक नहीं बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बचा सकता है, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां संवार सकता है। तो मेरी भी आपसे यही अपील है कि आप अंगदान के बारे में जरूर जानें और जानने के बाद अपना निर्णय लें कि आप इसे करना चाहते हैं या नहीं। करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जानने के बाद नहीं करना चाहते तो कोई जबरदस्ती नहीं है, फैसला आपके ही हाथ में रहेगा, लेकिन जाने जरूर। तो चलिए यहाँ पर हम इस शो को खत्म करते हैं और जल्दी ही आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। राहुल जी का भी हम धन्यवाद करते हैं एंड उन डॉक्टर्स का भी, उस डोनर फैमिली का भी हम धन्यवाद करते हैं कि इम्पॉसिबल सी लगने वाली चीजें पॉसिबल कर देते हैं ये लोग, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो ऐसे डोनर हो या उनकी फैमिली हो, जो इतने दर्द के समय में भी इतना कठिन निर्णय करते हैं। धन्यवाद।
3: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चहुं ओर फहराएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं।

0: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंग दान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।
1: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चहुं ओर फहराएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं।
0: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंग दान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व समारोह को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये 1000 वर्ष के लिए भारत की प्रेरणा का उत्सव है। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा के प्रतीक के रूप में खड़ा है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन।
1: सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से सात अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पुलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया।
1: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को करना होगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में आज आयोजित CII के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भटियात उपमंडल में पर्यटकों को ले जा रहे एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 बच्चों सहित 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 885 अंक गिरकर 76,443 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ?
2: मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं।
1: मैं रलने में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ।
3: बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर।
4: अरे ये पेड़ तो सूख गया, चलो इसमें पानी डालते हैं।
5: अब पानी डाल के क्या फायदा?
4: अरे पानी डालेंगे तभी तो फूल खिलेंगे।
5: अरे पापा, आप ही ने तो बताया था जब पेड़ एक बार सूख जाए उसमें जितना भी खाद पानी डालो वो ठीक नहीं हो सकता।
6: आप ही ने तो कहा था कि एक बार घड़ा खराब हो जाए तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता।
3: अगर एक बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो चाहकर भी हम दोबारा उसे ठीक नहीं कर सकते। अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें।
7: 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने से स्तनपान। 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक नई सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। तो आइए उन्हें याद करके आज हम ये शपथ लें कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे। अपने देश के लिए अपनी ये अहम जिम्मेदारी हम जरूर निभाएंगे। जय हिंद।
1: कैसे?
2: कर्तव्य।
1: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हो भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लगे, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
3: समझ गए सर।
1: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: धर्मशाला के निवासी भाइयों और बहनों, नगर निगम चुनाव का समय आ गया है। याद रखिए, हमारा शहर खुद ब खुद विकसित नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी दूरदृष्टि जो धर्मशाला को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।
4: जी बिल्कुल, एक गलत चुनाव हमारे शहर को पीछे धकेल सकता है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने, नगर निगम में केवल एक ईमानदार और कर्मठ प्रतिनिधि को ही चुने।
5: आपका एक वोट धर्मशाला का सुनहरा भविष्य है।
6: जागो नागरिक, सोचो समझो और सही प्रतिनिधि चुनो।
7: काकू, दुनिया में एक ऐसी चीज का नाम बता जिससे तेरी बीवी का कभी दिल नहीं भरता।
8: एक नहीं, ऐसी दो चीजें हैं, एक कपड़े और दूसरे गोलगप्पे। कितने ही खिला लो और कितने ही दिला लो, कभी जी नहीं भरेगा।

दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी आशी दोस्त रुचिका के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला पंजाबी गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो रंजन धर्मशाला और आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं पंजाबी गीतों के कार्यक्रम में। बिल्कुल कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं अगला ये प्यारा सा खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी एंजॉय कर रहे थे पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ?
2: मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं।
1: मैं रलने में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ।
3: बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर।
4: अरे ये पेड़ तो सूख गया, चलो इसमें पानी डालते हैं।
5: अब पानी डाल के क्या फायदा?
4: अरे पानी डालेंगे तभी तो फूल खिलेंगे।
5: अरे पापा, आप ही ने तो बताया था जब पेड़ एक बार सूख जाए उसमें जितना भी खाद पानी डालो वो ठीक नहीं हो सकता।
6: आप ही ने तो कहा था कि एक बार घड़ा खराब हो जाए तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता।
3: अगर एक बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो चाहकर भी हम दोबारा उसे ठीक नहीं कर सकते। अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें।
7: 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने से स्तनपान। 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170181701। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक नई सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। तो आइए उन्हें याद करके आज हम ये शपथ लें कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे। अपने देश के लिए अपनी ये अहम जिम्मेदारी हम जरूर निभाएंगे। जय हिंद।
1: कैसे
2: कर्तव्य?
1: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हो भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
3: समझ गए सर।
1: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: धर्मशाला के निवासी भाइयों और बहनों, नगर निगम चुनाव का समय आ गया है। याद रखिए, हमारा शहर खुद ब खुद विकसित नहीं होगा। हमें चाहिए एक ऐसी दूरदृष्टि जो धर्मशाला को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।
4: जी बिल्कुल, एक गलत चुनाव हमारे शहर को पीछे धकेल सकता है, इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने। नगर निगम में केवल एक ईमानदार और कर्मठ प्रतिनिधि को ही चुने।
5: आपका एक वोट धर्मशाला का सुनहरा भविष्य है।
6: जागो नागरिक, सोचो समझो और सही प्रतिनिधि चुनो।
7: काकू, दुनिया में एक ऐसी चीज का नाम बता जिससे तेरी बीवी का कभी दिल नहीं भरता।
8: एक नहीं, ऐसी दो चीजें हैं, एक कपड़े और दूसरे गोलगप्पे। कितने ही खिला लो और कितने ही दिला लो, कभी जी नहीं भरेगा।

नमस्ते नमस्कार 91.2 मेगाहर्ट्स पर ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर होई हो कार्यक्रम ले करी माटी दी महक ता शुतो माटी दी महक कार्यक्रम दा जेड़ा कार्यक्रम मैं से तुहां तक कहां ले करी बिल्कुल हाजिर जिड़न से होई हो न कने जेड़ा घड़ी दी सुई है से अहां जो बार बार इशारा करा दी थी कि चला समय जड़े से कार्यक्रम दा हुई है समय दे अनुसार हर बार यहाँ यही बोल देना कि समय दे अनुसार चलना अहां वास्ते कितना बेहतर जरूरी है तो समय जड़े से अहां दे हर काम जल्दी जल्दी करवांदा है कि नहीं। अगर अहां जो पता है कि यहाँ समय के अनुसार कोई काम करना है या समय के अनुसार अहाँ चलना है तो अहाँ अपने जेड़ा काम मन से समय दे पहले कर देना, चाहे 2 बजे माटी दी मह कार्यक्रम तुह तक पहुँच दे कने तुह सारे जो भी जेड़ा इंतज़ार है से रहेंदे कने अहाँ जो भी जल्दी जल्दी जेड़ा अपने काम मन से अहाँ कर देना कने अहाँ भी तुह तक जेड़े से पहुँच जाते हैं कने तुह सारे भी अपने कामकार भी करा दे होने न क्योंकि रेडियो की खासियत है कि तुह अपना रेडियो सेट ऑन करी लिया या अगर तुह रेडियो सेट पर सुना देना तो रेडियो सेट ऑन करा या मोबाइल फोन पर सुना देना तो मोबाइल फोन जड़े से ऐप दे थ्रू सुना देना या क्रोम या गूगल दे थ्रू जड़ा तुह रिसर्च करके सुना दे होने न या ऐप दे थ्रू सुना दे होंगे तो मोबाइल फोन तुह ऑन करी दिया कने अपने जड़ा काम में सभी तुह करी सकते कने रेडियो जड़ा है सभी तुह सुनी सकते। कार्यक्रम जड़ा है इस वक्त माटी दी महक तुह तक कहाँ पहुँचा देन कने तुह सारे दी अपनी रेडियो दोष शशि जड़ा है से तुह कने जुड़ी हुए कने तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़ी सकते तो आशो तो जल्दी जल्दी जुड़िया क्योंकि मैं पहले भी बोलिया था कि इंतज़ार दी जेड़ा घड़ी है से तुहां वास्ते बेहतर लंबी थी पर जेड़ा इंतज़ार दी घड़ी है से बिल्कुल ख़त्म है तो चल देन पहले कर देन अपने कार्यक्रम दा आगा।

0: श्रोताओं तो सारे सुनिया ये प्यारा देया गीत प्यारी दे शुरुआत। इसी शुरुआत करने हमें जेड़ा पहले श्रोता हाँ करने जुड़ चुके हैं कर दें तिना करने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना जी? तो कुथु ते बोला दे कने तुहंदा ना किया है जी? जी मेघनाथ जी, क्या काम कार तुहा लगाया आज, क्या करा दे तुहा?
1: आज तो हाँ कुछ नहीं करा रहे, कने कल ठीक हो गए पूंगे
0: जी। अच्छा ओ ये फ्री तो हाँ
1: जी
0: ता अच्छी गल है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी, कने राती बरखा हुई।

0: जी
1: जी
0: जी ता मेघनाथ जी, आज हाँ जिड़ा गल बात करनी है से जरूर तुह तक पहुँचा देना। आज
1: हाँ
0: जिड़ा
1: जी
0: हाँ खास दिन बना देना से बना देना विश्व अहंकार जागरूकता दिवस।
1: अच्छा जी
0: जी ता अहंकार जिड़ा है से बोलने वास्ते ता छोटा दिया लफ्ज है ना जी।
1: अहंकार नहीं होना चाहिए ना। जिस साल जी अहंकार ही आई है तो सब कुछ खत्म हो गया ना।
0: जी सब कुछ खत्म हुई है ना
1: अब
0: जी।
1: ये आदमी अहंकार कर लेना ना आप कुछ
0: जी
1: तो समझ लिया सब खत्म है, क्योंकि उन्हें गल भी तरीका तरीके ने कोई गलबात करनी है
0: जी
1: नहीं,
0: जी अगर हाँ अहंकार
1: करके
0: जी जी
1: अहंकार नहीं करना चाहिए
0: जी
1: और प्यार से कुछ भी बात करो, प्यार से करो, बड़े
0: जी
1: प्रेम में, बड़ा है छोटा है कोई भी रहता है, मतलब
0: जी जी
1: अच्छी अच्छी शिक्षा देना चाहिए।
0: जी कने हाँ हमेशा ही बोल देना कि पेरेंट्स अपने बच्चे जो हमेशा अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कर देना, अच्छे संस्कार जीवन से तीन तक पहुँचा देना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी ता मेघना जी आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करके जी।
1: आज यहाँ भजन सुनना
0: जी कुंदिया
1: श्यामा तू अपना नहीं बनिया मैं रिया तेरे को लेके। हाँ जी
0: जी श्यामा तू अपना ना बनिया मैं रिया तेरे भरोसे है शायद।
1: हाँ जी
0: जी जी जरूर ये जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा दें जी। तो तुह जो कितना की
1: बहुत
0: इंतजार
1: धन्यवाद।
0: है आईपीएल मैच दा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी तुहंदा भी धन्यवाद जी। ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्म शाला ताशो तो हर साल 11 मई जेड़ा कि यहाँ अज खास दिन बना देना विश्व अहंकार जागरूकता दिवस। तो हाँ सारे जो ये पता है कि अहंकार जेड़े से अगर अहाँ अच्छे वास्ते रख देना ता बड़ी अच्छी गल है। कने अगर अहाँ अहंकार अपने अंदर जेड़ा अहंकार जो भूमिका देन देना तो कुछ ना कुछ से अहाँ दी जिंदगी पर प्रभाव जेड़े से जरूर पांदे है। अगले जिड़ा श्रोता न तिना कन्ने भी करी लेंदे न गल बात। हेलो
1: नमस्कार महाराज जी।
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तोहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न
1: जी महाराज बिल्कुल ठीक ठाक जी। हाँ
0: जी। तो हाँ अपना ना दसी दिया तेने कोहा जगह दे रहने आले न जरूर दसी दिया
1: मेरा नाम जी हरदेव है, डाढे दा रहने वाला जी मैं
0: जी। हरदेव जी डाडे दे रहने आले ना
1: जी महाराज।
0: जी। ता हरदेव जी डाडे दा जेड़ा मौसम है से इस टाइम किस प्रकार बनया।
1: इस प्रकार बने जनाब बिल्कुल मौसम ठंडा हुई है,
0: जी
1: कने हवा लगी हुई है,
0: जी अच्छा
1: कने पौने दा कुछ थोड़ी देर बाद हो सकता कि छिट्टे पौना शुरू हो जाए।
0: जी जी ता आज ता आईपीएल मैच भी है तो फिर ही तो हाँ क्या जेड़ा
1: हाँ ये चंद है महाराज की आईपी मैच है, सब बढ़िया खुशी ने होना चाहिए, कने बरखा क्या उस वक्त नहीं होना चाहिए है।
0: जी
1: हाँ जी इस वक्त बेशक हो यहाँ से हुई यहाँ के छिट्टे पे ही है महाराज जी
0: जी पे ही
1: बरखा।
0: बस ना
1: हाँ
0: ही
1: जी
0: गया कहना छिट्टे भी जड़न से पे ही गए ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी चलो अहाँ जड़े से थोड़ा दी दुआ कर दे ना कि जालू मैच शुरू होना है तालू बरखा जड़े से थमिया बरखा जड़े से ना हुए ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी जी कने आज अहाँ जेड़ा खास गाल बात करा देना सभी तुहां तक कहाँ जरूर पहुँचानी है ना जी। विश्व
1: जी
0: अहंकार जागरूकता दिवस जेड़े से आज अहाँ बना देना जागरूक जेड़े से
1: जी
0: अहाँ करा देना तो तुहें क्या
1: आ,
0: लगता।
1: देखा जनाब अहंकार तो इंसान जो करना नहीं चाहिए,
0: जी
1: रब ने अहंकार किया डूबी गया
0: जी जी
1: है, कंस अहंकार किया डूबी गया
0: जी
1: है, तो इंसान अहंकार करता सब डूबदा डूबदा डूबी जाता, तीसरे कोई नहीं भी तोपदा
0: जी
1: बोलता
0: जी
1: है, बोल दे बंदा अहंकारी है, उसने गलबात में नहीं करनी
0: जी
1: है,
0: कने
1: तो
0: जी जी
1: अतिशय खड़ी हिंदे फिरी कहीं
0: जी
1: जेड़ा प्रेम प्यारा होंगे तीसरे दूरे दे सद्दी लेंदे आप आओ गल कर ले है,
0: जी
1: कहीं जनाब अहंकार जो अहंकार क्या है ये पक्का दुश्मन अहंकार ही है। हाँ
0: जी जी अहंकार
1: जी
0: कुसी भी गल्ला दा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था ना जी।
1: नहीं करना चाहिए जान जी।

0: क्योंकि मैं जेड़ा है ना उसे सब कुछ सिखाइंदा
1: हाँ जी हाँ जी जेड़े मैं ले जाती जनाब है।
0: जी।
1: हाँ जी
0: जिना मौसम अपना रंग रूप चेंज करा दा। चलो आज कने दौर दी अगर अहां गल करना तो कुथी ना कुथी इंसान भी खुद जो ज़्यादा जेड़ा ऐसे अहमियत दिंदा है या अपना जेड़ा फायदा है ऐसे ज़्यादा दिखता है, चाहे अगला जेड़ा व्यक्ति है उस जो परेशानी हो है या कुछ भी हो, अहां जो जेड़ा ऐसे कोई फर्क नहीं पौंदा ना जी।
1: हाँ जो कोई फर्क नहीं पाता जनाब कने हाँ कार ही नहीं अड़ता जे संत महात्मा ने सत्संग सुनते रहन कीर्तना सुनते रहन
0: जी
1: मतलब
0: जी
1: अच्छी अच्छी गल्ला सुनते रहन तो हाँ कार ही फर्क पी जाता है
0: जी ये भी
1: कने
0: बड़ी
1: नहीं
0: सही।
1: सुन
0: जी
1: हाँ
0: जी
1: जी
0: जी
1: नहीं सुनने तो तुम हाँ कार ही बढ़ता जाता है।
0: जी
1: हाँ जी
0: जी अहाँ दे अगर अहाँ अपनी फैमिली पर गाल करिए, क्योंकि बार बार अहाँ फैमिली पर गाल करते रहन दे, क्योंकि अहाँ दे जेड़ा माता पिता ना जी से
1: जी
0: अहाँ वास्ते बड़ी एक दौलत है ना जी।
1: बिल्कुल महाराज जी
0: क्योंकि से अगर अहाँ जो अच्छे संस्कार दिंदे ना तो अहाँ जो समझ आता है कि तिना दे जेड़ा अच्छे संस्कार हैं तिना दी अहाँ दे जीवन च कितनी अहम भूमिका है ना जी।
1: जी महाराज
0: क्योंकि जैलू अहाँ कुसी ने गल कर दी ना कने अगला जेड़ा व्यक्ति है से अहाँ जो अच्छा बोलता है तो अहाँ जो भी प्राउड होता है कि नहीं अहाँ दे जेड़ा माता पिता ना तिना अहाँ जो अच्छे संस्कार जेड़ा से दिते हो ना जी,
1: जी महाराज बड़ी
0: कने
1: खुशी
0: जी
1: होंगी
0: जी बड़ी ज़्यादा खुशी होंगी। कने अगर हाँ कुसी दी मदद कर देना या हाँ जो लगता है कि कुसी दी मदद करना चाहिए या कोई तकलीफ चाहे अगर हाँ उस दी मदद कर देना तभी यहाँ जो अच्छा फील होंगे ना जी।
1: अच्छा फील होंगे कि ना कार नहीं करना चाहिए मैं मदद
0: जी
1: की तेब नहीं गलाना चाहिए इस
0: जी
1: पता नहीं चाहिए कि सत्य बोले सत्य देगा ना सत्य पता नहीं चाहिए।
0: जी
1: हाँ
0: जी पर बोलना भी नहीं चाहिए कि नहीं यहाँ कुसी दी
1: हाँ
0: मदद कीती
1: जी
0: है। जी
1: बिल्कुल जी बिल्कुल जी
0: जी जी ता हरदीप जी आज तो हाँ कुंतिया गीत सुनना पसंद कर गए।
1: आई जनाब तो हाँ गीत मुंजो कोई शिव जी का गाना सुनाई दिया भजन सुनाई दिया महाराज
0: जी शिव जी जी दा भजन सुनना है तो हाँ
1: जी महाराज
0: जी जरूर तुहों दी जेड़ा फरमाइश है से तुहों तक पहुँचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहों दा
1: धन्यवाद महाराज जी
0: जी। ता श्रोताओं थोड़ा दे आगे बढ़ देना कने अपने कार्यक्रम दे सफर जो आगे बढ़ा देना।

दर्शकों तो सारे सुनिया ये प्यारा दिया भजन प्यारी दे फरमाइश। इस भजन की फरमाइश हाँ जो आई हुई है मेघनाथ जी की कने से रहने वाले न दाड़ी ते तिना तक हाँ ये गीत पहुँचाया कने तो हाँ सारिया भी इंजॉय किया कने अज हाँ जिहड़ा खास दिवस जिहड़ा बना देन से बना देन विश्व अहंकार जागरूकता दिवस। हर साल 11 मई 2000 जिहड़ा इस साल अहां बना देन 11 मई जो कने तुहां सारे भी मेरी जेड़ा गलबात है से जरूर सुना दे होने न। तो जल्दी जल्दी अगर तुहां कार्यक्रम दे सफ़र करने नहीं जुड़े न तो जुड़िया क्योंकि ये सफ़र तुहां तक रहिंदा है 2 से 3 बजे तक। तो श्रोताओं अहंकार जेड़ा अहां दे श्रोता ने तिना भी अपने जेड़ा विचार हैं से तुहां तक जरूर सांझा किते न। तो अहंकार जेड़े से अहां जो बिल्कुल अपने अंदर जेड़े से नहीं रखना चाहिए। अगर अहां अहंकार कुछ पाने वास्ते रख दे न या से अहंकार जेड़े से अहां जो सफलता दी ओर लेकर ही जांदा है तो से सबसे बेस्ट तरीका है। पर अहां कई बार होंदा ना कि अहंकार च अगर अगला व्यक्ति है उस जो बुरा लगियाँ या कुछ भी जड़े से अहां जो नहीं करना चाहिए। प्रेम भावना जड़े से हमेशा अपने अंदर जड़े से अहां जो रखना चाहिए। हर बार अहां यही बोल दी कि कोई भी अहां काम कर दें अगर अहां प्रेम भावना ने कर दें या मेहनत ने कर दें तो मेहनत का फल हमेशा मीठा होंदा। मेहनत ने अहां कोई भी काम हासिल कर दें तो अहां जो खुद जो भी अच्छा लगता है कने अहां जालू कुसी दी मदद करा देना या कुसी जो अच्छा कुसी दी भी अहां मदद करा देना चाहे से बुजुर्ग हैं चाहे से बड़े न चाहे से छोटे न चाहे से अहां दे माता पिता न तिना दा अहां मान सम्मान करा दे। या कई बार होंदा ना कि अहंकार जहां कुछ भी जड़े से बोलना शुरू करी दे बोलने ते पहले 100 बार जड़े से अहां जो सोचना चाहिए कि अहां सही बोला दे कि अहां गलत बोला दे। तो थोड़ा देर अहां भी तुहां पर सोच विचार जड़े से जरूर करी लेंदे न कने थोड़ा देर अग्गे जड़े से पढ़ते न कने अगली जड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचाते न।

0: बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारी इस वक्त कार्यक्रम इंजॉय करा दिन अपने रेडियो तो शशि कने कने इसी कने तो हाँ ये भजन जड़े सभी इंजॉय कीता। इस भजन की फरमाइश अह जो आई हुए डार ते कने तिना दा नाव है हरदेव जी तिना तक अहाँ ये गीत पहुँचाया ये भजन अह तिना तक पहुँचाया कने तो हाँ सारे भी इंजॉय कीता। मौसम दी जिहड़ा गलबात अहां करन तां मौसम दी और भी अपना जिहड़ा ध्यान है से जरूर जांदा है तां मौसम दी जिहड़ा स्थिति है से दिन भर हल्की बारिश कने गरज कने जिहड़ा बुछारे न से पी सकदियां न मतलब पड़ने दी जिहड़ा संभावना है से है कने वैसे भी अहां दे जिहड़ा डाडे ते श्रोता जुड़े थे तिना भी दस्या था कि बरखा दे जिहड़ा छिट्टे न से पौना शुरू होई हो तां मौसम दा अपना ही जिहड़ा अलग ही अंदाज है कने तापमान जिहड़ा है से रहने वाला अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस है कने न्यूनतम तापमान की अहां गल करना तो 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जिहड़ा है से जरूर जताया है कने बाकी जानकारी तो हम अगे दिंदे न कने अगली जिहड़ा श्रोता ने तिना कने कर दे न गल बात। हेलो
1: जी
0: तो हाँ अपने रेडियो सर की आवाज पहले कम करी लिया फिर ही बाकी जिहड़ा गल्लां ने से हाँ शुरू कर देन। हेलो नमस्ते जी स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना
1: जी। हां जी हां जी तां सुणा दे
0: जी।

0: यहाँ तो बिल्कुल ठीक ठाक इन जी तुह कुथू ते बोला दे कने तुह दा ना किए जी
1: हाँ तपोवन से बोल रहे जी सेतुराम।
0: जी सेतुराम जी तपोवन दा मौसम क्या बोला दा इस टाइम
1: ये तो एक खरा सोड़ हुई है तो थल्ले
0: जी हो ये सोड़
1: हाँ जी हाँ जी ये थल्ले द्वारे रेडिये गुंजन पे थल्ले रही है
0: जी ता मुझे लगा था अंदर तो इतना ज्यादा पता नहीं चलता पर बरखा जी रह से बाहर लगी पी हो है
1: हाँ जी हाँ जी ये बकरियां चढ़ी है ना इतना खेड़ी सरस सारा पे
0: जी
1: ही है छोड़
0: जी जी ताता मतलब अली मैं गाली करा दी थी मौसम दे ऊपर पर मौसम ने अपना करवट जरूर जड़े से बदली लिया ना जी
1: लिया। हाँ
0: जी
1: जी
0: कने
1: ठंडी
0: वैसे
1: दे हवा आई ना थल थल के पास से कने
0: जी जी
1: तीन एक बार गई जता छोड़
0: जी जी कने वैसे भी आज मैच है तो थोड़ा दिया
1: जी हाँ
0: जी
1: जी मैच तो होना चाहिए कि इस बार टिकट भी बड़ी महंगी देती हो है।
0: जी ता क्या टिकट रही इस बारी
1: हाँ जी पिछली
0: टिकट का रेट क्या रहा है इस बारी?
1: बार तो 1200-1500 रुपये 2500 रुपये तो रेट नहीं है कोई भी
0: ओहो जी, ता तो फिर
1: जी
0: मैच होना ही चाहिए ना जी
1: हाँ जी कहीं कि बड़े दिनों से उम्मीद लाई बैठे ना लोग इतने दे
0: जी जी ता क्रिकेट प्रेमी जेड़ा ने तिना जो वैसे भी इंतजार था कि कालू दिया 11 मई होंगी है कने हाँ
1: हाँ जी हाँ जी
0: जेड़ा
1: हाँ जी
0: ऐसे धर्मशाला स्टेडियम च जानते ही ना कने मैच जेड़ा
1: हाँ जी
0: ऐसे इसका एंजॉय लेंदे ना
1: हाँ जी हाँ जी मैच तो
0: जी
1: होना चाहिए भी इससे बड़े सारे फायदा है ना क्योंकि व्हीकल वाले फायदा है दुकानदार है फायदा है
0: जी जी सारे ही
1: हाँ जी होटल
0: जी पर
1: वाले फायदा है हाँ
0: जी पर व्हीकल आए तो यहाँ यही बोलना चाहेंगे कि जिन्हें अपने वाहन रखे हो ना से थोड़ा दिया समय के अनुसार चलिया ना कने जेड़ा ट्रैफिक नियम हैं तिना दा भी जरूर पालन करना
1: जी
0: जी
1: पालन करना जी हाँ
0: जी
1: जी
0: कई बार होता ना कि यहाँ थोड़ा देर लेट हो जाते तो जल्दबाजी च कुछ भी जेड़ा ऐसे हो ही सकता था इससे अच्छा अगर हाँ समय के अनुसार जाते ना समय के अनुसार चलते ना तो हर काम अच्छा लगता है ना जी समय के अनुसार
1: हाँ जी हाँ
0: जी ता आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करगी जी
1: कोई पहाड़ी गीत सुनाई दे पुराना कोई
0: जी पुराना गीत सुनना तो हाँ आज पहाड़ी कोई
1: हाँ जी
0: भी
1: हाँ जी
0: जी जरूर तो दी जेड़ा फरमाइश है से तो तक पहुँचा दें जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी
1: कोई नहीं
0: तुहंदा
1: तुहाड़ा भी धन्यवाद जी
0: जी ए है तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला ता श्रोताओं तुहा मौसम दा जेड़ा हाल चाल है से जरूर सुनी लिया होने तपोवन दा या सिद्धबाड़ी दी यहाँ गाल करना ता बारिश जेड़े से शुरू हुई हो है कने थोड़ा देया मौसम अपना जेड़ा बदलाव है से जरूर लै दे पर मौसम के अनुसार चलना भी यहाँ वास्ते जरूरी है क्योंकि मौसम के अगे तो हाँ कुछ भी नहीं करी सकते थोड़ा देया फिरी ते अगे बढ़ते ना कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा देना सुन दे इस प्यारे दे गीत जो अगर इस गीत की अहाँ जिक्र करने कि इस गीत की फरमाइश अहाँ जो कुत्ते आई हुए तो तुम सारे जो भी इंतजार जड़े से जरूर रहें कि फरमाइश जड़े से यहाँ तक पहुँचे कने अहदा जड़ा ना है या कुछ भी है से जरूर तुह तक पहुँचान ता ये फरमाइश अहाँ जो व्हाट्सएप के थ्रू आई हुए कने तिना दा नाम है इंदु जी कने तिना दे जेड़ा सोगी सुनना चा जेड़ा गाना तिना तक पहुँचाना है तिना दा नाम है दीपांशु जी तिना तक कहाँ ये गीत पहुँचा देना तो हाँ सारी इस गीत जो ज़रूर इंजॉय करा।

श्रोताओं तो सारे सुनिया ये गीत कने तो सारे सुना देन माटी दी महक कार्यक्रम जेड़ा कि तुह तक लाइव चल रहा कने तो सारी भी इस कार्यक्रम दे सफर कने जुड़ी सकते कने अहाँ जेड़ा गलबात करा देन सभी तुह तक जरूर अहाँ पहुँचाने विश्व अहंकार जागरूकता जेड़ा दिवस है से अहाँ बना देन 11 मई जो जेड़े से दिन अहाँ बना देन कने इस इसका उद्देश्य जेड़ा है से अहंकार दे जेड़ा खतरे न तिना ते बचना हाँ वास्ते कितना ज़्यादा जरूरी है। व्यक्ति च अहंकार जेड़ा है से कम होना कितना ज़्यादा जरूरी है या अहंकार अगर हाँ अपने अंदर रख देन तो कुथी ना कुथी ये जेड़ा अहंकार है से हाँ जो परेशान जेड़ा है से जरूर करता है। श्रोताओं अहंकार तुह सारे जो पता है कि जिंदगी है जिंदगी च जड़ा से जिंदगी अहाँ जो हर सबक जड़ा से जरूर देख रही जानती है पर अहाँ अगर अपने अंदर अहंकार रख देन तो कुथी ना कुथी अहाँ अपनी जिंदगी च असफल जड़ा से जरूर होंगे न कने चाहे अगर अहाँ सफल हैं कने अहाँ अपने अंदर बड़ा जड़ा अहंकार है से रखा देन तो कुथी ना कुथी अहंकार जड़ा से अहाँ जो डुबाई भी देता है। तो थोड़ा दिया अहंकार जो साइड रखा कने प्यार भावना जड़ा है से एक ही दुए अंदर जड़ा है से जरूर रखा क्योंकि अगर अहाँ समय की गल करिए समय उपर अहाँ बार बार जड़ा है से बोलते रहते न कि समय के अनुसार चलना हाँ वास्ते जरूरी है कने नकारात्मक जड़ा अहाँ दी विचार हैं अहाँ दे जेड़ा सोच विचार हैं तिना जो अपने अंदर बिल्कुल नहीं रखना है। अगर तो हाँ अच्छे सोच विचार अपने अंदर रख देन अच्छा सोच देन सकारात्मक सोच देन कई बार होंदा ना कि हर व्यक्ति दी अपनी अपनी सोच होंदी कने हर कोई यही सोचता कि हाँ अपनी जिंदगी च हमेशा खुश रहने कने जितना कि हाँ अपनी जिंदगी च बेहतर करना चाहन या हाँ मेहनत करी करी हर चीज़ जड़े से हासिल करन मेहनत करी करी अहाँ जालू कोई भी चीज़ हासिल कर देन या अपना जेड़ा लक्ष्य है से प्राप्त कर देन तो अहाँ जो खुशी होंदी है कने जेड़ा अहाँ दे माता पिता न तिना जो भी बेहतर खुशी जेड़ा है से जरूर होंदी है कने अहाँ जो हर कुसी दा मान सम्मान जेड़ा है से करना चाहिदा चाहे से गरीब है चाहे से अमीर है क्योंकि अज कने दौर दी अहाँ गल करिए तो कुथी ना कुथी अहाँ ये सोचते न कि अगला जेड़ा व्यक्ति है थोड़ा देया गरीब है या अहाँ कई बार उसका जेड़ा नज़रिया है या बोलचाल है उस उपर जाना जेड़ा से शुरू हो जाते पर हर कुसी दी अपनी अपनी कंडीशन है ना हर कुसी दा अपना अपना जेड़ा व्यवहार है से है अपनी अपनी लाइफ है अगर अहाँ थोड़ा है तो अहाँ थोड़े च भी खुश जेड़ा से रह सकते पर से अहाँ पर निर्भर करता कि अहाँ किस प्रकार तिहा खुशी जो एक ही दुए कने साझा कर देन अगर अहाँ अपनी फैमिली जो समय दिन देन तो अहाँ थोड़ा दिया खुद जो भी अच्छा फील कर देन कने फैमिली जो भी अच्छा फील जड़े से करवा देन तशो तो फिर ते अहाँ थोड़ा दिया अगे बढ़ देन कने अगली जड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा देन।

0: दर्शकों तो सारे सुनिया प्यारा दिया गीत प्यारी दी फरमाइश। इस गीत की फरमाइश आज आई हुए तपोवन ते कने तिना दा नावे सीतू राम जी तिना बोलिया था कि कोई भी पहाड़ी गीत जड़े से यहाँ तक पहुँचाई नहीं हो। दर्शकों में भी अपना जड़ा फेवरेट गीत ऐसे तिना तक पहुँचाई था क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी जड़ा पसंद ऐसे जरूर होंगी है। कन्या जहाँ जड़ा गलबात करा देन से करा देन विश्व अहंकार जागरूकता दिवस के बारे च। अहंकार कने संस्कार जड़े से बड़ा फर्क होंदा। अहंकार जड़े से अहां जो अगर अहां गल करन कि झुकी करी जड़े से खुश जड़े से अहां कर देन पर संस्कार जड़ा से अहां जो स्वयं अगर अहां स्वयं जड़े से झुकी करी जड़े से खुश होंदे न संस्कार अहां दे जड़ा से अहां जो दसदे न कि अहंकार अहां वास्ते बड़ा नहीं है। संस्कार अहां दे जड़ा से अहां वास्ते मायने रखदे न। अहां दे संस्कार जड़ा से अहां जो हर कुछ सिखाई करी जांदे न। ताशो तो संस्कार जड़ा से अहां दी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करदे न। तां तो सारे जो ही यही है कि अपने माता पिता उपर प्राउड करना चाहिए कि अहां दे जेड़ा माता पिता ने तिना अहां जो अच्छे संस्कार दिते न अच्छा जेड़ा व्यवहार है से अहां जो दिता है। अगले जेड़ा श्रोता न तिना कन्ने भी करी लेंदे न गल बात। हेलो
1: हेलो राम राम जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न
1: जी? कहाँ बोलना जी?
0: जी यहाँ भी बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तो कुथु ते बोला दे कने तो हुंदा ना किया है जी?
1: हाँ रकड़े ते बोला दे जी, मेरा नाम अजय कपूर।
0: जी रकड़े ते बोला दे अजय कपूर।
1: हाँ जी।
0: जी अजय कपूर जी, क्या हाल चाल है रकड़े आले दे? मौसम क्या बोला दा रकड़े दा इस टाइम?
1: मौसम में थोड़ी थोड़ी बरखा लगी, लगना पर रुकी गई है ते
0: जी। अच्छा थोड़ी थोड़ी बरखा जेड़ा है से बूंदा बांदी हुई है या कने धूप जेड़ा है से थोड़ी थोड़ी लगी हुए?
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। तो अजय जी कदिया लगा तो हम जो ये कार्यक्रम माटी दी महक।
1: हाँ जी।
0: माटी दी महक कार्यक्रम जेड़ा है से तो हम जो कदिया लगा था?
1: बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम है।

0: जेड़ा एक दूआ 4 बजे आंदा सर भी बड़ा अच्छा सचन बनदा
1: जी
0: जी।
1: जी अच्छा रोज ही
0: मैं
1: सुन रहे
0: तो
1: तो जी
0: दोनों कार्यक्रम डेली सुन रहा
1: जी जी इतना ज्यादा तो
0: जी।
1: हाँ रेडियो
0: बड़ी
1: गुंजा
0: अच्छी अच्छी गल रखते तो हाँ भी और सचिन भाई भी
1: जी
0: जी
1: जी इतना ज़्यादा तुहां जिड़न से रेडियो गुंजन धर्मशाला दे कार्यक्रम जो प्यार दिन दे बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा दिल ते
0: जी धन्यवाद जी।
1: जी
0: गाना
1: ता
0: सुनना गुण माता दा भजन
1: जी अच्छा गुणा माता दा भजन सुनना है तुहां
0: जी जी
1: जी सर
0: धन्यवाद
1: जी जरूर तुहां दी जिड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचा दें जी चुनने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी। श्रोताओं तुम सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने ये सफर तुह तक रहा है 2 से 3 बजे तक। पर समय की ओर अगर अहाँ अपना जिड़ा नज़र है से लगान तो समय जड़े से सिर्फ अहाँ 9 मिनट न तो समय के अनुसार थोड़ा दिया फिर तो अगे बढ़ते न कने अगली जिड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा सुनते नहीं सब प्यारी दिया फरमाइश है जो कशो तो इस गीत की फरमाइश अहम जो आई हुए कांगड़े ते कने तिना दा ना वे पवना जी। पवना जी तक अहम ये गीत पहुंचा देना तुह सारी भी इंजॉय करा।

है तुहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे ना अपनी रेडियो दो शशि कन्नै। तो श्रोताओं थोड़ा दिया फिर त्यहाँ अगे बढ़ते न कन्नै अगली जेड़ा फरमाइश अगला जेड़ा भजन है से तुहां तक पहुँचा देन।

कानी दशमलव तो मेगाहर्ट्ज़ पर ये है तुम्हा सारे का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। दर्शो तो इस गीत की फरमाइश जो आई हुए रकड़ते गलती ना दा।

दर्शो तो इस कार्यक्रम का जरा समय है से तुह तक रहा है 2-3 बजे तक। कहीं तुह सारे जो ही पता है कि आज जरा मैच है, IPL का मैच है। कहीं मौसम भी जरा अपनी करवट जरूर बदला।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ?
2: मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं।
1: मैं रल्ले में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ।
3: बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समा जाना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर।
4: अरे ये पेड़ तो सूख गया, चलो इसमें पानी डालते हैं।
5: अब पानी डाल के क्या फायदा?
4: अरे पानी डालेंगे तभी तो फूल खिलेंगे।
5: अरे पापा, आप ही ने तो बताया था जब पेड़ एक बार सूख जाए उसमें जितना भी खाद पानी डालो वो ठीक नहीं हो सकता।
6: आप ही ने तो कहा था कि एक बार घड़ा खराब हो जाए तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता।
3: अगर एक बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो चाहकर भी हम दोबारा उसे ठीक नहीं कर सकते। अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें।
7: 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने से स्तनपान। 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170181701। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक नई सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। तो आइए उन्हें याद करके आज हम ये शपथ लें कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे। अपने देश के लिए अपनी ये अहम जिम्मेदारी हम जरूर निभाएंगे। जय हिंद।
1: कैसे?
2: कर्तव्य।
1: अरे, सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हो भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
3: समझ गए सर।
1: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: धर्मशाला के निवासी भाइयों और बहनों, नगर निगम चुनाव का समय आ गया है। याद रखिए, हमारा शहर खुद ब खुद विकसित नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी दूरदृष्टि जो धर्मशाला को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।
4: जी बिल्कुल, एक गलत चुनाव हमारे शहर को पीछे धकेल सकता है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने, नगर निगम में केवल एक ईमानदार और कर्मठ प्रतिनिधि को ही चुने।
5: आपका एक वोट धर्मशाला का सुनहरा भविष्य है।
6: जागो नागरिक, सोचो समझो और सही प्रतिनिधि चुनो।
7: काकू, दुनिया में एक ऐसी चीज का नाम बता जिससे तेरी बीवी का कभी दिल नहीं भरता।
8: एक नहीं, ऐसी दो चीजें हैं, एक कपड़े और दूसरे गोलगप्पे। कितने ही खिला लो और कितने ही दिला लो, कभी जी नहीं भरेगा।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल लगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं। टेनिस, जिम्नास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ?
2: मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं।
1: मैं नल्ले में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ।
3: बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर।
4: अरे ये पेड़ तो सूख गया, चलो इसमें पानी डालते हैं।
5: अब पानी डाल के क्या फायदा?
4: अरे पानी डालेंगे तभी तो फूल खिलेंगे।
5: अरे पापा, आप ही ने तो बताया था जब पेड़ एक बार सूख जाए उसमें जितना भी खाद पानी डालो वो ठीक नहीं हो सकता।
6: आप ही ने तो कहा था कि एक बार घड़ा खराब हो जाए तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता।
3: अगर एक बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो चाहकर भी हम दोबारा उसे ठीक नहीं कर सकते। अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें।
7: 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने से स्तनपान। 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक नई सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। तो आइए उन्हें याद करके आज हम ये शपथ लें कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे। अपने देश के लिए अपनी ये अहम जिम्मेदारी हम जरूर निभाएंगे। जय हिंद।
1: कैसे
2: कर्तव्य?
1: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हो भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
3: समझ गए सर।
1: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: धर्मशाला के निवासी भाइयों और बहनों, नगर निगम चुनाव का समय आ गया है। याद रखिए, हमारा शहर खुद ब खुद विकसित नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी दूरदृष्टि जो धर्मशाला को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।
4: जी बिल्कुल, एक गलत चुनाव हमारे शहर को पीछे धकेल सकता है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने, नगर निगम में केवल एक ईमानदार और कर्मठ प्रतिनिधि को ही चुने।
5: आपका एक वोट धर्मशाला का सुनहरा भविष्य है।
6: जागो नागरिक, सोचो समझो और सही प्रतिनिधि चुने।
7: काकू, दुनिया में एक ऐसी चीज का नाम बता जिससे तेरी बीवी का कभी दिल नहीं भरता।
8: एक नहीं, ऐसी दो चीजें हैं, एक कपड़े और दूसरे गोलगप्पे। कितने ही खिला लो और कितने ही दिला लो, कभी जी नहीं भरेगा।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर वीडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और आऊँ सचिन कपूर तू होगी तुंदा स्वागत करनो, हार्दिक अभिनंदन करनो। कैसे तो है सब, उम्मीद करनो तो सब घरे भुणे अपने अपने घरे के न सो खुश भुणे, तंदुरुस्त भुणे हिन और राजी बाजी भुणे हिन। ता स्वागत है सभी सुनने वाले रहे, सभी श्रोतागण रहे, तो सब श्रोता इस कार्यक्रम मंच के आसो कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत जी हुण देते हैं हुणी सकते हैं। और बिल्कुल आजकल प्रचार प्रसार रह गया सो जोर मुल्क लोग रहा धोनी पार्टी है, इवन कि आज़ाद जो प्रत्याशी खड़ रहे हैं तीन भी काफ़ी ज़्यादा जोर किया सो लोग रहा है ना, जगह जगह इंटरव्यूज़ बच्चों करते हैं तैयार है, जगह जगह किया सो गलबात तैयारी बच्चों करते हैं, घर घर के ना सो गच्छू करते हैं और बिल्कुल ज़ोरों शोरों हो किया सो काम चल रहा है इस बारी। काम चलना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट भी है, जो कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सब होना भी इम्पोर्टेंट है सो तो। लेकिन यह बार बार वल्लू कर दिन कि तुम दाक वोट के असो भी बहुत कीमती है सो पहली गल तो वोट पाना के असो जरूर गन और जो तुम्हारा पसंदीदा कैंडिडेट आ जो तुसू लगता कि मिलन अनुसार आ जो तुसू लगता कि सुख दुख रहा तुम्हारा साथ है जो तुसू लगता कि तुसू होगी पहले भी तिया ही कड़ा थो ना केवल सिर्फ वोट मंगने ताई कि सुखने करता हा तो जरूर तो सब श्रोता है गल रह गया सो ध्यान जरूर रखा है ना। तो FM बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप गए ना सो चल रही इस वक्त। तो श्रोताओं सभी पहले तो धर्मशाला रा मौसम जानी लेंदन कि क्या बोलता धर्मशाला रा मौसम इस वक्त। वैसे वाती जो बरखा बचो रहे हैं ना भाई साहब सो तो मतलब कुछ अलग ही लेवल पर गया सो बरखा बचो रहे हा और जिस प्रकार हो गया सो बिजली गड़के के लग रही थी है तो सो बिज भी गरखा न गरखा जरूर लोड़े भोए बोने है ना। तो अलग ही लेवल रह गया सो बरखा बचो रहे रहते इवन क्या हूँ दसना चाहता कि जो इनके किसान भाई ने सो इस समय काफ़ी ज़्यादा दुखी बुने हैं पर हर मतलब पूरे ना बुना है क्योंकि करखा कणक बड़ी करी क्या ना सो बिल्कुल गाई गुई करी अंदर न भूबा अंदर पाई लीरा लेकिन करखा क्या ना सो बिल्कुल अली तैयार न और बढ़ने लायक इन था हर पहलू रहा तो ही किस्सा हूँ हमेशा बोलो हमेशा बुंदे इन है ना। तइए जी इस समय धर्मशाला रहा मौसम किया सो 17 डिग्री सेल्सियस रे आस पास आ सो तो हाँ जी बिल्कुल ठेरे आस पास किया सोहा। और आगाज़ कार्यक्रम रहा ज़रूर भूना हाँ नमी की गल भी कर लेंदे नमी की ऐसो 64% रहे आस पास आशो तो इस समय धर्मशाला मंच तो आगाज़ ज़रूर करना जी तो सब श्रोता के ना सो ज़रूर असू अगे जुड़ सकते हैं कॉल कर सकते हैं 708-8-8-709 पर नंबर अक मौके फिर आऊँ शेयर करनो आ 708-8-8-709 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और कॉल करी अपना पसंदीदा गीत अपने क्षेत्र की जानकारी सो लगता कि ये जानकारी कि सो क्षेत्र में साझा करने लायक है दसने लायक है तो ज़रूर तो है कर सकते हैं इन श्रोताओं। तैयार चल दें थोड़ा करी और हगूँ और कार्यक्रम मंच आगाज कर दिन इस प्यारे दे गीत सोगे तंदे सभी रे रेडियो सेट मा एह बन रहे ना हिंदी अपनी गप्पा ले करी बहुत सारी गलन बहुत सारी बातें जो तुसु होगी करनी इन छोता हूँ और बिल्कुल करनी ही हुन ते ने प्यारे दे गीत तंदे सभी रे रेडियो सेट मा

शोध एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला। तो ट्यून कर रहा और हम सचिन कपूर इस समय कार्यक्रम जो किया सो होस्ट करू कर रहा था। बहुत बहुत स्वागत है मौके फिर ये सब भी होने वाले रहा था। सब श्रोता की जरूर जुड़ी सकते हैं 7081889 पर। तो चलिए भाई साहब, सोना बहुत ज़्यादा महंगा है, चांदी बहुत ज़्यादा महंगी है, लेकिन फिर भी है मानो जाए कर्जा करे करे जाए लोन करे करे जाए अपना घर गिरवी रखे करे किया सो दिच्छू ही कर दे हिन। लेकिन इन द जो प्राइम मिनिस्टर हिन तीन अपील करे हाथ जोड़ी करे अपील करे हा जी बिल्कुल मोदी ये किए श्रोताओं सो हाथ जोड़ी करे अपील करे आगे 1 साल तक किया

0: काम करना पश्चिम एशिया माँ की आसो संकट रे असर रहा असर किया सो दुनिया भर माँ पेट्रोल डीजल रे दाम किया सो कई गुणा के ना सो बढ़ गया है कजो की लड़ाई चल रही है ऐसा भी सर गलत हो वाकिफ हैं पश्चिम एशिया माँ है ना। और पेट्रोल और डीजल रे दाम के ना सो करखा करखा किया सो दुई गुना के ना सोतों दसना चाहता सो ज़्यादा बढ़ गया है तैगर खन का वैश्विक संकट का असर किया सो हा। और बल्लूगढ़ नरेंद्र मोदी की असूले के ना सो तेल रहे बड़े कुएं नीन और तिन्या भी बल्लू की जिन्या शहर में मेट्रो व मतलब मेट्रो रहा इस्तेमाल किया सो ज़्यादा करना जी बिल्कुल। और और ये ना क्या ये पूरी रिपोर्ट है ये पूरी रिपोर्ट तो सो दसना चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल और गैस रह गया सो उपयोग घट करना बल्लू करते हैं कि अक साल तक बे अंदर मतलब सोना ना खरीद क्योंकि तिन्या बल्लू शो तो कि जहने युद्ध बुंदा थो तब मनु की सो सोना दान में दिंदे थी आज दान री जरूरत नहीं है लेकिन आज यह संकल्प असू संकल्प लेना पैना कि अगले 8 साल तक किया सो शादी ब्याह में अगर बहुत जरूरत ना हुआ तो सोना किया सो ना खरीदने इतों विदेशी मुद्रा किया सो बच बैने है ना ता बलू करते हैं कि सोना ना खरीद विदेशी मुद्रा किया सो बच बैने आशो तो कार्यक्रम यही चलते रहना तू सब भी सोगे और बिल्कुल सब प्रत्याशी क्या ना कैंडिडेट क्या ना सो अपने अपने स्तर पर क्या ना सो जरूर जरूर और जरूर क्या ना सो लाव कर दे पुणे हिन जरूर और जरूर क्या ना सो जोर लाव कर दे ना शो तो और लाना भी है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है शो तो जाए सो भाजपा ही ने जाए सो कांग्रेस ही ने अपने अपने स्तर पर किया सो जरूर जोर लाव कर देन और लाना भी हा बहरहाल जनता जनार्दन हा। और यहाँ सभी प्रत्याशी रे इंटरव्यू के सो असु तो तथो चालू कर देने हिन सो तो फिर हर दिन कौन देने प्रत्याशी रे क्या क्या विजन किया सो अपनी पंचायत जो लेकर रहा सो अपने वार्ड जो लेकर किया सो रहा हा। चलिए कार्यक्रम जो आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम मन सब है तो सब श्रोता जुड़ सकते हैं जी क्या है दसो 708-8-8-709 पर कॉल करी करे नंबर अक मुख्य है गोए गोए दसीन दिन श्रोताओं 708-8-8-709 पर तो है कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत के शो तो सो हो नहीं सकते हैं तो चलिए चलते हैं और कार्यक्रम जो थोड़ा करे और आगे बढ़ेंदे और इस गीता होगी तो सब भी श्रोता जो किया सो रूबरू भी करवंदे हैं।
1: इनोवेट

श्रोताओं कार्यक्रम इन दी अपनी गप्पा के सो तो सब हूँ कर दिन और बहुत ही प्यारी दी आवाज़ तो सब भी होनी वेड़ी गुंजन माँ सुजाता भारद्वाजरी आवाज़ मकिया श्रोतों एक गीत तो सब भी है हूँ एफ एम बैंड 91.2 मेगा हर्ट्स पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो सब भी ट्यून कर रहा श्रोतों और बिल्कुल कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के सो चल रही। चलिए जो तो बोलते जिंदगी में किन सो बड़े उतार चढ़ाव के ने सो इंदे हिन लेकिन असली स्थिरता तदी अंदर है कि इंसान की असो अपने नेचर सो की जुड़े रहा इंसान की असो डाउन टू अर्थ की असो बोआश हो तो है ना डाउन टू अर्थ इंसान ही की असो मुझे ये लगता कि हर सिचुएशन में कि असो संभाली लेंदा चीज़ा जो बैलेंस की असो कर लेंदा हा और जिंदगी में असो तो बैलेंस भूना और फैमिली में या फिर कर खजड़ी तो एक काम कर दें या रिश्तेदारी में बैलेंस करी करी चलना कि असो बहुत इंपॉर्टेंट भुंदा हा है ना। अगर तो है बैलेंस ना कर दें नौरा की साइड की असो बुझगन दें तो फिर ही सो रिश्ते के न सो ज़्यादा टाइम ना टिक दें हिन श्रोतों ये गल बिल्कुल सच्ची गल और असली गल ये सब तो सब श्रोता बखूबी आई थिंक जान दें। तो चलिए कार्यक्रम मन श्रोतों ये चलते रहना हवे इतों बाद असू तुसू होना नहीं प्यारी दी स्टोरी जा स्टोरी दे इंतजार तू वो हमेशा गया सो बुंदा हर रोज़ बुंदा ताहे कोशिश कर दिन कि हर रोज़ किया सो जरूर प्यारी दी स्टोरी है तुसू तक जरूर पहुँचान ताकि इंदे श्रोता के न सो बिल्कुल कुछ ना कुछ किया सो असुओ भी ततिमन सीखने जो किया सो मिलेगा अच्छा और इंदे जो श्रोता गण ने तीनों भी कुछ ना कुछ किया श्रोता तीम जरूर मुड़ेगा अच्छा श्रोता है ना मतलब कुछ ना कुछ सीखने जो तो बहरहाल है चल दिन और हूँ दिन तू सब भी हो प्यार दी स्टोरी इस गीता तो बात

शत एफ एम बैंड इक्यानवे दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर रेडियो उंचन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रोर आऊँ सचिन कपूर हाजिर भुआ हा तुंदा अपना कार्यक्रम लेकर इन दी अपनी गप्पा तो चलिए जी बड़ा बड़ा स्वागत है बुझे को मोटा मोटा स्वागत भी बुझे को है बारी हा शोतों प्यारी दे स्टोरी जी

शतोकस किए बड़े ही प्यारे और खूब गल बल रो है कि तुंदा कद जाए कितना भी ऊंचा कोना बोआ कि तुंदा कद किया सो चाहे कितना भी ऊंचा कोना बोआ लेकिन तो है ईणे वाला भविष्य किया सोना ही रह सकता है, ईणे वाला समय किया सोना ही रह सकता है, फ्यूचर किया सोना ही रह सकता है कि फ्यूचर में किया सो क्या बुच्चू करता है और क्या ना बुच्चू करता है, फ्यूचर थोड़ा ना ही रह सकता ना है, कद जाए जितना भी बड़ा कोना बच्चा। तशो तो आत्मो के क्या हुआ कि कैलाश पर्वत में भगवान विष्णु जी की अपनी सवारी गरुड़ पर सवार बुझी कर किया सो शिवजी भगवान जी लगिया सो मिलना पूछ गया शो तो भगवान शिव जी लगिया सो तिया मिलना तो और गरुड़ जी की सो तुसु पता कि इतनी तेज उड़ दिन कि त्यारे त्यारे कोई मुकाबला नहीं है, हजारों किलोमीटर सो ये तय किया सो करी दिन देती है, त्यारे कोई मुकाबला नहीं, त्यारे रफ्तार किया सो बहुत तेज थी शो तो कैलाश पर्वत पर सो पूज गया थी है और भगवान विष्णु जी किया सो भगवान शंकर जी होगी मिलना किया सो अंदर चले गए, शिव जी थो मिलने वास्ते जी अंदर गए ते गरुड़ जी किया सो बाहर बिखरे थी है शो तो और कैलाश पर्वत री खूबसूरती जो किया सो निहारू करते थी है और तो खूबसूरती इतनी वाकई में खूबसूरत थी कैलाश पर्वत रे कि गरुड़ जी तस यू बार बार किया तस दृश्य जो तस प्राकृतिक दृश्य जो किया सो बार बार निहारू कर देती है कि कितना सुंदर है और कितनी सुंदर जगह पर किया सो भगवान शंकर जी के न सो रंदेन ये नज़र घुमाऊ कर देती है और त्यारी नज़र किया सो अक छोटी थी चिड़िया पर किया सो पैगे शो तो रंग बिरंगी बड़ी प्यारी थी ये चिड़िया थी, बहुत ही खूबसूरत चिड़िया, बहुत ही प्यारी, मतलब कसी रे भी मन मोह लिया ऐसी चिड़िया शो तो मतलब बहुत ही तह चिड़िया रही जितनी तारीफ करी जाए तह सारी खूबसूरती रही उतने किया सो घाटा, इतनी खूबसूरत सो चिड़िया थे शो तो और इतनी देर में किया शो तो हले गरुड़ जी निहारू कर देती है तह चिड़िया जो था इतनी देर में किया सो यमदेव कैलाश पर्वत किया सो चले आए, यमराज किया सो चले आए और यमराज जी जी आए तिया तह प्यारी चिड़िया री किनारी किया शो तो सो हेरना लगे, बस सो हेरदे चले गए और सिद्धांतरों के ऐसो चले गए। अवेड़ी जो गरुड़ जी थी है तीनों टेंशन बुझ गई कि यार ये तो हेरु गुच्छु मतलब यमराज जी के हो जस जस तरीके होगी हेरु हा जस नजर होगी हेरु हा इतने आश्चर्य होगी कि ऐसो हेरु हा तो मतलब कि कुछ खतरा हा, तो गरुड़ जी है अपना दिमाग लगाओ और तेने सोचो कि भाई गंद कहते हैं भाई यमराजा की सो प्यारी दे चिड़िया ले गाने कजो कि आश्चर्य होगी रुक कर दे दी है तो पक्का ले गाने और तीन क्या करो कि जी ले गए और ठीक है। मैं पहले स्टार्टिंग में दसूँ कि गरुड़ जी भी जो रफ्तार थे सो बहुत तेज थे, बहुत ही अत्यधिक किया सो तेज थे, तीनिया सो अपने पंजे में फंसाए और हजारों किलोमीटर दूर एक बड़ी चट्टान में किया सो छड़ी करे गरुड़ जी किया सो वापस विष्णु जी जो लेना पर्वत कैलाश पर्वत में किया सो पूजे गए जी कि मैं दसूँ कि त्या रफ्तार किए सो काफ़ी ज़्यादा तेज थे है ना, तो काफ़ी की काफ़ी ज़्यादा किया सो तेज़ थे, तो फिर क्या हुआ कि सो वापस आए और जी यमराज जी बाहर निकलते शिव जी भगवान थो मुलाकात करने थो बाद भगवान जी थो मुलाकात करने थो बाद जी बाहर इंदे देती हैं गरुड़ जी की सो यमराज जी थो सवाल की सो करी लेंदे कि यमराज जी तो है इतनी प्यारी दे चिड़िया थी ता हो ये करे को मतलब आश्चर्य होगी कोई रुक देती है
बलवाओं आश्चर्य सो कि तेरू कर दे तो कि मुझे सारी मौत किया सो नजर इच्छू कर दी थी सारी मौत कर खा कि कजो कि यमराज जी तो पता है सू कें सब भी वह पता कि कें के मरना सू कड़ी मरना कुन बार कुन तारीख कुन लम्हा भूना कहना इन दी कें करे कि सो डेथ बोने ये सब पता यमराज जी है भगवान जी है ना तो भगवान जी है भी मतलब यमराज जी यही कर के सो आंसर करो क्वेश्चन रहा और जी आंसर करो तो यहाँ गरुड़ जी को बड़ा महसूस हुआ कि यार ये आऊँ क्या करिया आऊँ तो ताहो मतलब इतनी दूर छड़ी करिया हजारों किलोमीटर दूर अकी चट्टाना में यमराज जी है बोलू हाँ अकी चट्टाना में सारे दत्त होने गरुड़ जी पूछो कि तड़ी इतनी ऊँची चट्टाना में कि होने तो तीन ये दसो कि मतलब किसकी कीड़ा की है सो खाए लैनी है और तो पता भी ना चलना मतलब कि क्या कर क्या हुआ तो कहानी शुरू तो वो क्या सीख देंदे हा एट लास्ट मतलब हजारों को सो दूर चिड़िया छड़े आए गरुड़ जी अपने मतलब ये सोच करे कि यमराज जी यो ले गाने इड़ियों तो सारी मृत्यु तो यो कर का सेफ जगह गया सो छड़ी इंदा तो ये स्टोरी शो तो असू ये शिक्षा देंदे हाँ कि इन आला समय की असु कसी ना पता कि कदे आ क्या भूने आला या क्या बुची सकता हा कल रहना काल हा काल तो ओ काल ही रहना हा शो तो अज मैं जीना किया सो शुरू करा अज मैं जीना शुरू करा इस लम्हे जो जिया जिंदगी हबजुत हों बलू जीना शुरू करा कजू की जिंदगी री शुरुआत की सो तो एक कहने भी कर सकते हैं इन्हें बोले सकते कि यार आऊँ पचास साल रहता है तो मेरी जिंदगी खत्म आऊँ सट्ठा रहता है अभी तो मेरी इच्छा है खत्म ना कोई इच्छा नहीं जहने तुसू लगता हा शो तो तहने किया

सो ज़रूर जीना तो है शुरू करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ जिंदा। और कई मौके बंदा कि अपनी ज़िंदगी जो बहुत सारे इंसान के अंदर बड़ी लास्ट मांग गया सो जीना शुरू कर दें, कहो कि सब कुछ करी बैठने सभी वास्ते है, फिर एट लास्ट इन लगता कि ना यार अब सब कुछ तो करी था सभी वास्ते है। सो शो तो अपनी ज़िंदगी जो कि सो बेहतरीन तरीके होगी जिया, कल री फिक्र मत करा। और ये स्टोरी असु यही सिखन दिया, द मॉरल ऑफ द दिस स्टोरी इज़ कि कद जाए कितना भी बड़ा कौन है बुआ, कितना भी ऊंचा कौन है बुआ, लेकिन तो है कि असो फ्यूचर ना हेरी सकते हैं। सो आजमा जिया शो तो आजमा किया सो जीना सीखा, और अपने आप जो खुश रखना और खुश रहना किया सो सीखा, हमेशा बोलो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ खुश रहना और खुश बोना। तो दोस्तों साहब हूँ कर देने इस समय FM बैंड 91.2 MHz पर वीडी गुंजन धर्मशाला आर जे सचिन कपूर सोगी कार्यक्रम बिल्कुल लाइव चल रहा है शो तो। और तो सब इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं जनाब 7018887091 पर नंबर एक मौके फिर हूँ शेयर करनो हाँ 7018887091 पर तो कॉल कर सकते हैं। बहरहाल आइया चल दिन और

श्रोत एफएम ब्यान्ड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुन्जन तो है ट्यून कर रहा और आऊँ सचिन कपूर हाँ श्रोत बोलते ना हर दिन किया स्वागत दिन आना बुंदा हर पल किया स्वागत दिन आना बुंदा हा हर समय किया स्वागत दिन आना रहंदा इंसान किया सो अपने अंदर बदलाव लेंदा गंदा इवन की प्रकृति भी किया सो अपने अंदर बदलाव लेंदे गंदे हा श्रोत है ना बदलाव किया सो बुंदा रहंदा हा तो अपने आप जो समय सोगे ढालना और समय सोगे अपने आप जो अपग्रेड करना के है श्रोतों सो मोस्ट इम्पोर्टेंट किया सोबुचे गंदा श्रोतों जी बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट किया सोबुचे गंदा हा समय सोगे अपने आप जो भी तस समय रे अनुसार ढालना है ना अब यह है 2026 में किया सो जीव कर देन 2023 रे बच्चे 2020 रे बच्चे आई थिंक 2019 रे बच्चे 17-18 रे बच्चे है ना सो इन दी मतलब उत्थों बहुत आगू बुने इन दी सोच और तैयारी सोच में बहुत डिफरेंस भूना है आखिर नहीं सोचना किया सो लेकर ही जी सकते इवन कि अपने फैमिली अंदर भी है आके नहीं सोच लेकर किया सो ना जी सकते शो तो अगर यह असू वास्ते 50 रुपये आज भी असू बड़ा लगता तो सो आई थिंक आज कने जो जो 2024-25 में बच्चे बुच्चू करते या 20 में बुच्छू रहे 18-19 में बुच्छू रहे ना तिया वास्ते 50 रुपये इज़ नथिंग कुछ भी नहीं है मतलब मुझे तो लगता तिया इन्हें वाले टाइम में असू 50,000 बड़ा भी लगता तिया तो मुझे ना लगता 50,000 कुछ बड़ा लगा मतलब है ना जो 22-23 रे बच्चे बुने तो ये डिफरेंस आ सोच में डिफरेंस आ श्रोता और तो इधर बुना घर मंज भी बहुत सारी इतियो लेकर किया सो चर्चाएँ बुंदी कड़ा क्लेश भी बुंदी क्योंकि जो बुजुर्ग बुंदे तिया सो फेस करूरा बुंदा सो चीज़ा तिया फेस कर रही बुंदी और जो यंग जनरेशन आ तिया सो टक टक लगते हैं तो एक कम्युनिकेशन गैप की सो जरूर रहा परिवार अंदर भी शो तो लेकिन यह कि बैलेंस करी करी चलना पैंता कि थोड़ी तैयारी भी होना पैंती और थोड़ी अपनी आदत भी क्या सो मतलब जो आज कने बच्चे तिया तैयारी सोगी सोगी के सो डालना पैंती हैं तो बहरहाल कुछ खास खबर तो सो गया है गंदे गंदे जरूर साझा करते हैं आज धर्मशाला वास्ते बड़ा खास दिन है श्रोताओं और कजो कि आज धर्मशाला में HPA स्टेडियम में यानी कि इनका जो स्टेडियम है HPCA आज जी पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स रे बीच मुकाबला होना है श्रोताओं हालांकि बरखा भेगा बड़े ज़्यादा बच हो रहे हैं ये बात तो काफ़ी मतलब आज कने होती है 12 बजे बाद ही कि सो सब भी मनु पता लग रहा कि बरखा बच हो रहे था सो आज ही काउंट बच्चू कर दिया है ना और उम्मीद है सभी हो कि मैच की सो बच अच्छा हालांकि मौसम की सो काफ़ी ज़्यादा ख़राब बिच अंदर रेव भी है आज हल्की बरखा करखा बोई भी है श्रोतों करखा बोए करखा ना बोया तो उम्मीद है कि बरखा ना बोआ खजो कि कसकी 50 जा रहे रे टिकट भी ले रहे बुने तो कसकी 25 जा रहा रे टिकट किया सो भी ले रहे बुने तो उम्मीद है कि खेल के सो बरकरार रहे आज इंदे धर्मशाला मंच बहुत सारा रोज़गार बुना सो रोज़गार ना मरा इस सो के श्रोताओं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड है जठेरा मुख्य मुख्यालय किया सो धर्मशाला या ना है ना कक्षा 10वीं री परिणाम किया सो घोषित भुजूरा और कांगड़ा जिला भी अनमोल्य किया सो 700 में से 699% किया सो ल्यूरेन हवे बल्ला कुड़ी बचून के दब्बू बचून अक्की कुड़ी है मतलब 700 में से 699% की आसो प्राप्त करे और पूरे प्रदेश में की आसो पहला स्थान हासिल करो सभी मोटा श्रेय गंदा माता पिता जो जी बिल्कुल घर रहे इन्वायरमेंट में सभी ज़्यादा श्रेय ततियो गंदा मोस्ट इम्पोर्टेंट बंदा घर रहा इन्वायरमेंट का हिसाब रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि कतूने घंटे की आसो बच्चा पढ़ाई करो करता और अनमोल्य गया ताहे अपू ये गल बल्ले हाशोतों कि मैं मोबाइल दूरा दूरा तक किया सो मैं भी नजरा मंच भी ना थो और आऊँ रोजाना किया सो 5 घंटे थो अधिक समय किया सो पढ़ाई कर दी थी ता आज सफलता किया सो मेरे ना लगे ता आज सारा ना किए सो रेडी गुंजन में भी गूंजू करता ता आज सारा ना किया सो बहुत सारे सोशल मीडिया में भी गूंजू करता और अखबार अंदर भी किया सो इच्छू करता हा शो तो जो कि 10वीं कक्षा भी परीक्षा परिणाम किया सो बुच्छूरा और बिल्कुल हिंदी सीनियर सेकेंडरी स्कूल री छात्रा अनमोल्य किया 700 में से 699 अंक यानी कि सारी जो
परसेंटेज हुई 99.86% के श्रोता है हासिल करे और पहला स्थान पूरे हिमाचल प्रदेश में गया सो प्राप्त करो। अनमोल पुत्री रोहित कुमार रे एकोले हा श्रोतों जो है ए दसो की परीक्षा री तैयारी रे दौरान मोबाइल तो पूरी तरह तो किया सो मैं दौरे बना रहे थे और रोजाना 5 घंटे तो अधिक किया उस समय पढ़ाई जो दिन दे थे जो कि सारी सफलता रा मुख्य कारण किया सुमन देहा। और अनमोल है जाहिर दे गला कि अन्य जो थे सारे टीचर ने तीनों भी किया बल्लों की सो भी अच्छी गाइडलाइन दिन देती है माता पिता अच्छा इन्वायरमेंट किए सो घर क्रिएट करके रख रो थो है ना और पढ़ाई वाला इन्वायरमेंट किए सो क्रिएट करके रख रो थो कस की घर बंदा ने कि बाब शराब भी बहुत आना माहौल ठीक बंदा या भाई खरा ना बहुत आना बंदा या मतलब कुछ घर है इन्वायरमेंट ही ठीक ना बोआ कड़ा कलेश बोआ 24 घंटे ठंड कड़ा बोआ तो 10 बच्चे का दिमाग करेगा ना तस ये 24 घंटे 10 बच्चे 24 घंटे माँ ही बल दे रहे कि तो पढ़ना कि मुँह थप्पड़ मारना तो पढ़ना कि मुँह करना या फिर तू दिए करना मतलब कुछ भी है आगे इन्वायरमेंट क्रिएट करना पैंता है शो तो तस हिसाब ना मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदा। चलिए चलते हैं तो सब हूँ कर दिन सचिन कपूर सो के कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा और अब सचिन कपूर तो सुतो ले लेंदा इजाजत गंदे गंदे तो सब ये प्यारे दे गीत किया सो जरूर सुनंदा नमस्ते धर्मशाला।

नमस्कार, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। कांगड़ा के अनमोल 700 में से 699 अंकों के साथ प्रदेश में प्रथम। धर्मशाला में आज से शुरू होने जा रहा है आईपीएल का रोमांच। ई गवर्नेंस में हिमाचल को नेशनल अवार्ड। आईआईटी लैब से बदल रहा भारत। खेतों में रोबोट, अस्पतालों में एआई और ग्रीन एनर्जी के नए मॉडल। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के लिए जून में लिए जाएंगे आवेदन। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा की टॉप 10 मेरिट सूची में 107 विद्यार्थियों ने जगह बनाई है, जिनमें 24 छात्र हैं तो 83 छात्राएं। रविवार को घोषित नतीजे के अनुसार कांगड़ा जिले की अनमोल ने 700 में से 699 यानी 99.86% अंक लेकर प्रदेश भर में नया कीर्तिमान स्थापित कर प्रथम स्थान पाया है। वे एवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहरा की छात्रा है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के धर्मशाला स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मुकाबलों को लेकर कांगड़ा पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है। पुलिस अधीक्षक कांगड़ा अशोक रतन ने बताया कि 11, 14, 17 और 26 मई को मैचों के दौरान शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। पुलिस प्रशासन के अनुसार मैच शुरू होने से 6 घंटे पहले धर्मशाला और मैक्लोडगंज में भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। हालांकि रूट बसों पर आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनका कहना है, सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की। इसके विपरीत केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए निरंतर दबाव डाला जा रहा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में ओपीएस को बहाल रखेगी। डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस विभाग को ई गवर्नेंस की दिशा में किए गए नवाचारों और नागरिक केंद्र डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार सचिव डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस आशीष सिंहमार तथा निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल द्वारा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेंट किए गए। विभाग के अभिनव पहल हिम परिवार को द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा वेस्ट स्टेट लेवल ई गवर्नेंस इनिशिएटिव श्रेणी में प्रतिष्ठित ईटी गोवटेक 2026 से सम्मानित किया गया है। आईआईटी खड़गपुर ने अपने कैंपस में टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब बनाया है। इसका लक्ष्य है एआई को सीधे रोजाना की समस्याओं से जोड़ना। विभिन्न आईआईटीज के कैंपस में ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है जिनका सीधा असर खेती, हेल्थ केयर, डिफेंस, एनर्जी, स्टार्टअप्स व अर्बनाइजेशंस जैसे क्षेत्रों में दिख रहा है। आर्मी मेडिकल कोर से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूर्व सैनिक का दर्जा मिल गया है। अभी तक पूर्व सैनिक का दर्जा मुख्य रूप से थल सेना, नौसेना और वायुसेना से सेवानिवृत्त अधिकारियों व जवानों तक सीमित था, लेकिन अब मिलिट्री नर्सिंग सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारी भी इस श्रेणी में शामिल कर दिए गए। इन नए आदेशों के बाद अब हिमाचल में भी आर्मी मेडिकल कोर से सेवानिवृत्त इसके दायरे में होंगे और वे राज्य के हर जिला में स्थित पूर्व सैनिक कल्याण विभाग में अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के लिए जून महीने में आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य के जनजातीय जिले व दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर शेष क्षेत्रों की पात्र महिलाओं से ये आवेदन लिए जाएंगे। हालांकि इस दौरान योजना के नियमों में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। ऐसे में जिन महिलाओं ने पहले इस योजना के लिए आवेदन किया था, उन्हें भी नए नियमों के अनुसार दोबारा से आवेदन करना होगा। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं को अब और भी पारदर्शी बनाएगा। इसके लिए परीक्षा हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरों में वीडियो के साथ साथ अब आवाज को भी रिकॉर्ड करने की व्यवस्था शुरू की जाएगी, जिससे नकल के मामलों को रोका जा सके। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अब बोर्ड परीक्षाओं को और अधिक पारदर्शी और नकल मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के बीच जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक में फैसला लिया गया है कि जनगणना 2027 से जुड़े मास्टर ट्रेनर और फील्ड ट्रेनरों को पंचायत चुनाव ड्यूटी या अन्य किसी अतिरिक्त कार्य में तैनात नहीं किया जाएगा। मकसद जनगणना का कार्य बिना किसी बाधा के पूरा हो सके। भारत के चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू शिमला दौरे पर हैं। रविवार को संधू ने नारकंडा पोलिंग स्टेशन में जनगणना तैयारियों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान वीएलओ और सुपरवाइजर वीएलओ उनके साथ थे। ठियोग विधानसभा क्षेत्र के नारकंडा पोलिंग स्टेशन 61 पहुंचकर उन्होंने केंद्र पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं, रिकॉर्ड प्रबंधन और आगामी कार्य योजना की समीक्षा की। हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे नगर निगम चुनावों को प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंगलवार से चुनाव प्रचार में सक्रिय रूप से उतरेंगे और पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं व रोड शो करेंगे। कांग्रेस संगठन ने चारों नगर निगमों में चुनाव प्रचार के लिए विशेष रणनीति तैयार की है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल भी 12 मई को हिमाचल दौरे पर आएंगी। वह धर्मशाला, सोलन, मंडी और पालमपुर नगर निगम क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगी। खेलने कूदने और पढ़ने की उम्र में बच्चों में तनाव के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब स्कूल उन्हें पढ़ाने के साथ तनाव मुक्त रहने की भी सीख देंगे। शिक्षा मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विशेषज्ञों की मदद से बच्चों को तनाव से बचाने के लिए एक विस्तृत गाइडलाइन पर काम शुरू किया है। इसमें स्कूलों में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे पर न सिर्फ नजर रखी जाएगी बल्कि स्कूलों में पढ़ाने वाले प्रत्येक शिक्षक को भी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण की मदद से शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय ऐसे बच्चों को पहचान सकेंगे जिन्हें तनाव हो रहा है। इसके साथ ही काउंसलिंग और मेडिटेशन के जरिए उनके तनाव को भगाने में मदद करेंगे। प्रदेश ने पक्षी संरक्षण और नागरिक विज्ञान के क्षेत्र में नया इतिहास रचते हुए हिमालयन वर्ल्ड काउंट एवं ग्लोबल विग डे 2026 में रिकॉर्ड भागीदारी दर्ज की है। 9 मई को आयोजित इस वैश्विक अभियान में पहली बार प्रदेश के सभी 12 जिलों में पक्षी गणना और पक्षी प्रलेखन गतिविधियां आयोजित की गई। इस वर्ष हिमाचल में एक दिन में 208 पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई जबकि 146 ई वर्ल्ड चेकलिस्ट जमा हुई। शांत और सुरक्षित माने जाने वाले हिमाचल की छवि पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इस रिपोर्ट में सामने आया है कि नाबालिग लड़कियों के अपहरण और जबरन विवाह से जुड़े मामलों में हिमाचल का अपराध अनुपात महाराष्ट्र और गुजरात जैसे बड़े राज्यों से भी कहीं ज्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली से शिमला के लिए शुरू होने वाली फ्लाइट रविवार को भी शुरू नहीं हो पाई। मौसम ठीक न होने के कारण और धुंध ज्यादा होने से उड़ान संभव नहीं हो पाई। अब सोमवार को भी अगर मौसम साफ रहा तो ही उड़ान का संचालन हो पाएगा। तेलंगाना में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल की कम से कम इस्तेमाल करने की अपील की। साथ ही वर्क फ्रॉम होम, कारपूल, मेट्रो का इस्तेमाल और ऑनलाइन मीटिंग्स को प्राथमिकता देने की भी बात कही। उनका कहना है कि इस समय भारत कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। भारत पर गंभीर असर हुआ है। भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस दुनिया के दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। पीएम मोदी का कहना है कि युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं। सरकार 2 महीने से संकट से बचाने के लिए प्रयास कर रही है। अब नजर डालते हैं मौसम पे। हिमाचल प्रदेश में मई महीने में मौसम खूब अटखेलियां खेल रहा है। राज्य में कभी बर्फबारी, कभी ओलावृष्टि तो कभी तेज बारिश गर्मी के इस मौसम को ठंड का भी एहसास दिला रही है। मई मास को भारतीय ऋतुओं के हिसाब से भीषण गर्मी का मौसम कहा जाता था, वहीं अब जलवायु परिवर्तन के कारण अब सभी ऋतुएं अपना समय बदल रही हैं। राज्य में आने वाले समय में मौसम की बात की जाए तो मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। 12 और 13 मई को मौसम सबसे ज्यादा खराब रहने की संभावना जताई गई है। आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।
91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने, नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना वीडियो गुंजन धर्मशाला।

नमस्कार श्रोतो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कार्यक्रम का नाम भी गुड इवनिंग धर्मशाला है। मैं आप सभी का अपना आरजे सचिन कपूर हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कहते हैं श्रोतो, हर दिन एक सा नहीं होता है, हर समय एक सा नहीं होता है, लगातार जो है वो चीज़ें बदलती रहती हैं। श्रोतो, समय एक जैसा नहीं रहता, लोग एक जैसे नहीं रहते, इन्वायरमेंट का ख्याल रखना हमें बहुत ज़रूरी लगता है और होना भी चाहिए। श्रोतो, हम सभी को लगता है ना कि इन्वायरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है और ख्याल नहीं रखते, तो हम सभी को इसका ख्याल जो है वो बहुत रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, नमस्ते नमस्कार, मैं सचिन कपूर हूँ, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला लेकर हाजिर हुआ हूँ आप सभी के वीडियो सेट पर। तो चलिए जी, सबसे पहले तो हम आप तक पहुँचाएँगे धर्मशाला का मौसम। ये बहुत ज़रूरी था इस समय धर्मशाला का मौसम अच्छा सुहावना होना और इस तरह का रहना, क्योंकि लाखों लोगों की जो है वो बिल्कुल ये फरियाद होगी कि धर्मशाला की पहाड़ियाँ जो है वो हमने राजस्थान से देखनी है या दिल्ली से देखनी है या फिर बेंगलुरु से देखनी है। जो धर्मशाला के स्थायी निवासी हैं उनके लिए ये बड़ी फरियाद होगी कि आज का मैच जो है वो हम ज़रूर देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर देखने को मिलेगा हमारा अपना धर्मशाला, हमारी अपनी वो पहाड़ियाँ, हमारी अपनी वो वादियाँ। जी बिल्कुल श्रोतो, जो इंसान घर से दूर रहता है उन्हें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा पता होता है, मिस करता है और हमेशा करता रहेगा। तो श्रोतो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ। तो आपको बताते हैं इस समय जो मौसम है श्रोतो, जो धर्मशाला में इस वक्त बना हुआ है वो बिल्कुल 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो बना हुआ है श्रोतो। और नमी की बात की जाए श्रोतो, एयर क्वालिटी जो है वो कहीं ना कहीं ठीक बता रहे हैं लेकिन हम अगर नमी की बात करें श्रोतो, तो नमी जो है वो इस समय धर्मशाला में बनी हुई है श्रोतो 58%। जी बिल्कुल 58% जो है वो नमी बनी हुई है। तो आइए जी आगाज़ कर लेते हैं पहले हम कार्यक्रम का, और फिर आगाज़ के बाद बहुत सारी जानकारियां आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे और बहुत सारे गीत संगीत जो है वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। जानकारियों का पिटारा और गीत संगीत का पिटारा जो है वो खुलता रहेगा। तो आइए लेके चलते हैं आप सभी को, आगाज़ करते हैं कार्यक्रम का इस गीत के साथ।

माफ कीजिए, आज के विचार की ओर अभी हम चलेंगे, क्योंकि अभी हमारा आज का विचार जो है वो अधूरा है। कहते हैं, स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। जी बिल्कुल श्रोतों, आप जब भी गलती की करते हैं, हम सभी कोई ना कोई गलती जो है वो ज़रूर करते हैं। कहते हैं कि कोई भी इंसान जो है वो सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, ये हकीकत है इस कलयुग की, है ना। कुछ तुझ में खामियां हैं, कुछ मुझ में कमियां हैं, तो स्वीकार करने की हिम्मत रखिए। हम कोई भी गलती करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो स्वीकार करने की हिम्मत रखिए कि हाँ जी, हमसे ये हुआ है और हम इसका सुधार जो है वो ज़रूर करेंगे। कहते हैं कि रोज़ गलती करो, हर रोज़ गलती जो है वो ज़रूर करो, लेकिन बार बार उसी गलती को अगर आप दोहराते हैं, बार बार उसी गलती को आप रिपीट करते हैं, तो फिर वो गलती नहीं, लापरवाही मानी जाती है। सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ जो है वो कर सकता है, बिल्कुल। लेकिन आप में वो सुधार करने की नीयत जो है वो होनी चाहिए, अपनी गलतियों में सुधार करने की नीयत जो है वो होनी चाहिए, अपने रिश्तों में सुधार करने की नीयत जो है वो होनी चाहिए, अपने रिश्ते को बेहतरीन तरीके से चलाने की नीयत जो है वो होनी चाहिए। तो यह था आज का विचार श्रोताओं, आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं, गुड इवनिंग धर्मशाला। तो आइए चलते हैं और लेके चलते हैं आप सभी को अब कार्यक्रम में इस गीत की ओर। बने रहिएगा सचिन कपूर के साथ।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वीडियो गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वीडियो जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है पुनः आप सभी का, हार्दिक अभिनंदन है। चलिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और बिल्कुल मौसम इस समय थोड़ा सा साफ जो है वो बिल्कुल नज़र आ रहा है धर्मशाला में। पहाड़ियाँ, धूलाधार पर्वत जो है वो बिल्कुल श्रोताओं इस समय यही कह रहे हैं कि हज़ारों लोगों की दुआएं जो है श्रोताओं वो यही कह रही हैं कि इंद्रनाग महाराज जी अब ना बरसे आप क्योंकि आज धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच IPL 2026 का 55वां मैच जो है श्रोताओं वो खेला जा रहा है, और बिल्कुल 55 मुकाबले जो है वो हो चुके हैं। आज 55 वाला यानी कि 55 वाला मुकाबला जो है वो होने जा रहा है, खेला जाएगा। श्रोताओं पंजाब किंग्स 10 मैचों में 6 जीत के साथ अंक तालिका की अगर मैं बात करूं तो तीसरे स्थान पर जो है वो बैठी हुई है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स 8वें पायदान पर संघर्ष करती नज़र आ रही है। श्रोताओं स्टेडियम में होने वाले इस मैच के लिए जो है वो टिकटों की मांग काफ़ी अधिक रही श्रोताओं, और हमेशा से रही क्योंकि सामने धौलाधार पर्वत दिखते हैं, और मुझे लगता है वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत स्टेडियम जो है वो हमारे अपने धर्मशाला में है। और टिकटों के दाम मैं बताना चाहता हूँ 22,000 तक जो है वो जा पहुँचे हैं श्रोताओं। मौसम अपडेट की अगर मैं बात करूँ श्रोताओं तो इस समय येलो और ऑरेंज अलर्ट था। आज भारतीय मौसम विभाग की ओर से जो है वो आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था श्रोताओं, हालांकि कल मंगलवार को भी जो है वो तूफान और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट भी जारी हुआ है श्रोताओं। ख़राब मौसम था तो बारिश की संभावना के कारण जो है वो आज होने वाले IPL मैच में हम सभी यही चाहते हैं कि वाधा ना डले, ये मैच जो है वो ज़रूर हुए, हम सभी जो है वो यही चाहते हैं श्रोताओं। राजनीति और स्थानीय गतिविधियों की अगर मैं बात करूं श्रोताओं तो भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में नगर निगम चुनाव के सिलसिले में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और जीत का भरोसा जो है वो जताया है। और आज नामकरण प्रक्रिया पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के लिए जिला भर के SDM और BDO कार्यालय में आज जो है वो सुबह 10 बजे से जो है वो नामकरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई थी श्रोताओं। तो आइए कार्यक्रम में जानकारियों का पिटारा जो है वो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन तूफान से जो नुकसान है पिछली बार ज़िला के कई हिस्सों में आए तेज़ तूफान की वजह से जो है वो कुछ घरों की छत जो है वो उड़ चुकी है श्रोताओं, और पेड़ जो है वो काफ़ी जगह गिर चुके हैं। जी बिल्कुल, और ये पिछले कल जो तूफान आया है ये कसम से इतना भयंकर तूफान था, इतनी ज़्यादा बिजली गिर रही थी कि वाकई में ये लग रहा था कि आज बच के तो फिर शायद थोड़ा और जी लेंगे। और काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़िला भर में, कांगड़ा ज़िला की मैं बात कर रहा हूँ, पिछली रात को ज़िला भर के कई हिस्सों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा तूफान आया है, और तूफान की वजह से जो है वो काफ़ी घरों की छतें जो है श्रोताओं वो उड़ गई हैं। तो कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा, आप सभी बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। आइए जी लेके चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहेगा आरजे सचिन कपूर के साथ, गूंज अपने बन की और गूंज आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं की।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। तो बिल्कुल हमने तुमको दिल ये दे दिया और ये भी ना पूछा कौन हो तुम। अरे भाई दिल है, ऐसे कैसे आपने किसी को दे दिया और पूछा भी नहीं कि कौन हो तुम, है ना। दिल लगाना और दिल देना बहुत बड़ी बात होती है और बड़े ही तरीके के साथ जो है वो दिल दिया जाता है किसी को। हर किसी को थोड़ी ना यार दिल दिया जाता है और फिर आपने पूछा भी नहीं कि हमने तुम्हें दिल ये दे दिया और ये भी ना पूछा कि कौन हो तुम। भाई साहब बहुत गलत बात है, पूछना तो आपको चाहिए था। वैसे चलिए, मैंने कहा ना कि इंसान गलतियों का पुतला है और वो नई गलती जो है वो ज़रूर करनी चाहिए, तो आपने भी शायद की होगी। तो चलिए फ़िलहाल तो हम सभी जो है वो आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका अपना कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। तो आइए गुड इवनिंग धर्मशाला को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं। और पंचायत चुनाव के नामकरण का आज आखिरी दिन था श्रोताओं, और मतलब पिछली जो हमारे पास अपडेट है नामकरण पत्र दाखिल जो है वो 42,562 हो चुके हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो हम तो पहले ही कह रहे हैं कि जितने भी श्रोतागण हैं वो आप वो सभी जो है वो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि इस चीज़ का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए कि जो प्रतिनिधि है जो कैंडिडेट है वो अच्छा बेहतरीन और आपकी बात सुनने वाला हो, है ना जी। तो आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज के समय में जो है वो पेट्रोल गैस और डीजल का इस्तेमाल कम करना होगा। जी बिल्कुल, पश्चिम एशिया में संकट के असर से जो है वो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो कई गुना बढ़ गए हैं, और आप सभी से भी ये हमारी गुजारिश है, विनती है कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं बाकी देशों में, है ना, तो आप सभी पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा कीजिए, है ना, या फिर वॉकिंग जो है वो ज़्यादा कीजिए, और वर्क फ्रॉम होम की अगर वहाँ से भी काम हो सकता है तो वो ज़्यादा कीजिए। ये बिल्कुल हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो इस तरह की अपील जो है, इस तरह की गुजारिश जो है वो हाथ जोड़कर अपनी जनता से की है कि पेट्रोल डीजल और गैस का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें। आई कार्यक्रम में जानकारियों का पिटारा इसी तरह चलता रहेगा श्रोताओं, आइए सुनाते हैं आप सभी को प्यारा सा।

इतना तो आप सभी ज़रूर बोल सकते थे कि मेरे महबूब ने। आई होप सो बहुत सारे श्रोताओं ने जो है वो ज़रूर बोला होगा कि अदाएँ भी हैं मोहब्बत भी है। किसमें बोलिए बोलिए किसमें? मेरे महबूब में। तो चलिए जी, अब आपके महबूब आपको पता और आपके महबूबों महबूबों का रंग आपको पता कि किस प्रकार का है। मैं हूं सचिन कपूर, एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेडी गुंजन धर्मशाला आपने ट्यून किया है। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शतो कहते हैं कि लाखों सितारे हैं आसमान में, लेकिन चाँद के बिना आसमान की पहचान अधूरी है। वैसे तो लाखों सितारे हैं आसमान में, लेकिन चांद के बिना आसमान की पहचान अधूरी है। यूं तो बहुत से क्रिकेट स्टेडियम हैं दुनिया में, लेकिन धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के बिना सभी स्टेडियमों की शान अधूरी है, पहचान अधूरी है। जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा ये क्रिकेट स्टेडियम है श्रोतों, जो कि हमारी अपनी धर्मशाला में है। इस बात का बहुत हम सभी को जो है वो गर्व भी है, और हम सभी इस चीज़ के लिए जो है वो बहुत इस तरह से रहते हैं कि हम धर्मशाला के निवासी हैं और यहाँ की स्वच्छता का ध्यान रखना जो है वो हम सभी का दायित्व है, हम सभी का कर्तव्य बन जाता है। शो तो यूँ देखते हैं हम सोशल मीडिया पर, हम सभी देखते हैं कि किस प्रकार से जो है वो सोशल मीडिया पर चीज़ें जो है वो ख़राब फैलती हैं। ख़राब मीन्स आप सभी देख रहे होंगे कि किस प्रकार से जो है वो कूड़े के जो डस्टबिन है उसके आसपास भी जो है वो हम लोग ही जो है वो कूड़ा फेंक रहे हैं। शो तो है ना, डस्टबिन को जो है ओवरफ्लो होने के बाद भी उसके आसपास जो है वो कूड़ा हम लोग ही, इंसान ही जो है वो फैला रहा है। तो इन चीज़ों को हम सभी इन चीज़ों को जो है वो सुधार सकते हैं। सुधार जो है वो हर बार प्रशासन को या हर बार मतलब जो उम्मीदवार हैं हमारे उनको बोलना जो है वो हर बार ठीक नहीं है। कुछ गलतियां जो है वो हम में भी हैं, कुछ खामियां जो हैं वो हम में भी हैं, तो अपनी खामियां हमने सुधारनी है श्रोताओं। इसके लिए हम सभी को जो है वो बड़ी ही चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा, विशेष चीज़ों का जो है श्रोताओं वो ध्यान रखना पड़ेगा। बहरहाल आप सभी बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ आपके अपने वेड़ी गुंजन पर। तो बिल्कुल श्रोतों, आज 11 तारीख है, पहला मैच आज खेला जाएगा, 14 तारीख को मैच खेला जाएगा और 17 तारीख को जो है वो मैच खेला जाएगा श्रोतों। तो ट्रैफिक की आवाजाही पर असर पड़ने की संभावना हमेशा से रहती है, और इसके लिए जो है वो दृष्टिगत ये आदेश जारी किए हैं कि उन्होंने बताया है कि जब क्रिकेट मैच वाले दिन जो है वो एक बिल्कुल आज जो है वो प्लानिंग के हिसाब से जो है वो चीज़ें चल रही हैं धर्मशाला में श्रोताओं, क्योंकि हज़ारों के हिसाब से जो है वो जनता आज पहुंची है धर्मशाला, लाखों के हिसाब से। तो ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा जो है वो हम धीरे धीरे श्रोताओं यूं ही खोलते रहेंगे। आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ यूं ही।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर। तो आप सभी को एक बार पुनः मैं बधाई देना चाहता हूँ। अब आप सोचेंगे बधाई किस बात की देना चाहते हैं कि अनमोल ने जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में, और किस स्कूल से है अनमोल? AVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जी बिल्कुल हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की अनमोल बेटी ने जो है वो श्रोताओं 99.86% जो है वो परसेंटेज उनकी रही है, स्कोर 700 मतलब 699 आउट ऑफ 700 मार्क्स, जो कि हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। जी बिल्कुल श्रोताओं, 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम ने जो है वो AVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्र अनमोल ने 700 में से 699 अंक जो हैं वो हासिल कर पहला स्थान बनाया है हिमाचल प्रदेश में। श्रोताओं जी बिल्कुल, पुत्री रोहित कुमार जी को भी, क्योंकि ये पुत्री रोहित कुमार जी की है, तो आपको भी रोहित जी अवेडी गुंचन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी। और साथ ही साथ श्रोताओं, उन्होंने खुद बताया है कि वो 5 से 6 घंटे जो है वो डेली पढ़ती थी, और 5 बजे सुबह उठती थी पढ़ाई करने के लिए। और वो मोबाइल से, उन्होंने खुद बताया कि उनका मोबाइल से कोई लेना देना नहीं था, फोकस बिल्कुल भी नहीं थी वो मोबाइल के लिए, और उनका फोकस जो है वो टोटली जो है वो पढ़ाई में था। डिजिटल हैबिट्स उसमें ज़रा भी नहीं थी। फ्यूचर कैरियर की बात करें तो वो नॉन मेडिकल स्ट्रीम में जो है वो फर्दर स्टडीज करना चाहती है श्रोताओं, और बिकम अ टीचर, बिल्कुल, और वो टीचर बनना चाहती है और बिल्कुल बनेंगी भी, अगर इसी मेहनत और इसी शिद्दत के साथ अगर वो चलती हैं आगे, पढ़ती हैं आगे, बनती है आगे, तो वो बिल्कुल टीचर बनेंगी श्रोता। और इवन की हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुखू जी पर्सनली कॉल हर टू कंग्रेचुलेशन हर ओन हर अचीवमेंट। जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुखू जी ने पर्सनली उन्हें कॉल किया है और उन्हें कंग्रेचुलेट किया है श्रोताओं उनकी अचीवमेंट के लिए। तो हमने भी किया है, रेडियो गुंजन की पूरी टीम की तरफ से जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो हमारी प्यारी, बहुत प्यारी अनमोल के लिए और रोहित कुमार पुत्र के लिए, रोहित कुमार पिताजी हैं उनके, तो उनको भी बहुत बहुत जो है वो मुबारक हो। सो तो आइए कार्यक्रम, आप सभी बने हुए हैं रेडियो गुंजन की गूंज के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं। जी बिल्कुल सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला आपके अपने वीडियो सेट पर। आइए तो चलते हैं श्रोताओं आगे और लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

0: शुद्ध एफएम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना वेड़ी गुंजन धर्मशाला 91.2 MHz। आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी 91.2 पे आपने हमें ट्यून किया है, आपके अपने वेड़ी गुंजन को आपने ट्यून किया है। याद रखिए श्रोताओं, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं, अगर आप कुछ खास सुन रहे हैं, तो वो सुन रहे हैं आपका अपना वेड़ी गुंजन। तो आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस अब अगली जानकारी की ओर। शो बिल्कुल, तो एक बार फिर से मैं कंग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ अनमोल को, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो है वो पहला स्थान पाया है पढ़ाई के मामले में। 10वीं कक्षा का रिज़ल्ट निकला था और वो खुशी पेरेंट के मन में तो ज़रूर होगी श्रोताओं, क्योंकि आज की पेरेंटिंग जो है वो बहुत सी चीज़ों को लेकर जो है वो अच्छी भी है, बहुत सी चीज़ों को लेकर हम जो है वो नर्वस भी हो जाते हैं। मतलब बैलेंस करना जो है वो आज की पेरेंटिंग में मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा टफ़ टास्क हो चुका है। अगर ज़्यादा बच्चों को बोलते हैं तो हम अक्सर ये खबरें रेडियो के माध्यम से या फिर टीवी के माध्यम से या फिर अखबारों में सुनते हैं कि अगर माता ने या पिता ने बाइक देने से मना किया या बाइक लेने से मना किया तो लगाया फंदा। तो देखिए, मैं ये जागरूक करना चाहता हूँ इस खबर के माध्यम से आप सभी को, जितना भी यूथ इस समय जो है वो हमें सुन रहा है, कि देखिए सुसाइड करना या छोटी सी चीज़ पूरी ना करना या बड़ी सी चीज़ भी पूरी ना करना, मतलब इज़ नॉट अ सोल्यूशन, दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन लाइफ का, ज़िंदगी का ये सोल्यूशन नहीं है कि हम खुद को ख़त्म कर ले। नहीं, ये भी तो बेटी है ना, जो 5 से 6 घंटे पढ़ के जो है वो सफलता तक पहुंची और सफलता के कदम उसने चूमे, है ना। तो इस तरह से हम जो है, इस तरह से और भी बहुत सारे अनमोल राठौर जम्मू कश्मीर के हैं, जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िला के हैं, भद्रवाह के वो रहने वाले हैं, इवन कि वहाँ से हमें हमारे जो लाइव कार्यक्रम है हिंदी अपनी गप, उसमें इस भद्रवाह जगह से जो है वो काफ़ी कॉल्स जो है वो आते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने भी जो है वो AIR7 में UPSC में जो है वो 2023 में उन्होंने ये परीक्षा जो है वो ऑल इंडिया रैंक 7वें नंबर पर जो है वो अनमोल राठौर ने जो है वो प्राप्त की। तो इस तरह से श्रोतों, बहुत से एग्जांपल हैं हमारे पास जो कि पढ़ाई करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और आगे चलते हैं। श्रोतों देखिए, इंस्पिरेशन जो है वो आप अपने माता पिता से लीजिए, समाज की समस्याओं का जो है वो, समाज की समस्याओं को थोड़ा सा देखिए किस तरह से। अगर आपको इंस्पायर होना है तो माता पिता से ज़रूर होइए, मैं तो कहता हूँ गुरुजनों से होइए। और मोटिवेशनल स्टोरीज देखने से कुछ नहीं होता, स्टोरी जो है वो खुद की मोटिवेशनल बनानी पड़ती है श्रोताओं, है ना। शिक्षा का मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा महत्व है श्रोताओं, एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मुझे लगता है कि अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, यानी कि देखिए 10th में हमारी खुद की दारनू की जो लड़की है वो 3रा स्थान उसने हासिल किया है। आज हमारी ये कांगड़ा की लड़की जो है, इन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश में पहला स्थान जो है वो ग्रहण किया है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो टॉपर्स है ना, ये इन्होंने एजुकेशन से प्यार किया, इन्होंने पढ़ाई से प्यार किया, 5 से 6 घंटे जो है इन्होंने वो पढ़ाई को दिए हैं, तब जाकर जो है वो सफलता के कदम इन्होंने चूमे हैं श्रोताओं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन, बहुत इम्पॉर्टेंट है श्रोताओं। बहरहाल इस समय हो चुका है 7 बज चुके हैं श्रोताओं, और अब समय हो चुका है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में समाचारों का। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ वेड़ी गुंजन की गूंज के साथ। 70 दिन
1: बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। भारत विश्व का 3रा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का 4था सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू LPG की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से 1 वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। श्री मोदी ने लोगों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
3: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बड़ौदा में सरदार धाम परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने परिसर में भोजन और स्वागत क्षेत्र तथा ई पुस्तकालय का अवलोकन किया। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1,313 अंकों की भारी गिरावट के साथ 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 360 अंक कम होकर 23,816 पर आ गया। एएफसी अंडर 17 एशिया कप फुटबॉल का क्वार्टर फाइनल भारत और मेजबान चीन के बीच सोझौ में खेला जा रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक चीन ने 3-0 की बढ़त बना ली थी। इधर आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो चौकी सचिन कपूर। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है श्रोताओं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। तो आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में लेके चलते हैं आपको थोड़ा सी और आगे। तो श्रोताओं बहुत सारी जानकारियां हैं जो आप तक हम साझा करेंगे। पिछले कल जो रात को जिस हिसाब से श्रोताओं तूफान आया था, जिस हिसाब से बिजली गड़क रही थी, बिजली जो है वो किस हिसाब से गड़क रही थी श्रोताओं, तो बताना चाहता हूँ बहुत सारी छतें जो है वो उड़ गई हैं जिस हिसाब का वो तूफान था, और काफ़ी पेड़ जो हैं वो गिर गए हैं, किसी न किसी पेड़ बहुत सारे पेड़ों पर जो है वो वैसी बिजली जो है वो कड़की है श्रोताओं। और आप सभी को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 11 मई हिमाचल प्रदेश में मौसम और दुर्घटनाओं से जुड़ी अहम जानकारी है ये श्रोताओं। और जी बिल्कुल, रोहतांग में जो है, रोहतांग समेत कई ऊंचे इलाकों में जो है, श्रोताओं वो भारी ओलावृष्टि और बारिश हुई है। मौसम विभाग ने तेज आंधी और तूफान के लिए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया हुआ था आज के दिन के लिए, और ऊना और कुल्लू जैसे इलाकों में तेज बिजली गिरने की वजह से जो है वो बिजली गिरने की वजह से जो है काफ़ी पेड़ गिरे हैं श्रोताओं, और ब्लैकआउट जैसी स्थिति जो है वो रही है कई घरों की जो जैसे कि मैंने बताया कि छतें भी उड़ी हैं श्रोताओं। चंबा सड़क हादसा हुआ है, चंबा में एक इनोवा कार में खाई में गिरने से जो है वो 6 पर्यटकों की मौत हुई है श्रोताओं। कांगड़ा में बिजली ठीक करते समय एक लाइनमैन की करंट लगने से मौत हुई है। साथ ही तेज़ तूफान की वजह से पेड़ गिरने के कारण जोगिंदरनगर और कांगड़ा के बीच रेल यातायात भी जो है वो प्रभावित हुआ है। वैसे तो अभी चल नहीं रही है लेकिन उन पटड़ियों पर जो है वो गिरा है श्रोताओं। पानी में डूबने से 2 सगे भाइयों की, 8 और 9 साल के भाइयों की जो है वो जान गई है श्रोताओं। मासूम से बच्चे जो है वो जंगल में जो है वो अपनी गाय चराने जो है वो गए थे श्रोताओं। तो इस प्रकार की जानकारियों का सिलसिला जो है वो यूं ही चलता रहेगा श्रोताओं। कार्यक्रम का दौर जो है वो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल इस समय मंच जो है वो बिल्कुल सजा हुआ है, और मंच सजा हुआ है धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम में। खूबसूरत सा वो, प्यारा सा वो नज़ारा देखने के लिए हज़ारों दर्शक जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं श्रोताओं, है ना। और हम सभी भी यही चाहते हैं कि बारिश जो है वो बिल्कुल भी ना हो। तो आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर, और गीत के बाद श्रोताओं आप सभी को सुनाएंगे कुछ और अन्य खास जानकारियां।

शो तो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं बिल्कुल लाइव आपके अपने वीडियो सेट पर। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और मेरा दिल बोल रहा है आप सभी को एक कहानी सुनाऊं। बिल्कुल श्रोताओं, कहानी तो सुनानी है लेकिन उससे पहले आइए आपको लेके चलते हैं कहानी की ओर श्रोताओं, उससे पहले भी। हाँ बिल्कुल, पटना की ये कहानी है, नाम आप कुछ भी रख लीजिए, एक्स वाई जेड। दसवीं बोर्ड की परीक्षा में उन्होंने 99.4% अंक जो है वो हासिल किए, लेकिन उनकी जीत की कहानी संघर्षों से भरी है श्रोताओं। जन्म के समय ही माँ को खोना और पिता द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद उनकी परवरिश उनके नाना नानी ने की। आर्थिक तंगी और माता पिता के साए के बिना भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को कभी रुकने नहीं दिया। उनकी कहानी सिखाती है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, ये कहानी पटना की है, पटना के किसी लड़के की है, कि परिस्थितियां जो हैं वो कैसी भी हों, अगर संकल्प मजबूत है तो सफलता निश्चित है। ये कहानी प्राचीन काल

कि एक छात्र छात्र की है शतो, जिनका नाम सूरज था, जो पढ़ाई में इतना कमजोर थे कि गुरुजी जो गुरुजन थे वो भी हार मान चुके थे शतो। उन्होंने भी जो है वो हार मान ली थी। घर लौटते समय उन्होंने कुएं पर रस्सी की घिसने से पत्थर पर बने निशान को देखा। याद रखिए इस बात को कि घर जाते समय जो है वो उन्होंने कुएं पर रस्सी घिस रही थी और पत्थर पर बने निशान को देखा। उन्होंने सोचा कि यदि एक कोमल रस्सी पत्थर को काट सकती है, यदि एक कोमल रस्सी जो है वो पत्थर को काट सकती है श्रोताओं, तो निरंतर प्रयास से मैं विद्या क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? बार बार प्रयास करने से, अभ्यास करने से मैं भी तो शिक्षा प्राप्त कर सकता हूँ। वह वापस लौटा और कड़ी मेहनत की और आगे चलकर एक महान विद्वान बना। जी बिल्कुल श्रोताओं, यही देखिए, एक छोटी सी बात पर उन्होंने जो है वो कैसे खुद को जो है वो मतलब उसने स्कूल छोड़ दिया था, उस बालक ने जो है वो स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन आते समय उसने कुएं पे देखा कि एक रस्सी जो है वो पत्थर को काट रही है, बार बार खींचने से, बार बार उसका खिंचाव होने से, तो फिर मैं क्यों नहीं? यही जज्बा, यही भावना जो है वो हम में भी होनी चाहिए। बहरहाल श्रोताओं, आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम में।

शुद्ध एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी, जो कि सचिन कपूर। तो कहते हैं ना श्रोताओं कि अगर आप सफलता की ओर चलते हैं तो फिर नींद भी नहीं लगती, और फिर नहीं नींद लगती जो, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सफलता जो है वो दिखती है, अपने माँ बाप का संघर्ष जो है वो दिखता है शो, तो है ना। तो जिस तरह से कांगड़ा की अनमोल ने जो है वो टॉपर रह के अपने पिता का नाम रोशन किया है, माँ बाप का नाम रोशन किया है, उसी तरह से श्रोतों आप सभी भी जो है वो टॉपर रह कर अपने माँ बाप का, अपने माता पिता का नाम जो है वो रोशन कर सकते हैं। बहरहाल थोड़ा सा खेल समाचारों की ओर चलते हैं, और अर्शदीप जो है वो खुलेआम मींस कि बिना किसी सिक्योरिटी के जो है, बिना किसी गार्ड के जो है वो कोतवाली बाजार में घूम रहे थे शो। तो इससे पता लगता है कि हमारे हिमाचल में जो है वो कितनी कितने अच्छे लोग जो है वो रहते हैं, कितने प्यारे लोग जो है वो रहते हैं, और इसी प्रकार यही तो हिमाचल प्रदेश की पहचान है ना, कि हम सभी क्योंकि बिल्कुल वो पंजाब के रहने वाले हैं हर्षदीप, और बिल्कुल वो सुपरस्टार हमारे खिलाड़ी हैं, और यही हिमाचल प्रदेश की पहचान है कि अतिथि देवो भवा, कि हम जो हमारे अतिथि होते हैं उनका मान सम्मान करते हैं। ये ही हिमाचल प्रदेश की जो है श्रोताओं वो परंपरा है, और इसी परंपरा को हम सभी ने जो है वो यूं ही बरकरार रखना है, यूं ही उसे कायम रखना है श्रोताओं। चलिए आप सभी बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, आप सभी के अपने रेडियो सेट पर। तो आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सुन रहे हैं। श्रोतो गीतों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, जानकारियों का सिलसिला भी यूं ही चलता रहेगा। आइए अब आप सभी को लेकर चलते हैं एक छोटे से अंतराल की ओर और वापस मिलते हैं फिर अंतराल के बाद श्रोताओं का।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ?
2: मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं।
1: मैं नल्ले में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ।
3: बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर।
4: अरे ये पेड़ तो सूख गया, चलो इसमें पानी डालते हैं।
5: अब पानी डाल के क्या फायदा?
4: अरे पानी डालेंगे तभी तो फूल खिलेंगे।
5: अरे पापा, आप ही ने तो बताया था जब पेड़ एक बार सूख जाए उसमें जितना भी खाद पानी डालो वो ठीक नहीं हो सकता।
6: आप ही ने तो कहा था कि एक बार घड़ा खराब हो जाए तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता।
3: अगर एक बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो चाहकर भी हम दोबारा उसे ठीक नहीं कर सकते। अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें।
7: 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने से स्तनपान। 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117091710917091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका

0: दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक नई सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। तो आइए उन्हें याद करके आज हम ये शपथ लें कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे। अपने देश के लिए अपनी ये अहम जिम्मेदारी हम जरूर निभाएंगे। जय हिंद।
1: कैसे?
2: कर्तव्य।
1: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हो भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लगे, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
3: समझ गए सर।
1: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: धर्मशाला के निवासी भाइयों और बहनों, नगर निगम चुनाव का समय आ गया है। याद रखिए, हमारा शहर खुद ब खुद विकसित नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी दूरदृष्टि जो धर्मशाला को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।
4: जी बिल्कुल, एक गलत चुनाव हमारे शहर को पीछे धकेल सकता है, इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने। नगर निगम में केवल एक ईमानदार और कर्मठ प्रतिनिधि को ही चुने।
5: आपका एक वोट धर्मशाला का सुनहरा भविष्य है।
6: जागो नागरिक, सोचो समझो और सही प्रतिनिधि चुनो।
7: काकू, दुनिया में एक ऐसी चीज का नाम बता जिससे तेरी बीवी का कभी दिल नहीं भरता।
8: एक नहीं, ऐसी दो चीजें हैं, एक कपड़े और दूसरे गोलगप्पे। कितने ही खिला लो और कितने ही दिला लो, कभी जी नहीं भरेगा।

शोटो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना वेडी गुंजन धर्मशाला, और कार्यक्रम चला है इस वक्त वेडियो गुंजन के साथ, आप सुन रहे हैं सचिन कपूर को। तो कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का आप सभी आनंद ले रहे हैं शोटो, तो आइए आप सभी को लेके चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर, और फिर गीत के बाद शोटो

0: शुद्ध एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वीडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और अब समय हो गया है श्रोताओं प्रादेशिक समाचारों का।
1: के कार्यान्वयन में तेजी लाने के दिए निर्देश, नगर निगम व शहरी निकायों के चुनाव के लिए पंचायती राज के चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन बड़ी संख्या में नामांकन दाखिल, चंबा जिला के भटिया उपमंडल का ककीरा के पास वाहन दुर्घटना में 6 पर्यटकों की मृत्यु, 4 अन्य घायल और बीती रात अंधड़ व वर्षा से प्रदेश के कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति प्रभावित, ऊना में 800 से अधिक ट्रांसफार्मर ठप। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने चिट्टा मुक्त हिमाचल के लिए अनेक कदम उठाए हैं और इसके खिलाफ एंटी चिट्टा अभियान चलाया जा रहा है। आज शिमला में एक पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों व महाविद्यालयों में एंटी चिट्टा जागरूकता अभियान का दूसरा चरण 1 जून से 20 अगस्त तक चलाया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां पंचायत स्तर पर भी चिट्टा के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
2: देश में चिट्टा सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। हिमाचल सरकार द्वारा एनफोर्समेंट, सप्लाई रिडक्शंस, डिमांड रिडक्शंस तथा हार्म रिडक्शन के सभी पहलुओं में पर एक साथ रूप से कार्य करना शुरू किया है। मुझे गर्व है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जहां पंचायत स्तर पर चिट्टा तस्करों एवं इसका नशा करने वालों की पहचान कर अब तक लगभग 12,000 व्यक्तियों की पहचान की जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश की 3600 पंचायतों में से 234 पंचायतों में चिट्टा के सेवन करने वाले पाए गए हैं।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चिट्टे में संलिप्त सरकारी कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है और अभी तक 123 कर्मचारी इन गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं, जिनमें से 31 को बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी में भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों को एंटी चिट्टा टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है।
2: जो 123 के करीब सरकारी कर्मचारी इसमें सम्मिलित पाए गए हैं, पुलिस में 21 कर्मचारी इसमें सम्मिलित पाए गए थे, पुलिस कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के 13 है, एजुकेशन के 10 है, बैंकिंग सर्विसेज के 9 है, जेएसबी आईपीएच के 9 है, जो यहाँ आर्मी और नेवी में काम करते रहे हुए उनके 8 है, एचआरटीसी के 8 है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 6 है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 6 है, तो टोटल 122 है, जिसमें से 31 को टर्मिनेट कर दिया गया है। जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज में लोग शामिल है, जब उनकी एडमिशन्स होगी, हर साल उनका चिट्टे का टेस्ट किया जाएगा।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री ने शिमला में नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक की अध्यक्षता की और अधिकारियों को एंटी चिट्टा अभियान के क्रियान्वयन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर मंत्रिमंडल के सदस्य जगत सिंह नेगी और अनिरुद्ध सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि शिमला में सब्जी मंडी केंद्रीय व्यापारिक जिला परियोजना और हमीरपुर में प्रस्तावित सिटी सेंटर परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार विश्व स्तरीय व्यापारिक और आर्थिक केंद्र विकसित कर रही है। उन्होंने आज शिमला में शहरी विकास विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में भीड़भाड़ कम करने, संस्थागत अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण और आधुनिक व्यावसायिक स्थलों, स्मार्ट पार्किंग सुविधाओं व ग्रीन ब्लू सार्वजनिक क्षेत्रों के माध्यम से ये परियोजनाएं स्थायी राजस्व सृजन की दिशा में सहायक साबित होंगी। मुख्यमंत्री ने विभाग को इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया 12 व 13 मई को कर्नाटक के मैसूर में आयोजित होने वाली पीठासीन अधिकारियों की समिति की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में भाग लेने के लिए वे आज मैसूर पहुंचे, जहां कर्नाटक विधानसभा के अधिकारियों ने उनका परंपरागत व भव्य स्वागत किया। बैठक में राज्यसभा के उपसभापति डॉ. हरिवंश व लोकसभा के वरिष्ठ अधिकारी और 6 राज्यों के पीठासीन अधिकारी भाग ले रहे हैं। इस दौरान समिति विधानमंडल निकायों के कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमों का एक समान मॉडल विषय पर मंथन करेगी। चंबा जिले के भटियात उपमंडल के तुनुहट्टी लाहड़ू मार्ग पर ककीरा के पास आज तड़के एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 पर्यटकों की मृत्यु हो गई है और 2 बच्चों सहित 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मृतकों में गुजरात के 5 पर्यटक जबकि चालक मंडी जिले का निवासी था। ये पर्यटक हिमाचल प्रदेश घूमने आए थे और मनाली से डलहौजी जा रहे थे। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने और घायलों को इलाज की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 4 नगर निगमों सहित 47 शहरी निकायों के चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर समर्थन जुटाने में लगे हैं। सोलन नगर निगम की कुर्सी को बचाने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने आज सोलन में चुनाव प्रचार किया और रोड शो के माध्यम से वोट की अपील की। विनय कुमार ने दावा किया कि कांग्रेस को लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और नगर निगम चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की जीत होगी।
3: डिफरेंट वार्ड में जाने का मौका मिला तो अच्छे पोजीशन में है और लगभग हम 10 से 11 वार्ड यहाँ जीत रहे हैं। हमारे उम्मीदवार है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, वो दोनों ही बहुत अच्छी तरह से चुनाव को लड़ रहे हैं।
1: राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा है कि मौजूदा राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण आम जनता त्रस्त है। पालमपुर नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान आज उन्होंने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं और महंगाई व अव्यवस्था से लोग दुखी हैं। डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा कि नगर निगम चुनाव में लोग भाजपा की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और भाजपा इन चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। नुक्कड़ सभा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों से संपर्क साधकर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान का आग्रह किया। प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने के आज अंतिम दिन बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। मंडी जिला के विभिन्न उपमंडलों में आज जिला परिषद चुनाव के लिए करीब 123, सोलन में करीब 29 और ऊना जिला में 31 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे भरे। कल 12 मई को नामांकन

0: पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 14 और 15 मई को नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। 15 मई को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में 31,182 पदों के लिए 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में मतदान करवाया जाएगा। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चलेगा। भाजपा चार नगर निगमों के चुनाव को लेकर अलग अलग संकल्प पत्र लाएगी। भाजपा ने स्पष्ट किया है कि ये केवल चुनावी घोषणा पत्र नहीं, बल्कि सभी नगर निगमों के क्षेत्र के समग्र विकास का विजन डॉक्यूमेंट होगा। पार्टी ने दावा किया है कि ये संकल्प पत्र जनता की समस्याओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान कल 12 मई को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सोलन में, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मंडी में, भाजपा उपाध्यक्ष विपिन परमार पालमपुर में और प्रदेश उपाध्यक्ष पवन काजल धर्मशाला में संकल्प पत्र प्रस्तुत करेंगे। पार्टी ने दावा किया है कि नगर निगम चुनाव में जनता विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही की राजनीति को चुनते हुए भाजपा को समर्थन देगी। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात अंधड़ सहित बारिश, जबकि ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है। ऊना जिले में तूफान के कारण बिजली के 886 ट्रांसफार्मर ठप्प हो गए हैं, जिससे कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित है। हालांकि विभाग के कर्मचारी बिजली बहाल करने में जुटे हुए हैं। जिले में कई स्थानों पर पेड़ गिरने से निजी संपत्ति को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आज से 14 मई तक निचले व मध्यम क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना जताई है। पूर्व कर्मचारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार 4,00,000 पेंशनरों के पेंशन व भत्ते जारी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से 2021 के बीच सेवानिवृत्त कर्मियों को लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी व अन्य भत्ते नहीं दिए गए हैं, जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार में वित्तीय प्रबंधन चरमरा गया है और महंगाई भत्ते की 15% किश्तें लंबित पड़ी हैं।
1: 16 से लेके 2021 तक लोग सेवानिवृत्त हुए, उनकी आज दिन तक लीव इनकैशमेंट, उनकी ग्रेच्युटी, उनके जो ड्यूज थे, सरकार ने नहीं दी। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो सरकार पैसे के फजूल खर्ची कर रही है, ये सारे का सारा पैसा प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों और कर्मचारियों का है। इस सरकार का जो वित्तीय प्रबंधन वो इस तरह से चरमरा गया है कि इस सरकार को यही समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या और क्या नहीं करें। HRTC के पूर्व कर्मचारी हमारे साथ बैठे, अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है। आई कितनी तारीख हो गई आप।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में एंटी चिट्टा जागरूकता अभियान का दूसरा चरण 1 जून से शुरू करेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला सब्जी मंडी व्यापारिक जिला परियोजना व सिटी सेंटर परियोजना हमीरपुर के कार्यान्वयन में तेजी लाने के दिए निर्देश। नगर निगम व शहरी निकायों के चुनाव के लिए प्रचार तेज। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन बड़ी संख्या में नामांकन पत्र दाखिल। चंबा जिला के भटियात उपमंडल में ककीरा के पास वाहन दुर्घटना में 6 पर्यटकों की मृत्यु, 4 अन्य घायल। और बीती रात अंधड़ व वर्षा से प्रदेश के कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति प्रभावित। ऊना जिला में 800 से अधिक ट्रांसफार्मर ठप। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: शोधो FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला। और शोधो आप मुझे यानी सचिन कपूर को दीजिए आप इजाजत और हस्ते

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ?
2: मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं।
1: मैं रल्ले में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ।
3: बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर।
4: अरे ये पेड़ तो सूख गया, चलो इसमें पानी डालते हैं।
5: अब पानी डाल के क्या फायदा?
4: अरे पानी डालेंगे तभी तो फूल खिलेंगे।
5: अरे पापा, आप ही ने तो बताया था जब पेड़ एक बार सूख जाए उसमें जितना भी खाद पानी डालो वो ठीक नहीं हो सकता।
6: आप ही ने तो कहा था कि एक बार घड़ा खराब हो जाए तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता।
3: अगर एक बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो चाहकर भी हम दोबारा उसे ठीक नहीं कर सकते। अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें।
7: 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने से स्तनपान। 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक नई सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। तो आइए उन्हें याद करके आज हम ये शपथ लें कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे। अपने देश के लिए अपनी ये अहम जिम्मेदारी हम जरूर निभाएंगे। जय हिंद।
1: कैसे?
2: कर्तव्य।
1: अरे, सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
3: समझ गए सर।
1: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: धर्मशाला के निवासी भाइयों और बहनों, नगर निगम चुनाव का समय आ गया है। याद रखिए, हमारा शहर खुद ब खुद विकसित नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी दूरदृष्टि जो धर्मशाला को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।
4: जी बिल्कुल, एक गलत चुनाव हमारे शहर को पीछे धकेल सकता है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने, नगर निगम में केवल एक ईमानदार और कर्मठ प्रतिनिधि को ही चुने।
5: आपका एक वोट धर्मशाला का सुनहरा भविष्य है।
6: जागो नागरिक, सोचो समझो और सही प्रतिनिधि चुनो।
7: काकू, दुनिया में एक ऐसी चीज का नाम बता जिससे तेरी बीवी का कभी दिल नहीं भरता।
8: एक नहीं, ऐसी दो चीजें हैं, एक कपड़े और दूसरे गोलगप्पे। कितने ही खिला लो और कितने ही दिला लो, कभी जी नहीं भरेगा।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग। एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ?
2: मुझको स्कूल में सब बुद्धू बोलते रहते।
1: मैं रलने में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ।
3: बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर।
4: अरे ये पेड़ तो सूख गया, चलो इसमें पानी डालते हैं।
5: अब पानी डाल के क्या फायदा?
4: अरे पानी डालेंगे तभी तो फूल खिलेंगे।
5: अरे पापा, आप ही ने तो बताया था जब पेड़ एक बार सूख जाए उसमें जितना भी खाद पानी डालो वो ठीक नहीं हो सकता।
6: आप ही ने तो कहा था कि एक बार घड़ा खराब हो जाए तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता।
3: अगर एक बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो चाह कर भी हम दोबारा उसे ठीक नहीं कर सकते। अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें।
7: 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने से स्तनपान। 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे।

0: दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक नई सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। तो आइए उन्हें याद करके आज हम ये शपथ लें कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे। अपने देश के लिए अपनी ये अहम जिम्मेदारी हम जरूर निभाएंगे। जय हिंद।
1: कैसे?
2: कर्तव्य।
1: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हो भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दे, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
3: समझ गए सर।
1: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: धर्मशाला के निवासी भाइयों और बहनों, नगर निगम चुनाव का समय आ गया है। याद रखिए, हमारा शहर खुद ब खुद विकसित नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी दूरदृष्टि जो धर्मशाला को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।
4: जी बिल्कुल, एक गलत चुनाव हमारे शहर को पीछे धकेल सकता है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने, नगर निगम में केवल एक ईमानदार और कर्मठ प्रतिनिधि को ही चुने।
5: आपका एक वोट धर्मशाला का सुनहरा भविष्य है।
6: जागो नागरिक, सोचो समझो और सही प्रतिनिधि चुनो।
7: काकू, दुनिया में एक ऐसी चीज का नाम बता जिससे तेरी बीवी का कभी दिल नहीं भरता।
8: एक नहीं, ऐसी दो चीजें हैं, एक कपड़े और दूसरे गोलगप्पे। कितने ही खिला लो और कितने ही दिला लो, कभी जी नहीं भरेगा।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

तो सो रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ?
2: मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते।
1: मैं रल्ले में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ।
3: बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर।
4: अरे ये पेड़ तो सूख गया, चलो इसमें पानी डालते हैं।
5: अब पानी डाल के क्या फायदा?
4: अरे पानी डालेंगे तभी तो फूल खिलेंगे।
5: अरे पापा, आप ही ने तो बताया था जब पेड़ एक बार सूख जाए उसमें जितना भी खाद पानी डालो वो ठीक नहीं हो सकता।
6: आप ही ने तो कहा था कि एक बार घड़ा खराब हो जाए तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता।
3: अगर एक बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो चाहकर भी हम दोबारा उसे ठीक नहीं कर सकते। अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें।
7: 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने से स्तनपान। 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117019. आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक नई सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। तो आइए उन्हें याद करके आज हम ये शपथ लें कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे। अपने देश के लिए अपनी ये अहम जिम्मेदारी हम जरूर निभाएंगे। जय हिंद।
1: कैसे?
2: कर्तव्य।
1: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हो भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
3: समझ गए सर।
1: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: धर्मशाला के निवासी भाइयों और बहनों, नगर निगम चुनाव का समय आ गया है। याद रखिए, हमारा शहर खुद ब खुद विकसित नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी दूरदृष्टि जो धर्मशाला को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।
4: जी बिल्कुल, एक गलत चुनाव हमारे शहर को पीछे धकेल सकता है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने, नगर निगम में केवल एक ईमानदार और कर्मठ प्रतिनिधि को ही चुने।
5: आपका एक वोट धर्मशाला का सुनहरा भविष्य है।
6: जागो नागरिक, सोचो समझो और सही प्रतिनिधि चुनो।
7: काकू, दुनिया में एक ऐसी चीज का नाम बता जिससे तेरी बीवी का कभी दिल नहीं भरता।
8: एक नहीं, ऐसी दो चीजें हैं, एक कपड़े और दूसरे गोलगप्पे। कितने ही खिला लो और कितने ही दिला लो, कभी जी नहीं भरेगा।

हाय हमें यू देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए। ये मुमकिन है इसी का कल मोहब्बत नाम हो जाए।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे।